0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: अरे तीन पे क्यों अटक गया?
2: क्योंकि Sal's Hot Chicken भी तीन पे पहुंच गया.
0: Plano, Richardson and now at a brand new location. Sal's Hot Chicken coming soon.
3: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है.
4: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
0: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
5: तुमसे मिलके दिल का है.
4: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
0: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क.

0: नेशन का फन स्टेशन फनेशियर रेडियो।
1: नेशन का फन स्टेशन तो यही है क्योंकि मैं भी आ गई हूँ गाइस। दिस इज इबी द हिप्पी बैक ऑन एयर एंड यू आर लिसनिंग टू माय शो फनेशियर रेडियो 104.9 एफएम। कैसे हैं आप सभी लोग? इट इज वेंसडे, वी आर मिड वीक एंड आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि दो दिन बाद वीकेंड आने वाला है। And then weekend pe we get to relax, we get to sleep a little more and we get to have lots and lots of fun. Lekin us sab ki baatein karne se pehle aaj hum bahut sari baatein karenge. Aaj main aapko badi interesting si story bhi sunaungi ek, lekin wo story sunne se pehle aap kaise hain? Main to theek hoon guys, and of course you guys are listening to Funasia Radio 104.9 FM and this is my show An Evening in Dallas. तो गाइज बाहर बहुत कंस्ट्रक्शन वगैरह सब कुछ चल रहा है, तो जहाँ भी आप हैं ध्यान से गाड़ी चलाइए क्योंकि मतलब इतना कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रहा है, यू नेवर नो व्हाट्स गोना हैपन, राइट? सो आफ्टर दिस सॉन्ग लेट्स कम बैक एंड टॉक सम मोर।

भाई आशा हो या कोई और हो, लेकिन मेरे दिल की आशा तो ये है कि मैं सोनू निगम जी को लाइव देखूं। इसीलिए सोनू निगम रेवोल्यूशन इज कमिंग टू डैलस। गेट रेडी फॉर एन अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ म्यूजिक। द वन एंड ओनली सोनू निगम लाइव इन कॉन्सर्ट ऑन सितंबर 26, दैट इज अ सैटरडे एट 8:30 PM। लेकिन कहाँ हो रहा है? एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर इन एलन। बहुत पास में है यार। तो योर फेवरेट सॉन्ग्स विद द आइकॉनिक वॉइस, एवरीथिंग इज लाइव। टिकट्स आर ऑलरेडी ऑन सेल एट टिकट मास्टर। तो जल्दी जल्दी ले लो, जितनी देर करोगे उतने प्राइसेस बढ़ जाते हैं, याद है ना आपको? फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 855-360-SHOWS। ओके, रेवोल्यूशन सोनू निगम लाइव एंड फनीजा रेडियो ऑफकोर्स द वन एंड ओनली इज द एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फॉर दिस इवेंट। तो ये गाना सुनते हैं, वी कम बैक एंड टॉक सम मोर।

पता है अभी मैंने सबसे रिडिक्युलस चीज देखी इंस्टाग्राम पे, पता है क्या? वो भी कौन से वाले पेज पे, एक बहुत ही फेमस इंडियन न्यूज चैनल के पेज पे, वहां पे दिखा रहे हैं देयर इज दिस एटिकेट कोच, ओके, एंड यू नो हाउ देयर आर दीज एटिकेट वीडियोस, दिस इज हाउ यू शुड सिट, दिस इज हाउ यू शुड वॉक, दिस इज हाउ यू शुड स्टैंड, दिस इज हाउ यू शुड ईट, दिस इज हाउ यू शुड ड्रिंक कॉफी, सुर से चाय नहीं पीनी चाहिए. तो वैसे ही बहुत सारे सो कॉल्ड द राइट स्टैंडर्ड्स और द राइट एटिकेट्स. ओके, सो देयर वॉज दिस वन वीडियो वेयर दिस पर्सन शोज वाइल व्हेन हैविंग डोसा. बाय द वे गाइज, इंडियन फूड, ओके, दिस इज नॉट पास्ता, दिस इज नॉट अ चिकन आला कियेव और एनीथिंग लाइक दैट, दिस इज इंडियन फूड, ओके, डोसा. वो डोसा चम्मच से और कांटे चम्मच से खा रहे हैं और ऐसे करके, दिस इज द करेक्ट एटिकेट वे. ही यू कैन क्लियरली सी हाउ मच ही स्ट्रगलिंग टू ब्रेक वन टाइनी बाइट ऑफ दैट डोसा, देन डिप इट इन द चटनी, एंड देन ही इज ईटिंग द डोसा लाइक एज इफ आई डोंट नो, ही इज ईटिंग लाइक फ्रेंच टोस्ट और समथिंग लाइक दैट. इट्स रिडिक्युलस. मैंने कहा भाई एटिकेट में इतनी लंबी भी मत खींचो कि आप अपना देश का खाना खाना भूल जाओ. कम बैक टू अर्थ, बी रियल, बी ऑथेंटिक. आपको क्या लगता है, डोसा हमें कांटे चम्मच से खाना चाहिए कि हाथ से तोड़ तोड़ के खाना चाहिए? मुझे तो लगता है हाथ से तोड़ तोड़ के खाने में फ्लेवर भी ज़्यादा आता है. नहीं,

0: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
1: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, 10 दिन, अगले ट्यूसडे,
2: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
3: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर, आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर, आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर, प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
1: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
4: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
5: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
3: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल जूल

0: को टाटा बाय बाय कर।
1: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
2: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
3: इतना सब और प्राइस?
2: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
4: मैं ही।
5: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
6: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
7: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
8: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
7: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
9: आर यू लुकिंग फॉर अ स्मार्टर अप्रोच टू रिड्यूसिंग टैक्सेस व्हाइल बिल्डिंग एंड प्रिजर्विंग वेल्थ? माय टाइम इक्विटी, अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म लेड बाय CPA सुधीर पाय, ऑफर्स एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, टैक्स एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, रियल estate strategies, AI and late stage pre-IPO opportunities and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
10: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
11: Yaar, boss ne fir se daad diya. Traffic अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस।
12: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
11: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
12: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
11: ये क्या होता?
12: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
13: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
14: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन available.
15: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
16: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
15: Kya matlab?
16: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
15: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
16: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
15: Ab to करना ही पड़ेगा मैडम।
17: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
18: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग। फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस। फ्रॉम बिगिनर टू कॉम्पिटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव।
17: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को। विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 4693331099.
18: Mention Funasia and get 50% off on tryout session.
19: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
5: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
19: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
5: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
19: सच में सब संभाल लेंगे?
5: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
10: कॉल हरि बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.
1: Guys, कैसे हैं आप सभी लोग? I hope you're enjoying your Wednesday evening so far. ये next song सिर्फ वसीम जी के लिए और उनकी बेगम के लिए, फरीदा जी, जिन्होंने request किया है आतिफ असलम का ये गाना जीना जीना from the movie बदलापुर.

दिस नेक्स्ट सॉन्ग गोज आउट टू रफी एंड सफी. भाई चाय हमें भी पसंद है, आपको भी पसंद है, तो इसीलिए ये गाना स्पेशली चाय पसंद करने वालों के लिए. आई एम श्योर सफी को चाय बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि उसको गाना भी सुनना है चाय के ऊपर. वैसे गाना अच्छा है, व्हाई नॉट. नीटी ने गाया है ये, नीटी मोहन.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: यार मॉडर्न मंगलसूत्र ढूंढते ढूंढते थक गई हूँ
3: तो कैरेट लेन चलो दे नाउ हैव अ स्टोर इन फ्रिस्को एंड द बेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगलसूत्रस
2: सीरियसली कैसा कलेक्शन है
3: मिनिमल डायमंड एलिगेंट एवरीडे स्टाइल्स यू विल प्रोबेबली स्पेंड मोर टाइम चूजिंग देन शॉपिंग
4: फाइंड द मंगलसूत्र दैट मैचेस योर स्टाइल एट कैरेट लेन होम टू द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगलसूत्रस कैरेट लेन नाउ ओपन इन फ्रिस्को नेक्स्ट टू तनिष्क
5: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है दोस्ती भी एंड ए लाइफटाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस एंटरटेनमेंट रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फन एशिया रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस
6: चौकटा कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरांड वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई प्लीज प्ले रिस्पांसिबली
7: उठा ले रे देवा उठा ले रे बाबा ये बॉक्सेस उठा ले रे
8: अरे बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं स्मार्ट लोग SFL Worldwide को बुलाते हैं
7: अच्छा सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो
8: डॉक्यूमेंट्स बॉक्सेस पूरा घर रिलोकेशन इवन कार ट्रांसपोर्ट
7: इंडिया तक
8: सिर्फ इंडिया नहीं विद इन USA और Worldwide कंप्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज
6: SFL Worldwide घर हो गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव सब सेफली पहुँचता है विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335
9: Helpline, how may I help you?
10: Hello, मेरे relatives आ रहे हैं. Everyone's asking lunch में क्या है?
9: Fear not, we have the perfect solution.
0: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
11: अरे अरे अरे डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है तारा कमर्शियल एनर्जी 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर होटल्स गैस स्टेशंस वेयरहाउसेस मेडिकल फैसिलिटीज रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस तारा कमर्शियल एनर्जी पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे तारा कमर्शियल एनर्जी जो आपके बिजनेस को रोशन रखे
12: जिंदगी एक रंगमंच है
13: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग एक्सपीरियंस अ स्मूथ सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com
14: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम चिकन तंदूरी मलाई चिकन टिक्का पनीर टिक्का मोमो या सोया चाप अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन
15: तुझे देखा तो ये जाना सनम
16: 90s का रोमांस 90s की मेलोडीज और वो लेजेंडरी आवाज DFW गेट रेडी टू रिलीव द मैजिक ऑफ कुमार शानू लाइव अनफॉरगेटेबल 90s सितंबर 11th एट द ब्रांड न्यू रॉबिन्सन फाइन आर्ट्स प्लेनो गाइए झूमिए और फिर से जी लीजिए अपने फेवरेट 90s के गाने लिमिटेड सीट्स फ्री पार्किंग और मीट एंड ग्रीट ऑप्शंस अवेलेबल फॉर टिकट्स विजिट eventbrite.com या फिर कॉल करें 214-869-2668 पर प्रेजेंटेड बाय फोकस एंटरटेनमेंट एंड फॉर्चून ग्रुप
17: Hello, guys. It is 8:04 on the clock. And you know what time it is? Of course, I just said that. It is 8:04 on the clock, but it is also the time for... oh, khansi aa gayi. It is also that mujhe itni zor ki maine joke mari na ki mujhe khud hi apni baaton pe hansi aa gayi. Kya baat hai? Aur khansi bhi aa gayi usse. Kya baat hai? So it is the time for our giveaway. Pata hai aaj ka giveaway kya hai? It is from the absolutely incredible Foodistan. Agar aapko nahi pata hai, to main bata do. Foodistan is this amazing grocery store which is located in Aubrey. Agar aapko chahiye Indian groceries, halal made fresh produce, bakery items, pani puri, fresh ganne ka juice, and catering services and even an upscale dining experience, then you need to visit Foodistan in Aubrey. They bring everything they see under in one place. And the best part kya hai? They guarantee the lowest price across all the stores. So definitely go check it out. And agar aap $30 ka order karte hain, तो आपको फ्री डिलीवरी भी मिलेगी विद इन 5 miles. अगर आप फन एशिया मेंशन करते हैं क्योंकि आपने हमारे से एड सुना था, देन यू गेट ए होल 10% डिस्काउंट. वाह, फ्री मनी, फ्री मनी, फ्री मनी. एंड आज के लिए हम खेलेंगे जो गेम है हमारा, विच इज आर साउंड्स लाइक गेम. आपको पता है कैसे खेलना है. मैं आपको एक गाना बताऊंगी, आपको उसका कॉपी तो नहीं, साउंड्स लाइक गाना बताना पड़ेगा. ओके, बॉलीवुड सॉन्ग. एंड देन मेरे लिए दो लाइन गाने भी पड़ेगी क्योंकि उससे आपको मिलेगा स्पेशल प्राइज. ओके, एंड क्या प्राइज है? द प्राइज इज ए फ्री डिश फ्रॉम द वाइब रेस्टोरेंट विच इज लोकेटेड इन साइड ऑफ फूडिस्तान इन ऑबरी. ठीक है, तो इट इज सुपर सिंपल. Without further ado, let's play our game. My number is 972-235-5555. तो यारो अपने फोन नंबर डायल करना शुरू कर दो क्योंकि गाना अभी शुरू होने वाला है.

0: I'll give you a little hint. It's from the movie Race. And Katrina Kaif वहाँ पे बड़ी sizzling तरीके से dance ons कर रही है. चलो हमारे पास call भी आ गई पहली. Let's take it. Hi, can you hear me?
1: Hi.
0: Hi. Okay. First of all, tell me your name, and second, go for the answer.
1: Hi, my name is Gaurav.
0: Okay, Gaurav ji, let's go. What is the song?
1: Chiggy Biggy.
0: Nay, that's not the one.
1: Okay.
0: That was very close though. Very, very close.
1: Okay.
0: Thanks for the call. Hi.
1: Chiggy Biggy.
0: Can you hear me?
2: Yes, I can hear you.
0: Okay, let's go. First of all, tell me your name.
2: My name is Ashish.
0: Ashish, okay, go for it. Main hint de rahi hu, it's from the movie Race.
2: वही जो टच मी टच मी टच मी
0: एग्जैक्टली थोड़ा साथ में गाए चलो दोनों मिलके गाते हैं 1 2 3 4 बिन तेरे सनम दस जहान में बेकरार
2: इस जहान में बेकरार है हम दम दम दम
0: एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट तो आशीष आप जीत चुके हैं गिव अवे आप ओबरी के पास रहते ना वहीं पे जीतना है ठीक है तो अच्छा मेरा ये गाना तो बज नहीं रहा एक सेकंड म्यूजिक बैकग्राउंड कहाँ है हमारा तालियां नहीं बज रही आज तालियों का देयर समथिंग रॉन्ग विद द तालियां तो कोई बात नहीं हम आपको ऐसे ही ऑर्गेनिक तालियां बजाते हैं ये
2: थैंक यू
0: तो आशीष प्लीज स्टे ऑन द लाइन मैं ये गाना बजाती हूँ एंड देन आई विल टेक योर इन्फॉर्मेशन ओके
2: श्योर
0: ओके गाइज आप ये वाला गाना एंजॉय करिए वी विल बी राइट बैक

भाई वो गाना तो बाद में सुनेंगे, लेकिन गाइस बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू जिमरान, जिमरान जो इस वीकेंड मूव हो रहा है टू स्टार्ट हिज न्यू लाइफ. वी होप, वी एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली होप आपकी नई लाइफ इन कोलीन या जहाँ भी आप मूव हो रहे हैं वो बहुत अच्छी जाए, एंड आपकी नई जॉब आपको बहुत सक्सेस दे. आई होप यू रीच द हाइट्स ऑफ सक्सेस एट योर न्यू जॉब. लेकिन गाइज बिफोर वी गो इन टू द नेक्स्ट राउंड ऑफ अनाउंसमेंट्स, दिस सॉन्ग गोज आउट टू जिमरान.

तो गाइज राखी आने वाली है अगले हफ्ते एंड ऑफ दिस मंथ 28 अगस्त को। तो आपको पता है ना, चौक टॉक कैसीनो एंड रिजॉर्ट इन ड्यूरॉन्ट आर डूइंग अ स्पेशल रक्षाबंधन। स्पेशली अगर आपके कोई भाई बहन के साथ आपकी कोई स्पेशल मेमोरी है तो सेंड अस अ 1 मिनट वॉइस नोट ऑन व्हाट्सएप एट 214-837-7147 एंड यू कुड विन सम रियली रियली एक्साइटिंग प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रियूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिजॉर्ट इन ड्यूरॉन्ट। भाई अगर आपके सिबलिंग आपसे कुंभ के मेले में बिछड़ गए हैं और उनसे दोबारा मिलने का मन हो रहा है और आपको लग रहा है कि अरे मैं कहीं कसिनो पहुंच जाऊं तो शायद मेरा जुड़वा भाई या बहन सामने होगी, तो बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। अगर आप मतलब कोई अमेरिकन वर्जन ऑफ कुंभ का मेला था, नहीं भी हो सकता है, तो जो भी है कोशिश जारी है, तो आप पहुंच जाना ठीक है चौकटा कसिनो रक्षाबंधन के दिन। कंप्लीट द कॉन्टेस्ट डिटेल्स एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन चेक आउट फन एशिया सोशल मीडिया पेजेस वेयर यू विल गेट मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस। ओके, चौकटा कैसीनो एंड रिजॉर्ट वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड एंड यू हैव टू बी 21 एंड ओल्डर टू पार्टिसिपेट। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। ठीक है, तो ओके, सो मेक श्योर यू सेंड योर वॉइस मेमो और योर वॉइस नोट ऑन दैट फोन नंबर। चलो तब तक के लिए ये गाना एंजॉय करते हैं।

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: Beta, 95% aaye?
2: Haan, mummy.
1: Good. Ab chaliye, papa. Aap apna report card dikhaiye.
3: Mera?
1: Haan. Profit margin, cash flow, tax planning, business goals. Sare accounts updated.
4: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी कैश फ्लो टैक्स प्लानिंग बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज विजिट agfintechs.com कॉल 972-618-8555 एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
5: हे मैप्स टेक मी टू माय देसी ग्रोसरी स्टोर
6: कैलकुलेटिंग राउट रीराउटिंग
5: अरे ये क्या मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है
6: लोकेशन अपग्रेडेड नाउ हेडिंग टू इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ
5: क्यों
6: क्योंकि फोर्ट वर्थ केलर हैसलेट और हर्स्ट के स्मार्ट लोग जानते हैं डेली ग्रोसरीज हो या पूजा एसेंशियल्स ऑथेंटिक इंडियन प्रोडक्ट्स और घर की हर जरूरत फाइंड एवरीथिंग देसी एट इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ
5: अच्छा तो सीधा वही ले चलो
7: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे फोर्ट वर्थ स्विच द रूट
6: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड
8: जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना
0: लाइफ हो या हेल्थ कब क्या हो जाए पता नहीं 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़रवे लोकेशन पर लुनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर अर्जेंट केयर एक्सरे सीटी स्कैन हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा सब कुछ एक ही रूफ के नीचे लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर ओपन 7 डेज अ वीक 8 AM टू 8 PM वॉक इन एनी टाइम 9191 काइज़रवे सुइट 205 फ्रिस्को
9: अरे तीन पे क्यों अटक गया
10: क्योंकि साल्स हॉट चिकन भी तीन पे पहुंच गया
0: प्लेनो रिचर्डसन एंड नाउ एट अ ब्रांड न्यू लोकेशन साल्स हॉट चिकन कमिंग सून
11: डैलस तैयार हो जाइए एक शानदार जश्न के लिए
12: पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास प्रेजेंट्स कायद मेला 2026 अ ट्रिब्यूट टू आवर हेरिटेज एंड अ सेलिब्रेशन फॉर ऑल एंजॉय लाइव म्यूजिक डिलीशियस फूड शॉपिंग कल्चरल एक्टिविटीज एंड फैमिली फन फॉर एवरी एज
0: लाइव परफॉर्मेंस बाय रागा बॉयज
12: सैटरडे ऑगस्ट 22nd फ्रॉम 3 PM टू 11:45 PM एट साउथ फोर्क रैंच इन पार्कर टेक्सास डोर्स ओपन एट 2 PM एंट्री और पार्किंग बिल्कुल फ्री Kayad Mela 2026.
0: Media Partner, Fun Asia Network.

0: एंड वी आर बैक गाइज. लेकिन अभी फिर से जाने वाले हैं हम छोटे से ब्रेक में. आई होप यू एंजॉयड दैट एब्सोल्युटली ब्रिलियंट म्यूजिक ब्रेक जो मैंने बिल्कुल भी बात नहीं करी बीच में, कोई ना एड बोला, क्योंकि मुझे लगा कि भाई आप सबको गाना सुनने का मौका देना चाहिए. ठीक है, हम बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन गाइज ब्रेक में जाने से पहले, टेक्सस प्राइमरी केयर 13 साल से टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक हैज प्राउडली केयर्ड फॉर आवर कम्युनिटी. दे आर नाउ ग्रोइंग विद ए ब्रांड न्यू नेम एंड ए सेकंड फ्रिस्को लोकेशन इंक्लूडिंग लनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. लनॉक्सी मेडिकल ब्रिंग्स प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, इन हाउस लैब टेस्टिंग, एक्सरेज, सीटी स्कैन्स, कार्डियक डायग्नोस्टिक्स, Himalayan Med Spa services all under one roof. Open 7 days a week from 8 a.m. to 8 p.m. You can walk in anytime. No appointment needed. ठीक है, तो गाइज हम अभी थोड़ी देर में ब्रेक में जाने वाले हैं, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले, यस वी आर स्टिल टेकिंग रिक्वेस्ट. अगर आपको कोई गाना रिक्वेस्ट करना है या फिर कोई गाना डेडिकेट करना है किसी को, तो जरूर मुझे कॉल करिए, कॉल करके बताइए, एंड आई बी मोर देन हैप्पी टू प्ले इट ऑन फॉर यू. दैट बींग सेड, हम लोग अभी जब ब्रेक में जाएंगे, ब्रेक से वापस आने के बाद, जैसे हमने कल कॉकटेल 2 की हमने थोड़ी बहुत स्टोरी बोली थी, दो दिन से मैं वही बोल रही हूँ. एक्चुअली वी वर डूइंग अ कैरेक्टरिस्टिक एनालिसिस, एक्चुअली कैरेक्टर एनालिसिस ऑफ द कैरेक्टर्स इन कॉकटेल 2. टुडे यू नो देन वो बोलते बोलते ना मुझे एली के कैरेक्टर पर थोड़ा ध्यान आया, एंड आई वॉज लाइक गाइज आई हैव टू टेल यू अ स्टोरी. तो आज मैं आपको एक स्टोरी बताने वाली हूँ. And that story is inspired from actually a real life story that I know of one person. So, you know, there was a person that I knew who was exactly like Ali. और उसने किसी की रिश्ते में तो नहीं, शादी में एकदम दरार डालने की कोशिश करी. And some say she was even successful. लेकिन हम उसके बारे में जानेंगे after this short break. तो बने रहिए, we'll be right back. In about 20 seconds. अभी है 20 सेकेंड है हमारे पास, मैंने थोड़ा ज्यादा जल्दी बोल दिया, लेकिन आई विल टेल यू द स्टोरी अबाउट दिस पर्सन दैट आई एम टेलिंग यू, एंड यू विल बी सरप्राइज कि लोग सिर्फ टीवी में नहीं होता है ऐसा, असली लाइफ में भी ऐसी होती है.
1: दिस इज द फन एशिया नेटवर्क. यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
4: कौन सा?
3: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
4: अरे सारे तो सेम है.
3: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला.
4: ओ हाँ, ये तो अलग है.
5: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
6: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
7: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 ईटरी. ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग.
5: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट. यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी.
8: तुमने कभी इंश्योरेंस लिया? कभी पॉलिसी समझ भी आया?
9: नहीं आया.
8: मुझे भी नहीं आया. आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनाडा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस. वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू. होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर. No confusion, no unnecessary extras. Call Humera Jumani at Sonata Inc. 972-863-7772. That's 972-863-7772.
10: Visit www.sanadainc.com today.
11: जीनी हुकम मेरे आका, हम आज पार्टी के मूड में हैं. एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो.
12: मिराज लाउंज, चलिए मेरे आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं.
11: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं,
12: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
9: और एंटरटेनमेंट,
12: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स, सब आपकी खिदमत में।
9: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
12: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
7: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500। The Jago Times Commission, Jago Bhi, Jagao Bhi। Exclusive Media Partner, Fun Asia।
3: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
10: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
3: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
10: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
3: सच में? सब संभालेंगे?
10: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
5: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770। Vanessa Events, your celebration partner.
0: Guys, we are back. तो जैसे मैंने आपको बोला था, आज मैं आपको बहुत अच्छी स्टोरी सुनाने वाली हूँ। ये स्टोरी शुरू होती है एक यंग से कपल की, ठीक है? वो बड़े प्यार में पड़े होते हैं एंड देन दे डिसाइड कि चलो भाई, हमारा प्यार इतना सॉलिड है, इतना स्ट्रांग है, चलो हम शादी कर लेते हैं, ठीक है? शादी करके लड़की को पता चलता है कि लड़के की तो एक बेस्ट फ्रेंड है। अभी हम इसका इनका नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये एक्चुअली रियल स्टोरी है, लेकिन कोई बात नहीं। तो लड़की की एक बेस्ट फ्रेंड है और वो लड़की बेस्ट फ्रेंड है। तो लड़की इज़ अ वेरी सिक्योर गर्ल, मतलब कभी उसको डाउट नहीं हुआ अपने प्यार पे, अपने हस्बैंड पे, अपने अपने रिलेशनशिप पे। तो उसने बोला, नहीं यार ठीक है, बेस्ट फ्रेंड ही तो है, आई एम अ मॉडर्न वुमन, ठीक है जो भी है, इट डजेंट मैटर। तो वो कई बार लड़के ना उसे कई सारी चीज़ें बोलता था विच जस्ट सीम्ड अ लिटिल बिट ऑड। जैसे फॉर एग्जांपल, वो जो लड़का था और वो उसकी जो बेस्ट फ्रेंड थी, वो दोनों एक दूसरे के साथ वीडियो कॉल वगैरह पे बहुत बातें करते थे, सेइंग दैट वी आर वर्किंग, वी आर हैविंग अ वर्क मीटिंग, दे आल्सो यूज्ड टू वर्क टुगेदर। तो कई बार वो कहता था, अच्छा पता है आज क्या हुआ, हा हा हा हा, मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है, हम उसका नाम बोलते हैं, लेट्स कॉल हर, व्हाट शुड वी कॉल हर, वी शुड कॉल हर जी, ठीक है जी। तो जी आज आई वीडियो कॉल पे, जी ने सिर्फ एक शर्ट पहनी हुई थी, नीचे तो कुछ पहना ही नहीं हुआ था, एंड वो भूल गई पहनना कपड़े। और मैं उसको कह रहा हूँ, जी तू वीडियो कॉल पे है, आई एम अ गाय, यू शुड गो पुट ऑन सम पैंट्स। एंड देन लड़की को जो जिसका हस्बैंड था, द वाइफ, शी वॉज लाइक, ओ दैट्स वियर्ड, वो ऐसी चीज़ें कौन भूल सकता है। आई मीन, अच्छा ठीक है, इफ़ यू आर अ ओल्डर मैन सफरिंग फ्रॉम अल्जाइमर्स, देन मे बी आई कैन अंडरस्टैंड, बट दिस सीम्स अ लिटिल बिट ऑकवर्ड, राइट? तो वो मुझे ये सारी बातें सुनकर ना थोड़ी सी एली टाइप की फीलिंग आ गई, क्योंकि एली वॉज ऑल्सो लाइक ओ फ्री एंड केयर, केयर फ्री एंड फ्री स्पिरिटेड एंड एवरीथिंग। तो फिर लड़की ने ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया, लड़की ने बोला, नहीं ठीक है, मे बी जी का नेचर ही ऐसा हो, वो लक्कड़ होगी, आई मीन वट एवर, आई ट्रस्ट माई पार्टनर, आई ट्रस्ट माई हस्बैंड, ठीक है। तो ठीक है, ऐसे कुछ हुआ, काफ़ी टाइम निकल गया, एक महीना, दो महीना हो गया, और उसके बाद मैं बताती हूँ आगे क्या होता है। बहुत बहुत लंबी स्टोरी है ये, सुनते रहिए, बनते रहिए, बहुत कुछ होने वाला है। उसके बाद मेन चीज़ ये होती है कि लड़का लड़की दोनों की शादी हो जाती है, देन दे डिसाइड टू मूव इन टू देयर ओन हाउस, एक अलग शहर में, वो शहर छोड़ के ही चले जाते हैं। तो सोचो फॉर एग्जाम्पल, हैदराबाद से वो चेन्नई शिफ्ट हो गए, ठीक है? अब चेन्नई शिफ्ट हो गए, उन्होंने अपना घर ले लिया, एक अलग से एक फ्लैट ले लिया, अपार्टमेंट ले लिया। तो उस अपार्टमेंट में रहते रहते फिर जी को ध्यान आया, जी द बेस्ट फ्रेंड को ध्यान आया कि नहीं यार, मैं यहाँ पे हैदराबाद में, मुझे अभी नहीं रहना है, मुझे भी चेन्नई शिफ्ट होना है। तो क्योंकि सारी अपॉर्चुनिटीज़ वहीं पर है चेन्नई में, तो मे बी आई एल ऑल्सो मूव टू चेन्नई। तो पहले तो वो शी यूज़ टू शटल अप एंड डाउन, मतलब डेली में ही चलता था ऑलमोस्ट फ्रॉम हैदराबाद टू चेन्नई, इमेजिन लाइक वंस अ मंथ एट लीस्ट। लेकिन कुछ महीना ऐसा चला और ये इन्हीं के साथ रहती थी बाय द वे, जी मूव होके जब भी चेन्नई जाती थी ये लड़का लड़की इनके घर पे ही रहती थी। उसके बाद क्या होता है मैं आपको बताती हूँ इस गाने के बाद।

तो उसके बाद क्या होता है? सो जी मूव्स, जी डिसाइड्स टू मूव टू चेन्नई. तो अब ये लड़का जो है वो कहती है, देखो मेरे को हैदराबाद से चेन्नई मूव होना है, इतना सारा सामान है, मैं अपना घर वर सब पैक करके आ रही हूँ, मेरे पास कुत्ता भी है, मैं फ्लाइट लेके तो नहीं मूव हो सकती, आई वॉन्ट टू ड्राइव. तो लड़का कहता है, हाँ हाँ ठीक है, मैं आ जाता हूँ तेरे को पिकअप करने, हम दोनों ड्राइव रोड ट्रिप करते हैं, चल हैदराबाद से चेन्नई, ठीक है. और यहाँ पे जो लड़की है, यू नो द ओरिजिनल गर्ल, द वाइफ, शी इज सिटिंग देयर कि नहीं कुछ नहीं है इनके बीच में, लेकिन कुछ अजीब सी फीलिंग तो आ रही है उसको, इंट्यूशन तो हो रही है कि इन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ तो बढ़ रही हैं, देव ऑलवेज बिन फ्रेंड्स, लेकिन ये नज़दीकियाँ तो कुछ ज़्यादा ही हो रही है. उसके बीच में क्या होता है कि जो वाइफ है, आफ्टर लाइक अ रियली रियली बैड स्ट्रोक ऑफ लक, उसके पापा बड़े बीमार हो जाते हैं, ठीक है. उसके पापा को बार बार बार बार कोई ना कोई इश्यूज आती रहती है, एंड शी हैज़ टू कॉन्स्टेंटली लीव हर हाउस इन चेन्नई एंड देन मूव बैक विथ हर पेरेंट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है. आई एम टॉकिंग लाइक 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, ऐसे करके ना. और इसके बीच में ये लड़की जो जी है, शी हैज़ ऑल्सो मूव्ड, शुरू में आके उसको घर नहीं मिलता है, तो वो उन्हीं के घर पे रह रही होती है, ठीक है. और जी जो है, शी हैज़ बेसिकली मूव्ड इन टू दिस गायज हाउस एंड दिस हिज वाइफ्स हाउस. एंड द वाइफ थिंक्स कि नहीं यार, ये तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, इनके बीच में कुछ नहीं है, मैं अपने फादर का ध्यान रखती हूँ क्योंकि मेरे पापा तो बार बार बीमार हो रहे हैं, आई मीन आई एम माई ब्रेन इज़ फोकस्ड समवेयर एल्स, ओके. तो उसके बीच में वहाँ पे जी हैज़ स्टार्टेड लिविंग देयर. और एक दिन द वाइफ गोज लाइक कि ठीक है, आई मीन इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई हैव गॉन बैक टू माई हाउस, आई हैव बेसिकली बिन लिविंग विद माई पेरेंट्स, तो आई विल गो टू चेन्नई एंड आई विल सी व्हाट्स हैपनिंग देयर, मैं अपने घर वर का ध्यान तो रखूँ, वहाँ पे जाती हूँ. वो घर जाके पहुँचती है, दिस मैडम जी इज़ वॉकिंग अराउंड द हाउस इन ओनली अ कुर्ता, नो पजामा, ओके. सुबह उठती है, समहाउ हर शी सडनली नाउ सीइंग हर हस्बैंड एंड दिस अनदर वुमन, दे आर सो क्लोज, लाइक फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन देम जो पहले नहीं, जो पहले काफ़ी था एक्चुअली, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, एंड इट सीम्स लाइक देर इज समथिंग मोर देन वॉट इज गोइंग ऑन. तो देन शी स्टार्ट कन्फ्रंटिंग कि भाई तुम्हारे बीच में चल क्या रहा है, क्या चल रहा है? तो वो कह रहा है कुछ नहीं चल रहा है, तुम पागल हो, तुम इनसिक्योर हो, मेरे और जी के बीच में कुछ नहीं चल रहा है, वो तो हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, मतलब शी इज़ लाइक माई सिस्टर. एंड अब उसको ना गैस लाइटिंग कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली, ठीक है, वाइफ को. और वाइफ को लग रहा है भाई मैं तो देख रही हूँ, मेरे आंखों के सामने जो आ रहा है नज़र, ये हो क्या रहा है? तो मतलब सम हाउ द गाय इज स्टिल गैस लाइटिंग है कि नहीं, तुम पागल हो, यू आर बिकमिंग एन इनसिक्योर वाइफ, जो हमेशा होता है, जो हमेशा बोलते हैं. तो वही चीज़ उसको बार बार सुनाई जा रही है. उसमें से लड़की थोड़ा अंदर से गिल्ट हो रही है, कहती है नहीं यार, मे बी आई एम एक्चुअली बिकमिंग लाइक दैट, ये तो मेरा हस्बैंड नहीं है, तो मेरे बारे में कभी कुछ नहीं, मेरे कुछ बोलने से पहले ही वो सामने ला के रख देता था चीज़ें, ये तो पता नहीं इसको अचानक से क्या हो गया, सडनली हैज यू नो समथिंग हैज़ चेंज, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, लेकिन दिस पर्सन हैज़ चेंज्ड, मैं इसको कैसे डाउट कर सकती हूँ क्योंकि ये तो मुझे इतना प्यार करता है. मैं पहले कुछ कुछ भी बोलती थी, मेरे बोलने से पहले वो चीज़ें सामने आ जाती थी, ही टेक सो मच केयर ऑफ मी एंड आई शुडन डाउट हिम. और प्लस मैं जी को कैसे डाउट कर सकती हूँ, ये दोनों एक दूसरे को 8-10 साल से जान रहे हैं, अगर कुछ होना होता इनके बीच में अभी तक हो चुका होता, वाई वुड दे वेट कि हमारी 1 साल की शादी हुई है सिर्फ, तो शादी होने के बाद क्यों करते? करना होता तो इतने साल पड़े थे, 7-8 साल, उसमें भी हो सकता था कुछ, तब क्यों नहीं हुआ? तो आगे क्या होता है हम इस गाने के बारे में गाने के बाद बताते हैं.

The Flavor Lounge, guys. The Flavor Lounge is now in Frisco. They are serving their all-new weekend lunch buffet featuring mouth-watering, delicious dishes, exciting live counters, chef special, and fresh flavors to that you'll want to keep going back to. All this is for just $24.99 per person. Enjoy the buffet on Saturday and Sunday from 12 p.m. to 3 p.m. आप अपने दोस्तों को लेके जा सकते हैं, फैमिली को लेके जा सकते हैं, बिकॉज दिस इज सच अ ग्रेट आइडिया. आई लव बफेज, इतना सारा खाने को मिलता है. एंड देन यू कैन ट्राई ऑल द डिशेज. यू डोंट हैव टू लिमिट योर सेल्फ टू लाइक ओनली दैट वन बटर चिकन एंड वन दाल मखनी एंड सम नान. नो नो, यू कैन ट्राई सो मच मोर. गो एंजॉय द वीकेंड, हैव सम अमेजिंग फूड एट द फ्लेवर लाउंज, 5855 प्रेस्टन रोड, फ्रिस्को. फ्लेवर लाउंज, गुड फूड, ग्रेट मेमोरीज. एक गाने के बाद हम वापस आते हैं. वी आर अबाउट टू गो इनटू अ ब्रेक एट 9:30, बट स्टे ट्यून्ड, बिकॉज़ मैं आपको वो स्टोरी कंप्लीट करके सुनाने वाली हूँ.

0: Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
1: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
0: Kya matlab?
1: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
0: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
1: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
0: Ab to karna hi padega, madam.
2: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future. Sathiya.
3: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
4: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
5: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
6: तुमसे मिलके दिल का है।
4: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
5: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
7: Hi, this is Janvi Kapoor and you're listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

तो गाइज आगे क्या होता है, आगे ये होता है कि द वाइफ शी स्टार्ट्स डाउटिंग कि भैया इस जी के बीच में और मेरे पति के बीच में कुछ तो चल रहा है, लेकिन मैं ऐसे पूछ नहीं पा रही हूँ और मैं पूछ रही हूँ तो ये मुझे इनसिक्योर बोल रहा है, लेकिन यू नो मैं इससे बोल रही हूँ कि भाई तुम मुझसे थोड़ा डिस्टेंस रखो क्योंकि मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, बट द हस्बैंड इज कॉन्स्टेंटली गैस लाइटिंग हर, ही सेइंग कि नहीं तुम्हारे दिमाग में ही खराबी है। गाइज एक पहली चीज़ तो पता है मुझे ये लगता है कि अगर आप किसी को कुछ बोलो इस तरह से एंड वो सडनली बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं ना, दैट मीन्स दे आर इन द डाउट ओवर देयर, ठीक है? तो दैट मीन्स अगर कोई बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाता है ना आपको लेके, नहीं नहीं नहीं नहीं ऐसे कुछ, दैट मीन्स यू हैव टू बी लाइक अच्छा ज़रूर कुछ गड़बड़ है। जो पर्सन एकदम क्लीन होता है समहाउ देयर बॉडी लैंग्वेज एंड देयर रिएक्शन इज अ लिटल बिट डिफरेंट। पीपल हु गेट मोर डिफेंसिव दे आर ऑलवेज इन द रॉन्ग, दैट्स माई ओपिनियन, बट आई कुड ऑल्सो बी रॉन्ग। सो तो द हस्बैंड इज गैस लाइटिंग हर एंड देन दिस गर्ल शी गोज लाइक कि अच्छा ठीक है हम एक काम करते हैं, हम एक मीटिंग करते हैं तीनों मिलके, बिल्कुल कॉकटेल टू जैसी सीन होती है, ठीक है? सो जैसे कॉकटेल टू में दिया एली और कुनाल तीनों साथ में ये तीनों खड़े हुए हैं, लव ट्राइंगल हो रहा है ना, वैसे यहाँ भी एक रियल लाइफ लव ट्राइंगल हो रहा है। तो ये दोनों साथ में तीनों बैठे हुए हैं तीन कोने में, कमरे के तीन कोने में, कहते हैं चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच में, बताओ मेरे से, मुझे तो दिखाई दे रहा है तुम्हारे बीच में चल क्या रहा है, डू यू नो वॉट इज गोइंग ऑन, और अगर नहीं पता क्या चल रहा है तुम्हारे बीच में तो मैं कहती हूँ यू शुड गो टू द अदर रूम, टॉक इन पर्सन, डू वॉट एवर इट इज दैट यू नीड टू डू एंड देन टेल मी, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू साउंड लाइक द क्रेजी पर्सन, क्योंकि दुनिया में कोई किसी को पागल बोलने में इट्स नॉट अ नाइस फीलिंग, राइट? तो वो कहती है उसको कि देखो तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन मेरे दिमाग से ये डाउट क्लियर करो कि तुम्हारे बीच में कुछ तो चल रहा है। तो वो हस्बैंड जो कहता है वो चुप, वो दूसरी जी की तरफ देख रहा होता है, उस बंदी की तरफ, ठीक है, उसकी जो बेस्ट फ्रेंड होती है BFF, तो वो अपनी BFF की तरफ देख रहा है और वो भी उसकी तरफ देख रही है, उनके बीच में आंखों ही आंखों में इशारे हो रहे हैं ऐसी आंखों में इशारे हो रहे हैं, वो कोई मुंह नहीं खोल रहा है, तो ये सोच रही कि ये हो क्या रहा है। फिर फाइनली BFF अपना मुंह खोलती है, कहती है देखो हम एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन हमारा प्यार बहुत पाक है और बहुत ही पावन है, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, नथिंग लाइक यू आर इमेजिनिंग, हम लोग के बीच में बहुत ही क्लीन तरह का प्यार है, हम एक दूसरे को बहुत सालों से चाहते हैं लेकिन हम वैसे कुछ भी नहीं है हमारे बीच में। तो वो कहती है अच्छा ठीक है, फिर अब वो दिमाग में उसके दोबारा आ जाता है ख्याल कि नहीं यार ये तो उसने तो लड़की ने तो बोल दिया, अगर लड़की से उनके बीच में कुछ चल रहा होता वो तो सीधा सीधा मुंह खोल के बोल देती, वो नहीं बोला उसने, तो अब लड़की को अंदर से डाउट हो रहा है कि नहीं यार मैंने ज़्यादा कर दिया ज़्यादा कर दिया, फिर उस गुस्से में आके फिर इनके बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कॉन्स्टेंटली लड़का कह रहा है उसने तेरी वेडिंग रिंग चूज़ करी थी, हाउ कैन यू डाउट हर, लड़की कह रही है नहीं मैं इस शायद ज़्यादा सोच रही हूँ, लेकिन शक्ल पे दिख रहा है दोनों के, ठीक है? तो आगे जानते हैं क्या होता है, बहुत ही जूसी स्टोरी होने वाली है, ये एक्चुअली मेरी फ्रेंड की स्टोरी है, जस्ट सो यू नो, दैट्स वाई आई नो द फर्स्ट हैंड अकाउंट ऑफ दिस, दिस इज अ रियल स्टोरी यू गाइज, रियल लाइफ कॉकटेल टू, वॉट काइंड ऑफ अ कॉकटेल आई डोंट नो, यू कैन टेल मी द नेम, बट एंजॉय द सॉन्ग फर्स्ट।

गाइज, आपको पता है ना, तनिष्क फ्लेवर फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स इज हियर. इंजॉय अप टू 25% ऑफ ऑन डायमंड वैल्यू एंड मेकिंग चार्जेस, प्लस 0% डिडक्शन ऑन द एक्सचेंज ऑफ ओल्ड गोल्ड अबव 18 कैरेट्स. सेलिब्रेट द सीजन विद टाइमलेस स्पार्कल एट तनिष्क. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. गाइज, यू आर स्टिल लिसनिंग टू इपी द हिपी ऑन फन एशिया रेडियो 104.9 FM, एंड दिस इज माई शो एन इवनिंग एंड जेलस. That's right, guys. अभी ऑलमोस्ट टाइम खत्म हो गया है. इट इज़ 9:49 ऑन द क्लॉक. अनफॉर्चुनेटली मेरी स्टोरी कंप्लीट नहीं हो पाई, पर मैं आपको इस बात पे छोड़ूंगी ये स्टोरी. होपफुली कल मैं कंप्लीट कर सकूँ. अगर कल भी कंप्लीट नहीं हो पाएगी तो देन आप यू कैन जस्ट इमेजिन आगे क्या होगा. तो फिर मैं आपको इस बात पे आई लीव द स्टोरी एट दिस मच राइट नाउ कि जो भी हुआ भले के लिए हुआ. सब तीनों तीनों के तीनों अपनी ज़िंदगी में खुश हैं. अब साथ में हैं या अलग है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, तो आप इमेजिन कर सकते हैं. और अगर नहीं करना है तो मत करिए. आई मीन दैट्स अप टू यू, बट इट्स अ वेरी एंटरटेनिंग स्टोरी. सो वी विल कम बैक एंड लिसन टू दिस बिकॉज एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट यही सब चलता है लाइफ में, है ना.

0: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500 The Jago Times Commission Jago bhi jagao bhi Exclusive Media Partner Panacea
1: अरे तीन पे क्यों अटक गया
2: क्योंकि साल्स हॉट चिकन भी तीन पे पहुंच गया
3: प्लेनो रिचर्डसन एंड नाउ एट अ ब्रांड न्यू लोकेशन साल्स हॉट चिकन कमिंग सून हु आर द एम्प्लॉइज योर कंपनी सिंपली कैनॉट अफोर्ड टू लूज And are you doing enough to reward and retain them? An executive bonus plan using life insurance can be a flexible way to offer select key employees valuable protection today and potential future benefits later. To learn whether this strategy may fit your business, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult qualified legal and tax professionals before implementing any business insurance strategy. Not legal, tax, investment or financial advice.

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

पटक मटक लौंडो के दिल पटक पटक सांसें जाए अटक अटक आता माजी सटक सटक बम तेरा गुदे खाए कमर पे तेरी बटरफ्लाई बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए Come on baby kick kick काटू तेरी टिकट टिकट खेलता नहीं क्रिकेट विकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट

0: वल्ला सा रंग तेरा बावला सा ढंग तेरा मुझसे चोरी चोरी बातें करे अंग अंग तेरा तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा लगे मीठी जैसे शक्कर शक्कर आजा चला ले चक्कर चक्कर बाकी के लौंडे पकड़ पकड़ I am the baddest motherfucker.
1: Heartbeat.

Storming into a million hats. 104.9 FM. Number one hit station.

दिल तेरा लेके ही तो लिख बेबी किसी से भी पूछ लौंडा टू मच है बोली में थोड़ा रियान भी टच है जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच है बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ बी ए डी शाह नाम बदल दियो मेरा बेबी जो ना कर रहा दी तेरी ना

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट, डैलस में रेडियो का डैड, फनीशिया 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500 The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Panacea.
1: Same order again? Same pizza, same taste, same story. Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.

0: कितने आदमी थे?
1: सर्कल पूरा का पूरा डेलिस फनीशिया सुनता है।

0: सर लगता है फारूक नहीं बोलेगा,
1: उसका बाप ही बोलेगा।
2: बेटा वार्निंग नहीं दूंगा।
3: 25 किलो HMX हमारे शहर में आ चुका है, ना जाने अब तक उसके कितने टुकड़े पूरे शहर में बच चुके होंगे।
4: होली स्पिरिट हॉस्पिटल में एक एक्सीडेंट विक्टिम लाया गया है। He's a human bomb.

ज़हीर नसीब, इतनी रात गए आप हमारे साथ बने हुए हैं, कुछ तो बात होगी इस चैनल में। रात भर आपके साथ फन एशिया रेडियो 104.9 FM।

हम इस मोड से उठकर अगले मोड चले, हम इस मोड से उठकर अगले मोड चले, उनको शायद देर लगेगी आने।

दोस्तों, नॉलेज इज द ओनली थिंग जो बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है. नॉलेज इज दैट लाइट जो आपकी जिंदगी को रोशन करती है. और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज के जमाने में नॉलेज सिर्फ किताबों में नहीं, हर कॉन्वर्सेशन, हर सफर, हर गाने में मौजूद होती है. तो क्यूरोसिटी रखिए, सवाल कीजिए, क्योंकि जानने का जुनून ही बनाता है इंसान को बड़ा. नॉलेज ही पावर है, और पावर तो आपको फनी जर रेडियो भी देता है विद दिस नेक्स्ट सॉन्ग, फील द पावर.

क्या आप जानते हैं कि लाफ्टर इज लाइक अ 15 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। जैसे वर्कआउट किया हो आपने, मतलब अगर आप हंसी हंसी में हमारा शो सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी कैलोरीज भी बर्न हो रही हैं। तो रेडियो सुनना अब हेल्दी भी है, तो सुनते रहिए फनीशर रेडियो।

Thank you for tuning into 104.9 FM Fun Asia Radio. एक मशहूर कहावत है, बूंद बूंद से दरिया बनता है. मतलब छोटी छोटी एफर्ट से बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं. छोटे छोटे मसलों के हल ढूंढिए, बड़े बड़े मसलों के हल खुद ही निकल आएंगे. जैसे छोटे छोटे गाने मिलकर बनते हैं फन एशिया की बहुत बड़ी और कमाल की प्लेलिस्ट. सो कमाल धमाल, फन मस्ती और एंटरटेनमेंट के लिए बने रहिए फन एशिया रेडियो के साथ.

दोस्तों, मुस्कुराहट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। स्माइल ज्यादा कीजिए, फ्री है और सबको अच्छी भी लगती है। वो कहती है ना, चेहरे पे मुस्कान हो तो मुश्किलें भी शर्मा जाती हैं। तो आप अपनी स्माइल से, अपनी मुस्कुराहट से आधी से ज्यादा मुश्किलों को तो वैसे ही मात दे सकते हैं, और बाकी आधी को मात देने के लिए फन एशिया रेडियो के साथ बने रहिए।

तन्हाई में, अकेले में, महफिल में और मेले में, आपके साथ है फनीशिया।

दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को सिंपल बनाना चाहते हैं तो एक गोल्डन ट्रिक याद रखें, declutter your desk, declutter your mind. सफाई सिर्फ घर की नहीं बल्कि thoughts और दिमाग की भी जरूरी है. So clean space, clean thoughts and clean vibes only. यही है Fun Asia Radio का अंदाज. सुनते रहिए हमें और इस next गाने को.

0: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
3: Hello guys, this is me, Kinjal Dave, and you are listening and watching Fun Asia Radio.

एक रात वो गया था जहाँ रात रुक के, अब तक रुका हुआ हूँ वही रात रुक के. डोंट चेंज दैट डायल, कीप इट राइट हियर ऑन फन एशिया रेडियो 104.9 FM.

जिंदगी एक लंबी फिल्म है और हर दिन एक नया सीन। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो जब भी मुश्किल हो, समझ लो कि डायरेक्टर ऊपर वाला है और स्क्रिप्ट उसकी सुपर हिट ही होती है। बस पॉपकॉर्न लेकर चिल करो, बिकॉज लाइफ इज वर्थ वॉचिंग, जस्ट लाइक वन एशिया रेडियो इज वर्थ लिसनिंग।

क्या आपको पता है कि आपकी हार्ट बीट सिंक हो सकती है म्यूजिक के साथ? अगर गाना फास्ट हो तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और अगर गाना स्लो हो तो काम हो जाती है, हल्की हो जाती है। तो अगला गाना सुनते ही अपना दिल जरूर चेक कीजिए। फनी इज योर रेडियो, लिटरली प्लेइंग विद योर हार्ट बीट्स।

हेलो एवरीवन, एक सिंपल ट्रिक फॉर इंस्टेंट हैप्पीनेस। अपने आप को आईने में देखिए और 30 सेकंड्स के लिए मुस्कुराइए। अजीब तो लगेगा, फनी भी लगेगा, लेकिन आपके दिमाग को ये मैसेज जाएगा कि यू आर जेन्युइनली हैप्पी। वो कहते हैं ना, मुस्कुराहट सबसे खूबसूरत जेवर है, सो इस जेवर को पहने रखिए, स्माइल करिए और डैलस की ट्रैफिक को थोड़ा हल्के में लीजिए इस गाने के साथ।

नेकी कर दरिया में डाल, ये मशहूर जमाना कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन आजकल का वर्जन कुछ अलग ही हो गया है। नेकी कर और ऑनलाइन पोस्ट कर दे, मगर आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। कोई भी अच्छाई, कोई भी नेकी जो आप करते हैं, उसे अपने तक ही रखिए, क्योंकि काइंडनेस इज लाइक वाईफाई, सबको फील हो जाती है, पासवर्ड की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। इसी तरह फन एशिया रेडियो आपके दिलों में धड़कता है बगैर आपको महसूस हुए।

हेलो एवरीवन, यू ट्यून्ड इनटू 104.9 एफएम फनी शेयर रेडियो। क्या आपको पता है कि असल में चॉकलेट वंस यूज्ड टू बी अ करेंसी? जी हाँ, माया सिविलाइजेशन में चॉकलेट वाज मनी। इमेजिन आज के जमाने में अगर आपकी सैलरी चॉकलेट्स में मिलती हो तो क्या होगा? डालस में सब सारे के सारे जिम फुल हो जाएंगे। जी हाँ, लेकिन जिंदगी की मिठास तो जिंदगी की मिठास है। मजा लीजिए जिंदगी की मिठास का फनी शेयर रेडियो के साथ।

नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव वाइब्स से और नेगेटिव चीजों से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि नेगेटिविटी ब्रीड्स नेगेटिविटी। वही नेगेटिविटी आप तक ट्रांसफर हो और आपके सुकून को बर्बाद कर दे, इससे बेहतर है कि पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जाइए। और अगर कोई भी पॉजिटिव थॉट आपको नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, फाइनेंशियल रेडियो पे ट्यून इन कीजिए और सुनते रहिए हमारे साथ इन जबरदस्त गानों को। कीप एंजॉयिंग।

0: तो रुको जरा, सबर करो।
1: अगला गाना फुल वाइब बदलने वाला है। स्टे ट्यून टू फनेशिया।
2: बरसों हो गए बिछड़े, अब साथ नहीं हो तुम, फिर ऐसा क्यों लगता है जहां मैं हूं वहीं हो तुम। क्या करूं मैं अपनी उंगलियों का, किसी की भी तस्वीर बनाऊं तुम्हारी बन जाती है। ये सिर्फ मेरा पागलपन है या तुम भी मेरे लिए पागल थी।

0: Cameron. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
1: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
2: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
3: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
4: तुमसे मिलके दिल का है।
2: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
3: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।

0: तारा कहाँ चली गई थी तुम? ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया था।
1: राज
0: तुम ठीक तो हो?
1: राज
0: गिव मी अ सेकंड।
2: हे सॉरी ब्रदर, एक्चुअली शी इज माय वाइफ एंड शी इज मेंटली अनवेल। अब कुछ भी याद नहीं है उसे, सब कुछ भूल चुकी है, बस राज राज करती रहती है। पता नहीं कौन है ये राज। Anyway, sorry bro, I'll take your leave, okay?
3: जवाब मिल गया मुझे। मैं तुम्हारी जिंदगी में कहीं नहीं था, फिर भी मैं ही तुम्हारी जिंदगी था। सिर्फ मैं ही तुम्हारे लिए पागल नहीं था,

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं फन एशिया पर ही आते हैं।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: Desi Swag. Desi Swag. Bollywood Tag. Fun Asia. Fun Asia.
1: Allah. आपको दवा की नहीं, दुआ की जरूरत है।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट डैलस में रेडियो का डैड फनीशा 104.9 FM
1: Yeah, it's coming up.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: Same order again? Same pizza, same taste, same story. Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
4: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
5: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
6: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
7: तुमसे मिलके दिल का है।
5: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
6: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।

0: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
1: Hi, this is Rani Mukherjee. You're listening to Fun Asia Radio.

0: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
1: What would happen to your business if a key owner, partner, or top employee passed away unexpectedly? Would revenue, credit, client relationships, or daily operations be affected? KeyPerson Life Insurance can help provide funds to support the business during a difficult transition. Protect the people who help keep your business running. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Benefits and tax treatment depend on individual circumstances. Consult qualified legal and tax professionals. Not legal, tax or investment advice.
2: Hi Dallas, this is Ranbir Kapoor and you're listening to Fun Asia Radio.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।
2: दिल हंसते हंसते रो पड़ा।
3: अपनी फैमिली से और झूठ नहीं बोल सकती। I'm sorry।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
3: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Cinnamon Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
4: Hi, this is Konkana Sen Sharma and you're listening to me on Fun Asia Radio.

0: 104.9 FM. Fun Asia Radio. Fun Asia Radio. Non-stop entertainment.
1: क्योंकि तुमने कभी किसी से प्यार नहीं किया.

0: पिक्चर
1: अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
2: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं,
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं. Everyone's asking लंच में क्या है.
2: Figure not, we have the perfect solution.
0: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
3: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khawaja, your legal lifeline.
4: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
5: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
6: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
7: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
6: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
8: ड्यूड, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
9: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
8: कैसे?
9: पेज 3 ईटरी?
8: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
9: ड्यूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
8: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
10: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट।
11: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
12: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
11: Kya matlab?
12: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
11: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
12: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
11: Ab to karna hi padega, madam.
13: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
14: Ajji, sunte ho, soch rahi thi bete ki shaadi India mein kare?
15: India mein? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
14: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
15: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
14: सच में? सब संभालेंगे?
15: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
0: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. वेनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
16: Ladies and gentlemen, welcome to the show on this lovely Thursday morning. सबसे पहले तारीफ उस सुपर वाले की जिसने दुनिया बनाई, चांद सितारे बनाए, जमीन आसमान बनाए, इंसान के दिल में मोहब्बत का जज्बा पैदा किया। उसी ऊपर वाले की तारीफ है जिसने मुझको, आपको और ये सारी कायनात को इंसानियत को आगे बढ़ाने के लिए बनाया है। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, याली मदद, देन अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एज वी गेट स्टार्टेड विद आवर प्रोग्राम।

हजार बार सोचा, कह दूं कि फ्रेंड नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड है तू, पर सपने टूट जाने का डर कभी दिल से गया ही नहीं।

0: Weaving a tale full of love and longing with Musafir Cafe, the dream project with the mountains at its center. Musafir Cafe.
1: Heere moti maino chahu.
2: Achha, manifest karne se pehle thoda dobara soch lo. Kyunki ab diamonds mein mil raha hai buy 2 get 1 free offer. Tanmay Jewelers in Irving. Diamond rings, pendants, earrings aur bridal jewelry par buy 2 get 1 free. Aur wo bhi sab kuch wholesale price par. Chahe proposal ho, wedding ho ya bas apni sparkle upgrade karni ho. Ab shine double within budget. Luxury, brilliance, celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
3: Weekend ka plan abhi tak nahi bana. Bas 90 minutes north of Dallas, Choctaw Casino and Resort, Durant mein, har visit ban jata hai ek winning experience. Poker ho ya blackjack, exciting slots ho ya phir 20 amazing restaurants mein zabardast dining. Aur agar break chahiye, to luxurious sky tower aur relaxing spa aapka intezar kar rahe hain. To sirf lucky feel mat kijiye, lucky ban jaiye. Choctaw Casino and Resort, Durant. Entertainment, luxury aur excitement. Sab ek hi destination mein. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
4: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
5: Call the SBA Loan Experts.
4: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
5: Call the SBA Loan Experts.
4: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
5: Call the SBA Loan Experts.
4: Construction हो या renovation, business खरीदना हो या refinance कराना हो, for all your business financial needs at the best interest rate and lowest down payment, call the SBA Loan Experts at 817-786-3338. That's 817-786-3338.
6: अरे तीन पे क्यों अटक गया?
7: क्योंकि Sal's Hot Chicken भी तीन पे पहुंच गया.
8: Plano Richardson and now at a brand new location. Sal's Hot Chicken coming soon.
9: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
10: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
11: Paid spokesperson. Principal Office, Dallas, Texas.
12: Floors clean.
13: Check.
12: Windows clean.
13: Check.
12: Kitchen clean.
13: Check.
12: Air ducts clean.
13: Wait, air ducts bhi clean karna hota hai?
14: Bilkul. Jo dikhta hai, wo to hum clean kar lete hain. Lekin jo nahi dikhta, uska kya? That's where Duct Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology. No roto brush. Plus dryer vent or chimney cleaning. Ghar ho, restaurants, hotel, offices, ya phir any business. Duct Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
15: सुनो कल बहुत काम है. पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली. कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे.
16: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
14: कहाँ? फूडिस्तान इन ऑबरी. फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानीपुरी, केटरिंग सर्विसेज, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी. एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइव, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर.
10: फूडिस्तान इन ऑबरी. मेंशन फन एशिया एंड एंजॉय 10% डिस्काउंट.
17: अजी सुनते हो?
18: अजी नहीं, एजी सुनते हैं.
9: The OG of tax planning, AG Fintax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Funasia Radio.
19: Sadia.
20: कुछ आवाजें सिर्फ entertain करती हैं, और एक आवाज आपकी जिंदगी का soundtrack बन जाती है.
9: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
10: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
21: तुमसे मिलके दिल का है.
9: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
10: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क.
22: इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये, इश्क इश्क है.

0: estate planning, protect what you have built, and give your family clarity and control.
1: Call 669-243-5799. That's 669-243-5799. Or visit nriwealth.com for a free 15-minute consultation. NRI Wealth. Don't leave a mess. Leave a plan.
2: Ocho.
3: Hoko.
2: Ocho.
3: Hoko.
2: Ocho.
3: It's Hoko.
4: अरे बस भी करो यार.
3: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है.
4: नाम होको हो या होचो क्या फर्क पड़ता है.
5: एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा.
1: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको अब फ्रिस्को में. वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड कैटरिंग ऑप्शंस. टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज.
6: अरे यार, घर मिल गया.
7: घर तो देख रहा हूँ, लेकिन इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग.
1: इसलिए कॉल करो अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट. अजय इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर. वो सिर्फ घर नहीं दिखाते, हर प्रॉपर्टी का ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, प्रोज एंड कॉन्स समझाते हैं, बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करते हैं, बिल्डर इंसेंटिव दिलवाते हैं और क्लोजिंग पर कैशबैक भी.
7: सीरियसली, अच्छे सर्विस भी और कैशबैक भी.
1: बिल्कुल, विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई सो मेनी पीपल आर रेविंग अबाउट हिम.
8: ये तारा वो तारा हर तारा.
1: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सस के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स. कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सस बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
9: डैलस, तैयार हो जाइए एक शानदार जश्न के लिए.
10: पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास प्रेजेंट्स कायद मेला 2026, अ ट्रिब्यूट टू आवर हेरिटेज एंड अ सेलिब्रेशन फॉर ऑल. एंजॉय लाइव म्यूजिक, डिलीशियस फूड, शॉपिंग, कल्चरल एक्टिविटीज एंड फैमिली फन फॉर एवरी एज.
11: लाइव परफॉर्मेंस बाय रागा बॉयज,
10: सैटरडे ऑगस्ट 22nd फ्रॉम 3 PM टू 11:45 PM एट साउथ फोर्क रैंच इन पार्कर, टेक्सास. Doors open at 2 p.m. Entry or parking bilkul free. Kayad Mela 2026.
1: Media partner, Fun Asia Network,

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: आने वाले खाने में डोसा।
2: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? Your search ends here.
3: Fan Idli Vegetarian Restaurant, 100% pure vegetarian made with fresh authentic flavors. Crispy dosas, fluffy idlis, comforting South Indian thali और साथ में शहर की best filter coffee. Family dinners to catering services with Jain friendly options.
4: Visit San Idli Veg Restaurant at the Highway 121. और कस्टर जंक्शन.
5: जिंदगी एक रंगमंच है
6: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल. रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो. दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन. फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग एक्सपीरियंस अ स्मूथ, सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन. कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com.
7: तुझे देखा तो ये जाना सनम.
8: 90s का रोमांस, 90s की मेलोडीज और वो लेजेंडरी आवाज. DFW, get ready to relive the magic of Kumar Sanu live, unforgettable 90s. September 11th at the brand new Robinson Fine Arts Plano. Gaiye, jhoomiye aur fir se jee lijiye apne favorite 90s ke gaane. Limited seats, free parking aur meet and greet options available. For tickets, visit eventbrite.com ya fir call kare 214-869-2668 par. Presented by Focus Entertainment and Fortune Group.
9: If you are just joining us, please receive my very warm welcome to the show this morning. It's Thursday, the 20th of August, and already in the top 10 hottest Augusts. Extreme heat warning continues today. It is very dangerous heat, ladies and gentlemen. You'll need to be careful as we head towards another 105, 106 today. This is our 26th day of triple-digit temperatures and 35 days without a drop of rain, and I see these conditions for at least the next 7 days. Let's get started with this hour.

0: यार मॉडर्न मंगलसूत्र ढूंढते ढूंढते थक गई हूँ।
1: तो कैरेटलीन चलो, दे नाउ हैव अ स्टोर इन फ्रिस्को एंड द बेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगलसूत्रस।
0: सीरियसली, कैसा कलेक्शन है?
1: मिनिमल, डायमंड, एलिगेंट, एवरीडे स्टाइल्स। यू विल प्रोबेबली स्पेंड मोर टाइम चूजिंग देन शॉपिंग।
2: फाइंड द मंगलसूत्र दैट मैचेस योर स्टाइल एट कैरेटलीन, होम टू द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगलसूत्रस। कैरेटलीन, नाउ ओपन इन फ्रिस्को नेक्स्ट टू तनिष्क।
3: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी एंड ए लाइफटाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड। अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फाइनेंशियल रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस।
2: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर। मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, प्लीज प्ले रिस्पांसिबली।
4: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग। फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस। फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव।
5: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को। विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 4693331099.
6: Mention Funasia and get 50% off on tryout session.
7: अरे यार, घर मिल गया।
8: घर तो देख रहा हूँ, लेकिन इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग।
9: इसलिए कॉल करो अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट। अजय इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर। वो सिर्फ घर नहीं दिखाते, हर प्रॉपर्टी का ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, प्रोज एंड कॉन्स समझाते हैं, बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करते हैं, बिल्डर इंसेंटिव दिलवाते हैं और क्लोजिंग पर कैशबैक भी।
8: सीरियसली, अच्छे सर्विस भी और कैशबैक भी?
9: बिल्कुल। विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई सो मेनी पीपल आर रेविंग अबाउट हिम।
10: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
0: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
11: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
12: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
11: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
13: आप पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
11: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स। और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंकवेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा, ईस्ट प्लेनो। विजिट signaturecuisine.net। सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
14: अजी सुनते हो?
15: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
16: The OG of tax planning, AG Fintax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Funasia Radio.
17: If you or your family member is involved in a truck accident, here's what you must do. First, ensure everyone's safety. Next, gather as much information as possible. Make sure you take great photos, talk to any witnesses that may have seen the accident, and ensure that you document all of the information for the truck driver and company. Truck accidents often lead to serious injuries, so don't deal with it alone. Call Attorney Omar at 833-GET-OMAR or visit us online at attorneyomar.com. When it comes to representing your case, our goal is simple. We want you to receive the maximum amount of money you deserve.

0: I do have the world news coming up for you right after you finish listening to this track.
1: दूध उबालोगे दूध उबालोगे तो झाग लगेगी और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी आग लगेगी आग लगेगी

0: भूख लगी
1: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
2: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 Eatery. ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग.
1: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट. यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी.
3: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
4: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
3: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
4: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
3: सच में सब संभालेंगे?
4: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
1: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर.
5: ऑन और अबाउट दिस डेट, the 20th of August today, in the year 1619, enslaved people were first brought to the English colony of Jamestown, Virginia. Angolans kidnapped by the Portuguese arrive in this British colony of Virginia and are then bought by English colonists. But this date, chosen by many to mark the arrival of the enslaved Africans into the New World, beginning 2.5 centuries of slavery in North America on today's date. Benjamin Harrison was born on today's date in 1833 in North Bend, Ohio, was the 23rd President of the United States, a moderate Republican who won an electoral majority while losing the popular vote by more than 100,000 to Democrat Grover Cleveland. Narayana Guru was born on today's date in 1854 near present-day Thiruvananthapuram in Kerala. An Indian social reformer, a poet and a Hindu sage who led a movement against the Hindu caste system and believed that all people are equal and thus belong to just one caste, the caste of humankind. He expressed this idea in his famous saying, "One caste, one religion, one God for humanity," and sought to end the oppression of people in lower castes, emphasizing education and spiritual growth as a means of uplifting them, and founded many schools and temples that were open to people of all castes. Narayana Guru. And the first National Labour Union forms on today's date in 1866.

0: Beautiful track there from the movie called Bad News. Let's talk a moment here about Tandoori Flame. That's a restaurant that's located in Garland. It's the new flavor destination for all you spice lovers, serving up sizzling tandoori platters, rich curries, and all your North Indian favorites with that home-style punch. From smoky tandoori kebabs to velvety curries and fresh hot naan, every plate feels like a celebration. Step in today and let Tandoori Flame serve you the kind of meal that turns an ordinary day into a feast. All you have to do is step into Tandoori Flame restaurant located in Garland. I will have the world news coming up at the half hour portion of our program, and then we do have a giveaway for you also. Plenty of information as well as all the music you want to listen to lined up. And yes, I have your requests lined up also. Number in the studios for you all to reach me, 972-235-5555. I'm taking requests, dedications, comments, feedback, suggestions, anything you'd like to talk about this lovely Thursday morning.
1: Shravan hame jodta hai Bhagwan se. Raksha Bandhan hame jodta hai apno se. Aur kuch rishte एक डोर से शुरू होते हैं और एक अनमोल निशानी के साथ हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। हर रिश्ता अपनी एक कहानी लिखता है और पीएमजे ज्वेल्स उस कहानी को देता है सोने की चमक, हीरों की रोशनी और क्राफ्टमैनशिप जो पीढ़ियों तक साथ रहे।
2: पीएमजे ज्वेल्स नाउ ओपन ऑन 13215 मेन स्ट्रीट फ्रिस्को।
3: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चॉपटाउ कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चॉपटाउ कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 ईयर्स ओल्ड टू गेम।
4: एक और लड्डू ले लो।
5: थोड़ी और बिरयानी?
4: अरे अमेरिका जाके थोड़ी मिलेगा।
6: अब सिर्फ सूटकेसेस ही नहीं, वेट, कोलेस्ट्रॉल और शुगर भी एक्स्ट्रा बैगेज बनके साथ आ गए।
7: इंडिया ट्रिप के बाद या कभी भी अपनी हेल्थ को गेस वर्क पर मत छोड़िए। स्केड्यूल योर एनुअल हेल्थ चेकअप एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अलोंग विद ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल एंड वेट चेक्स, दे आल्सो ऑफर डिप्रेशन एंड एंग्जायटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ असेसमेंट, फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग एंड मेनी अदर प्रिवेंटिव हेल्थ स्क्रीनिंग्स। कॉल और टेक्स्ट 214-666-6259। पैशन Health Primary Care।
8: अरे तीन पे क्यों अटक गया?
9: क्योंकि Sal's Hot Chicken भी तीन पे पहुंच गया।
2: Plano Richardson and now at a brand new location, Sal's Hot Chicken, coming soon.
10: Floors clean,
11: check.
10: Windows clean,
11: check.
10: Kitchen clean,
11: check.
10: Air ducts clean.
11: Wait, air ducts भी clean करना होता है?
12: बिल्कुल, जो दिखता है वो तो हम clean कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं दिखता उसका क्या? That's where Duct Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology, no roto brush, plus dryer vent or chimney cleaning. घर हो, restaurants, hotels, offices या फिर any business, Duck Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
13: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
2: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
14: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, ये बॉक्सेस उठा ले रे।
15: अरे बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं, स्मार्ट लोग SFL वर्ल्डवाइड को बुलाते हैं।
14: अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो?
15: डॉक्यूमेंट्स, बॉक्सेस, पूरा घर रिलोकेशन, इवन कार ट्रांसपोर्ट
14: इंडिया तक।
15: सिर्फ इंडिया नहीं, विद इन USA और वर्ल्ड वाइड कम्प्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज।
2: SFL वर्ल्डवाइड, घर हो, गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव, सब सेफली पहुँचता है। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
0: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit
5: mytimeequity.com or call 972-330-2771.
16: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal. Sadia.
17: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
18: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
19: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
20: तुमसे मिलके दिल का है।
18: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
19: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
21: मैं कभी किसी से प्यार नहीं किया।

0: During October and November of this year. Syrian Foreign Minister Asad Hassan al-Shabani and Deputy Prime Minister and Foreign Minister of Pakistan Ishaq Dar today discussed avenues to expand bilateral cooperation and held in-depth discussions on regional developments. The Syrian minister arrived in Islamabad early this morning, and Deputy Prime Minister and Foreign Minister Ishaq Dar have also said reported that six Pakistani sailors who were injured in an attack by Yemen's Houthi rebels in the Red Sea earlier this month have returned to Pakistan. The PTA, the Pakistan Telecommunication Authority, and Google signed a memorandum of understanding to strengthen children's online safety. Security forces have killed five terrorists during an intelligence-based operation in the Killi Suran area of Panjgur under Operation Radul Fitna 3. And the Supreme Court in Islamabad today returned a review petition filed by the federal government against its 18th August order for shifting incarcerated PTI founder Imran Khan to the Shifa International Hospital.
1: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर. तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर. चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट. Luxury, brilliance, celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
2: Hocho.
3: Hoko.
2: Hocho.
3: Hoko.
2: Hocho.
3: It's Hoko.
4: Arey, bas bhi karo yaar.
3: Arey, naya restaurant hai, but naam samajh hi nahi aa raha hai.
4: Naam Hoko ho ya Hocho, kya farak padta hai? Ek baar wahan ke legendary chana puri, iconic sandwiches, delicious curries, chaats aur famous cold cocoa taste karoge na, phir naam nahi, sirf taste yaad rahega.
5: India ke sabse loved food brands mein se ek, Hoko, ab Frisco mein. Wahi iconic flavors, wahi unforgettable taste and varied catering options. Taste India, relive memories.
6: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
7: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
8: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
9: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
8: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
10: जीनी हुकम मेरे आका, हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
11: मिराज लाउंज चलिए मेरे आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं।
12: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
11: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
12: और एंटरटेनमेंट,
11: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में।
12: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
11: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
13: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
14: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
15: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
16: सुनो, कल बहुत काम है। पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली। कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
14: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
16: कहाँ?
17: फूडिस्तान इन ऑबरी। फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, केटरिंग सर्विसेज, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी, एंड इनसाइड फूडिस्तान। एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइव, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
18: फूडिस्तान इन ऑबरी, मेंशन फन एशिया एंड एंजॉय 10% डिस्काउंट।
19: तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
0: लिया।
19: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
0: नहीं आया।
19: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनाडा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर। No confusion, no unnecessary extra.

0: extras, call Humara Jamani at Sonata Inc. 972-863-7772. That's 972-863-7772.
1: Visit www.sanadainc.com today. 90s ke gaane sirf hits nahi, hamari yaadein hain. Aur ab wo legendary aawaz aa rahi hai live to Plano. वो आवाज जिसने 90s को अनफॉरगेटेबल बना दिया. कुमार सानू लाइव इन कॉन्सर्ट, अनफॉरगेटेबल 90s. सितंबर 11th एट द ब्रांड न्यू रॉबिन्सन फाइन आर्ट्स प्लेनो. लिमिटेड सीट्स, फ्री पार्किंग एंड मीट एंड ग्रीट ऑप्शंस अवेलेबल. टिकट्स एट eventbrite.com. मोर इन्फो 214-869-2668. प्रेजेंटेड बाय फोकस एंटरटेनमेंट एंड फॉर्च्यून ग्रुप.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: Immigration is a serious concern for our community, and when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, perm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
2: मेरे कल वाले खाने में डोसा, आने वाले खाने में डोसा।
3: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? Your search ends here.
4: San Idli Vegetarian Restaurant, 100% pure vegetarian made with fresh authentic flavors. Crispy dosas, fluffy idlis, comforting South Indian thali aur saath mein shahar ki best filter coffee. Family dinners to catering services with Jain friendly options.
5: Visit San Idli Veg Restaurant at the Highway 121 or Custer Junction.
6: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस. पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए. चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली. मस्ट बी 21 ईयर. As a roller to game.

0: Don't touch that dial. Keep listening.
1: Ha ha.

नहीं, गंदी बात नहीं होती है. हाँ, टुच्ची जरूर हो सकती है, टुच्ची बात, लेकिन मजेदार बात, अच्छी बात, मोटिवेशन वाली बात, या फिर रोजमर्रा की बात. दैट्स व्हाट वी ब्रिंग फॉर यू ऑन फन एजर रेडियो 104.9 FM. नेशनल रेडियो डे आपको मुबारक हो, लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट बिटवीन 11 to 12. आपकी कंपनी का की सख्त तलाश है और जरूरत है. 9722355555 नंबर इन द स्टूडियो. दिस इज गपशप गली. तो हेलो, नमस्कार, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इनटू माय शो एंड गिविंग अस कंपनी सिंस मॉर्निंग. शबनम जी के साथ जो साथ दिया आपने ना, मुझे पता है सब लोग कान लगा के सुनते हैं, क्योंकि वर्ल्ड न्यूज इज समथिंग आई रियली लुक फॉरवर्ड टू लिसन टू व्हेन शी शेयर्स इट ऑन हर शो. तो शुरू करें गपशप गली विथ मीठू.

से बम फटे, एटम बम हो जाए विस्फोट। आशिकों की है शामत

Listen, it has to be all upbeat and it can be soft and romantic as well. Whatever you want to listen to. Aaj World Radio Day pe kuch na bol to sakti nahi hu main. Aaj World Radio Day jo ki February 13th ko UNESCO manati hai aur US आज के दिन को मनाती है. हमने सोचा यार कि नेशनल रेडियो डे को भी सेलिब्रेट करें हम आप लोगों के साथ. सो 11 से 12 बजे यू हैव टू ट्यून इन एंड यू हैव टू गिव मी कंपनी टू शेयर योर रेडियो स्टोरीज विथ मी राइट हियर. एंड दिस इज गपशप गली विथ मी टू. हमारी गपशप ऐसी ही चलती रहती है रोज की गपशप में. चलिए एक और गाना ऐड करते हैं यहाँ पे. इट इज ऑल अबाउट म्यूजिक मस्ती एंड मैजिक राइट हियर ऑन फन एशिया रेडियो 104.9 FM.

0: tracks that put you on the right track.
1: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
2: कौन सा?
1: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
2: अरे सारे तो सेम है.
1: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो, ये वाला.
2: ओ हाँ, ये तो अलग है.
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
4: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? Omar Khwaja.
3: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम, तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
5: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
6: Dad, प्रॉपर्टी पेपर्स कहाँ हैं?
7: लैपटॉप में.
6: इन्वेस्टमेंट?
7: गूगल ड्राइव.
6: इंश्योरेंस? पासवर्ड्स?
7: बेटा डोंट वरी, मुझे सब पता है.
6: डैड, वही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको पता है.
3: Your family shouldn't have to search for answers when you're not there to give them.
8: Hi, this is Deepti Verma with NRI Wealth. With proper estate planning, protect what you have built and give your family clarity and control.
3: Call 669-243-5799. That's 669-243-5799. Or visit nriwealth.com for a free 15-minute consultation. NRI Wealth. Don't leave a mess. Leave a plan.
9: The biggest gift you can give your child is the gift of confidence. I, Sunhi Simon Santiago, and my co-founder, Audra Langston, have coached debate champions, valedictorians, and Ivy League grads. We've created an online 3rd through 6th grade course that isn't just a public speaking class. It's a guide for building lifelong leaders. For more information, visit NextGenSpeakersAcademy.com. That's NextGenSpeakersAcademy.com.
10: Beta, 95% die?
11: हाँ मम्मी.
10: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए.
12: मेरा?
10: हाँ. प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड.
12: वो
3: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज. विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी. सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
13: डैलस, तैयार हो जाइए एक शानदार जश्न के लिए.
14: पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास प्रेजेंट्स कायद मेला 2026, अ ट्रिब्यूट टू आवर हेरिटेज एंड अ सेलिब्रेशन फॉर ऑल. एंजॉय live music, delicious food, shopping, cultural activities and family fun for every age.
13: Live performance by Raga Boys.
14: Saturday, August 22nd from 3 p.m. to 11:45 p.m. at South Fork Ranch in Parker, Texas. Doors open at 2 p.m. Entry or parking bilkul free. Kayad Mela 2026.
13: Media partner, Fun Asia Network.
0: Tracks that put you on the right track.

लीजिए मुझसे नंबर और पता आप इस जगह का इफ यू वांट टू 214-666-6259. ये नंबर ऐसा है कि जो आपके लिए वो क्विक एंड इजी अपॉइंटमेंट्स लेकर आएगा. दिस इज पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. कि मैं अगर आज की जरूरत है तो आज ही आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा. ऐसा नहीं कि मतलब आज आपकी तबीयत खराब है, सात दिन के बाद डॉक्टर से मुलाकात हो पा रही है आपकी. लेकिन ये भी आप जान के रखें कि भाई ये वो जगह है कि जहाँ पे आपको बहुत सारा टाइम मिलता है विद द डॉक्टर. ऐसा नहीं है कि आप इन एंड आउट वाली बात नहीं होती है, विच आई हैव दिस मेजर कंप्लेंट विद. मुझे बहुत परेशानी है उन डॉक्टर्स के साथ जो वो मतलब पेशेंट को सही तरीके से नहीं देखते हैं. मुझे तसल्ली नहीं मिलती जब तक डॉक्टर मेरी पूरी बात ना सुन लें. अगर वो ही इज़ इन हरीड, यू नो, ही शोज मी दैट हरी इन हिज कॉन्वर्सेशन, तो मुझे ना फिर शेयर करने का कोई वही नहीं लगता कि मेरे को यहाँ आप ठीक है ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है या ये प्लीज़ बताइए वो, ये सारी चीज़ें मैं बात ही नहीं कर सकती ना इफ़ इतना हरिड एक अपॉइंटमेंट हो. तो पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर में आपको तसल्ली से देखा जाता है. दैट इज़ द प्रॉमिस दे ब्रिंग विद देम अलॉन्ग विद द फैक्ट दैट एनुअल फिजिकल हो या फिर एनजाइटी केयर, फाइब्रो स्कैन फॉर एल्कोहल रिलेटेड लिवर कंसर्न्स, वाइटामिन बी 12 डेफिशिएंसी टेस्टिंग एंड मच मोर दैट यू कैन गेट एट देयर्स. तो मैं चाहूँगी कि आप इनके वेबसाइट पर जाएँ एंड देन गिव दम अ कॉल एंड सी इफ दे आर राइट फॉर यू. 214-666-6259 दैट इज़ द नंबर to book your first appointment with them and figure out from there. All right, Passion Health Primary Care, आपका हेल्थ उनका पैशन है. ये अगर बात हमें कोई बता देना कि कोई सर्विस प्रोवाइडर उनका पैशन ही है कि हमारी मदद करें और पूरी तरह से करें, मैं तो वहीं जाऊंगी यार.

इट इज गपशप गली विथ मी टू. इस वक्त मैं आप लोगों के साथ मौसम का हालचाल शेयर करती हूँ. वेल, नथिंग हैज चेंज सिंस यस्टरडे. डेंजरस हीट रिमेन्स अक्रॉस नॉर्थ टेक्सस विथ एन एक्सट्रीम हीट वार्निंग दैट इज इन इफेक्ट फॉर ऑल ऑफ अस. हाँ, इस हमारे 103 से 108 के रेंज में होने वाले हैं, डिपेंडिंग ऑन विच प्लेस यू आर एट. और उसके अलावा रेड रिवर के पास कुछ लो चांसेस बनने वाले हैं, यू नो, लेट आफ्टरनून अर्ली इवनिंग आवर्स में फॉर अ बिट ऑफ थंडरस्टॉर्म दैट आई सी. यू नो, कल एक्चुअली दिख रहा है मुझे कि एक अपॉर्चुनिटी है फॉर अ शावर और थंडरस्टॉर्म क्लोजर टू द DFW मेट्रोप्लेक्स. लेकिन ये एक्टिविटी कुछ हिट या मिस वैरायटी की होने वाली है. वेल, ऑगस्ट इज गोइंग टू स्टे हॉट एंड इट विल कंटिन्यू इनटू नेक्स्ट वीक आल्सो एज वी कंटिन्यू विद दिस मंथ. आज की तारीख है 20 तारीख, लेडीज एंड जेंटलमैन, और बारिश के जो चांसेस कल थोड़े बहुत शायद हमको मिल जाए यार. लेकिन बारिश के साथ गर्मी, और बारिश का ये भी है कि बहुत ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है उसके बाद. सो यस, आई डोंट नो कितना रिलीफ मिलेगा इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर हमें, क्योंकि आज का टेम्परेचर 105 के आसपास एवरेज दैट वी आर गोइंग टू गेट. द हीट इंडेक्स विल टेक इट टू 108 और 109. लो विल बी अराउंड 82. कल हमारा जो ये 20% चांस है दैट इज नॉट गोइंग टू प्रीटी मच चेंज एनीथिंग. हमारा हाई वही 105 के आसपास होने वाला है, एंड that is for us to feel on Saturday also, ladies and gentlemen. Saturday or Sunday bhi kuch yahi temperatures rehne wale. Nothing is going to change. That is what I can tell you right here.

0: यार मॉडर्न मंगलसूत्र ढूंढते ढूंढते थक गई हूँ।
1: तो कैरेट लेन चलो, दे नाउ हैव अ स्टोर इन फ्रिस्को एंड द बेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगलसूत्रस।
0: सीरियसली, कैसा कलेक्शन है?
1: मिनिमल, डायमंड, एलिगेंट, एवरीडे स्टाइल्स। यू विल प्रोबेबली स्पेंड मोर टाइम चूजिंग देन शॉपिंग।
2: फाइंड द मंगलसूत्र दैट मैचेस योर स्टाइल एट कैरेट लेन, होम टू द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगलसूत्रस। कैरेट लेन, नाउ ओपन इन फ्रिस्को नेक्स्ट टू तनिष्क।
3: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338, 4697343338। myfamilyhomeloan.com इज powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
4: Hello, Weekend Lunch Emergency Helpline. How may I help you?
5: Hello, मेरे relatives आ रहे हैं. Everyone's asking lunch में क्या है?
4: Fikar not. We have the perfect solution.
2: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new Weekend Lunch Buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
6: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
7: Kuch bhi nahi. Oura Debt Relief will do it for us.
6: Kya matlab?
7: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
6: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
7: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
6: Ab to karna hi padega, madam.
8: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
9: पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
0: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स। और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो। विजिट signaturecuisine.net। सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
2: Are you trying to protect your business, retain top talent, and plan for future succession all at the same time? An executive retention strategy using life insurance may help address multiple business goals, including key person protection, employee retention incentives, and future buyout planning. To explore business life insurance strategies, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Business planning strategies should be reviewed with qualified legal and tax professionals. Not legal, tax or investment advice. Sathiya!
3: Kuch awaazein sirf entertain karti hain aur ek awaaz aapki zindagi ka soundtrack ban jati hai.
10: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
2: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
11: तुमसे मिलके दिल का है।
10: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
2: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
12: Tracks that put you on the right track.

And that is a song that was featured on Randeep Hooda, ladies and gentlemen. और आज इनका 50th birthday है, तो मैंने सोचा कि कुछ एक और फिल्म से एक और गाना सुनवाती हूँ, क्योंकि क्या है ना कि देर आर एक्टर्स हु प्ले कैरेक्टर्स एंड देन देर आर एक्टर्स हु सरेंडर कम्प्लीटली टू द रोल और द कैरेक्टर दैट दे आर प्लेइंग. वो हैं रणदीप हुडा. कितने तो ट्रांसफॉर्मेशंस उन्होंने किए हैं अपने फिजिकल, जो एक एक्सट्रीम ट्रांसफॉर्मेशन जो ऐश्वर्या राय के साथ जो मूवी थी, आई एम वाई आई एम फॉरगेटिंग द नेम, बट आई थिंक यू ऑल विल रिमेंबर दैट. और वो उसके अलावा नए स्किल्स और नए मैनरिज्म्स, नए एक्सेंट, बॉडी लैंग्वेज, साइकोलॉजी ऑफ रियल लाइफ पर्सनालिटीज, ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने कैरेक्टर्स के जरिए उतारे हैं और क्या खूब उतारा है. एंड इट इज़ हिज 50th एंड इट सीम जस्ट राइट टू प्ले अनदर सॉन्ग स्टारिंग दिस amazing actor Randeep Hooda. Wishing him a very happy birthday and to everybody else celebrating their birthdays today. This is Gapshup Gali with Neetu.

रणदीप हुडा's बर्थडे टुडे इज 20th of August 2026 पूरे 50 साल के हुए हैं जनाब एंड ऐसे ही हमें अच्छी अच्छी फिल्में देते रहें दैट इज व्हाट वी विश फॉर हिम एंड गुड हेल्थ ऑफ कोर्स एंड टू एवरीबॉडी एल्स आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं फॉर योर बर्थडे लेडीज एंड जेंटलमैन और उसके अलावा जी हाँ अगर परेशान हो टू मच छोड़ो जिंदगी की मच मच विथ रेडियोस मिडास टच क्योंकि इट इज नेशनल रेडियो डे हम ये मनाएंगे और पूरे धूमधाम से मनाएंगे एक घंटा मनाएंगे आफ्टर द ब्रेक 11 से 12 के बीच जिंदगी अनप्लग्ड में वी विल सेलिब्रेट नेशनल रेडियो डे टुडे सो आई वांट योर पार्टिसिपेशन बिल्कुल एकदम खुलकर हाँ जिन्होंने कॉल नहीं किया उनको भी मैं बहुत प्यार से इनविटेशन देना चाहती हूँ गिव मी अ कॉल टुडे एंड टेल अस अबाउट योर रेडियो एक्सपीरियंस हियर इन द यूएस बैक इन योर कंट्री छोटे बचपन की आपकी जो यादें हैं विद योर रेडियो लिसनिंग एंड ऑल ऑफ दैट वील टॉक अबाउट इन द नेक्स्ट आवर तो ज़रूर मेरे साथ बने रहें और फिलहाल तो इसीलिए भी क्योंकि ये जो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अबाउट अटर्नी उमर ख्वाजा ये आप सभी के फ़ोन पे ना सेव होने चाहिए और आपके फ्रेंड्स तक ये बात पहुँच जानी चाहिए कि अगर कोई एक्सीडेंट का केस हो या फिर स्लिप एंड फॉल का केस हो जहां पर आपको लगता है कि यू डिजर्व अ कॉम्पनसेशन वेल यू कैन गेट योर कॉम्पनसेशन विदाउट एनी हैसल्स दैट वन हैज टू फेस टू गो थ्रू द इंश्योरेंस कंपनीज एंड ऑल वो सब माइनस आपको आपका कॉम्पनसेशन मिल जाएगा बिकॉज अटर्नी उमर ख्वाजा एंड हिज टीम प्रॉमिस दैट यू डोंट हैव टू पे अंटिल यू विन द केस सो दैट इज द बिग प्रॉमिस दैट दे कम विद अटर्नी Omar.com is the website 469-300-5046 is the number to call और उन्हीं के तरफ से अटर्नी उमर ख्वाजा की तरफ से ये ट्रैफिक अपडेट आप लोगों के लिए टू मेजर कोलिशंस दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वन इज ऑन लूप 12 एट ट्रिनिटी रिवर एल्म फोक नॉर्थ बाउंड यहाँ पे एक मेजर कोलिशन हुआ है जहाँ पे राइट शोल्डर और राइट मोस्ट लेन पूरी तरह से बंद है तो अगर आप एक कुछ डिटोर ले सकते हैं ज़रूर लें देर इज़ अनदर मेजर कोलिशन दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑन I-30 एट हैम्पटन रोड ईस्ट बाउंड जहाँ पे राइट शोल्डर पूरी तरह से बंद है सो दीज आर द टू यू नो प्लेसेज दैट यू हैव टू बी मोर माइंडफुल अबाउट टेकिंग इफ़ यू कैन टेक अ डिटोर वेल एंड गुड अदरवाइज अगर आपके हाथ में टाइम है तो यहाँ पे ट्रैफिक थोड़ा सा जैम मिल सकता है आपको एक डिसेबल्ड व्हीकल जो मुझे दिख रहा है इट इज़ ऑन I-30 एट टैरेंट एंड डैलस काउंटी लाइन ईस्ट बाउंड तो यहाँ पे कुछ माइनर कंस्ट्रक्शन चल रहा है और इसलिए राइट शोल्डर बंद है नथिंग मेजर दैट हैज बीन रिपोर्टेड फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ डैलस एज फार एज ट्रैफिक इज कंसर्न जस्ट एन अपडेट फॉर ऑल ऑफ यू राइट हियर लेट्स गेट यू दिस नेक्स्ट ट्रैक लेडीज एंड जेंटलमैन विच इज फ्रॉम दिस फिल्म कॉल लफंगे परिंदे एंड आईड लाइक टू प्ले इट फॉर यू क्योंकि अगर ये फिल्म दीपिका पादुकोण और नील नितिन मुकेश की अगर मुझे लगता है कि कॉकटेल के बाद रिलीज होती दीपिका पादुकोण की 2012 की मतलब सुपर डुपर हिट फिल्म के बाद अगर रिलीज होती तो शायद ये फिल्म ज्यादा चलती पगले दोने। It is a film that released on this day in the year 2010.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: श्रावण हमें जोड़ता है भगवान से, रक्षाबंधन हमें जोड़ता है अपनों से, और कुछ रिश्ते एक डोर से शुरू होते हैं और एक अनमोल निशानी के साथ हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। हर रिश्ता अपनी एक कहानी लिखता है और पीएमजे ज्वेल्स उस कहानी को देता है सोने की चमक, हीरों की रोशनी और क्राफ्टमैनशिप जो पीढ़ियों तक साथ रहे।
0: बीएमजे ज्वेल्स नाउ ओपन ऑन 13215 मेन स्ट्रीट फ्रिस्को।
4: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
5: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
4: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
5: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
4: सच में सब संभालेंगे?
5: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
0: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
5: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
6: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
7: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
0: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
8: इतना सब और प्राइस?
0: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
9: मैं हीरो।
10: सुनो सुनो सुनो सारे मैकनी वाले, सुनो, हाईवे 380 पर खुल गया है पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अब एनुअल फिजिकल के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, सेम डे अपॉइंटमेंट के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं, और पूरे परिवार के भरोसेमंद डॉक्टर्स की तलाश भी खत्म। सुनो सुनो सुनो, स्वास्थ्य का नया ठिकाना पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, अब मैकन्नी में हाईवे 380 पर।
11: एनुअल फिजिकल्स, प्रिवेंटिव केयर, सेम डे अपॉइंटमेंट्स, क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट और केयरिंग फिजिशियंस, सब एक ही जगह। कॉल टुडे और टेक्स्ट 214-666-6259।
12: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
13: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
14: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
15: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
14: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
16: ड्यूड, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
17: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
16: कैसे?
17: पेज 3 ईटरी?
16: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
17: ड्यूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्ट एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
16: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
0: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट।
3: इस रक्षाबंधन चौकटॉक कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी एंड ए लाइफ टाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटॉक कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड। अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फाइनेंशियल रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस।
9: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरांड, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर। मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली।

0: ऐसा है कि ना कोई स्क्रीन का ड्रामा ना माइंडलेस स्क्रोलिंग का काम डैलस की ट्रैफिक में भी कर लेते हैं हम अपनी महफिल का इंतजाम. क्या कहना है यार, गानों की धुन, इन्फॉर्मेशन और हमारी इन बातों का सिलसिला. 104.9 FM जो है हमारा फर्नीचर रेडियो, और ये है एक ऐसी जगह जहाँ पे म्यूजिक और फन का बजता है, ये बनता है काफिला. तो जी हाँ, कुछ AI से मदद ली थी मैंने ये कुछ बनाने में, और इसीलिए इतने फंबल्स, और इन फंबल्स को आप माफ़ कर देते हो. हमारी बहुत बढ़िया से बढ़िया जोक या घटिया से घटिया जोक को आप यू टेक इट इन स्ट्राइड, एंड दैट इज़ व्हाट वी लव अबाउट यू ऑल. आज नेशनल रेडियो डे पे खुल्लम खुल्ला कहना चाहती हूँ, यार वी लव यू. और गले में ऐसे कभी खराश हो तो बीच में हम थोड़ा छोटा सा ब्रेक भी ले लेते हैं, लेकिन एज आई सेड, इट इज़ ऑल डूएबल विथ ऑल ऑफ यू, क्योंकि आप लोगों ने भी हमें इतना प्यार दिया है. तो इस प्यार के बदले हमने सोचा कि भाई आज का दिन पूरा इसी पे हम न्योछावर करने वाले हैं, नेशनल रेडियो डे सेलिब्रेट करने वाले हैं आप लोगों के साथ. येस, आई एम अवेयर ऑफ द फैक्ट कि February 13 वर्ल्ड रेडियो डे है, जो यूनेस्को ने निकाला, लेकिन US ने निकाला ये नेशनल रेडियो डे. तो हमने सोचा यार, दो दिन मौका मिल रहा है सेलिब्रेट करने का रेडियो डे, तो व्हाई नॉट. सो आज इस सेगमेंट में और अगले सेगमेंट में कुछ रेडियो से ही हम के बारे में ही बात करने वाली हूँ, क्योंकि आज हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं उस सिलसिले को और उस यू नो सॉर्ट ऑफ उस कनेक्शन को जो हम और आप हर रोज शेयर करते हैं, फ्रॉम दिस साइड ऑफ द माइक टू दैट साइड ऑफ द माइक. हैप्पी नेशनल रेडियो डे टू ऑल ऑफ यू. पुरानी स्टाइल में बोला जाए तो ये रहा.
1: और अब फुर्सतगंज से बंटी बबली पप्पू और उनके अब्बू शाद अली सुनना चाहेंगे अदनान सामी की आवाज में स्वीटा फिल्म का एक गाना, जिसका संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने और बोल है गुलजार के.

0: डन कर।
1: ओके।
2: तुझसे नहीं कोई मीठा।
3: स्वीटा के बाद सेनोरिटा आप लोगों के लिए ऑल द पॉपुलर सॉन्ग्स आई एम गोइंग टू प्ले इन दिस सेगमेंट एंड द नेक्स्ट विच इज एंटायरली डेडिकेटेड टू नेशनल रेडियो डे. आपको भी मुबारक और हमें भी हियर एट फनेशिया रेडियो. यू नो बिफोर वी हैड दोज हंड्रेड्स ऑफ स्ट्रीमिंग एप्स, एंडलेस स्क्रॉलिंग एंड स्क्रीन इन एवरी सिंगल रूम, ये आजकल घर घर की बात हो गई है. लेकिन इन सबसे पहले रेडियो हुआ करता था द अल्टीमेट थिएटर ऑफ द माइंड. मानते हैं कि नहीं, इट इज दैट कंप्लीटली यूनिक बिकॉज आप सोचें कि ये आपके इमेजिनेशन को मजबूर करता है कि मतलब हाइपर एक्टिव वे में काम करे. जब आपको अलग अलग वक्त की अलग अलग मेमोरीज अलग अलग गलीज में ले जाते हैं हम गानों के जरिए और कई बार बातों के जरिए, इट इज एब्सोल्यूटली ब्यूटिफुल. यू पेंट द पिक्चर इन योर माइंड, डोंट यू? रेडियो इज incredibly personal and nobody can take away from that. जब मैं ये बात कर रही हूँ, मैं ये आपसे, जी हाँ, आपसे बात कर रही हूँ, one on one, and that is the experience of radio that radio brings, and that I'm very very proud to be part of. This is Gupshup Gali with me too.
4: Ya está, he removido cielo y tierra y no te encontré, y llegas hoy tan de repente y da sentido a toda mi vida con tu querer.
5: Name samjha, name jana, jo bhi tumne mujhse kaha hai señorita, magar phir bhi na jaane kyun

आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप अपने फैमिलीज के साथ आगे वो देखना चाहते हैं कि आपका लॉन्ग टर्म वेल्थ या रिटायरमेंट या आपके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो बिल्कुल सही जगह पे हों और सही तरीके से हों, तो जी हाँ, कनेक्ट विथ माई टाइम एक्विटी लेड बाई CPA सुधीर पाए. वो ये सारा कुछ अचीव कर सकते हैं आपके लिए, चाहे वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हो, रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटीज हो या ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स. इनके साथ बात करके यू कैन मेक दोज फ्यूचर प्लानिंग्स फॉर योर सेल्फ. एंड लेट मी टेल यू, दीज ऑल विल बी एब्सोल्यूटली पर्सनलाइज सोल्यूशन डिजाइंड अराउंड योर गोल्स. तो इसीलिए जाएं इनके पास और जाने से पहले बात कर लें यार, अपॉइंटमेंट ले ले. 4697021272 is that number and mytimeequity.com is the website, ladies and gentlemen. अच्छा, अगला गाना जो लगाने वाली हूँ ना, it is also to do with radio. It is National Radio Day. आपको भी मुबारक और हम सबको भी at Fun Asia here. And we are a family, literally, क्योंकि इतने सालों का साथ रहा है कि हम आपको ना पहचान गए हैं, हम आपको समझने लगे हैं और हमारी म्यूज़िक जो होता है वो आपके टेस्ट के इर्द गिर्द हमारे चलता है. जी हाँ, और इसीलिए हमारी बातें भी उसी से बुनी होती हैं. आप लोगों को इतने सालों से जानते हैं ना, इसीलिए हम जानते हैं कि क्या आपको पसंद है, क्या आपको नापसंद है. एंड थिंक अबाउट इट, रेडियो हमारे लिए क्या रहा है. इट वॉज आर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू म्यूजिक डिस्कवरी, आर फर्स्ट टेस्ट ऑफ ग्लोबल न्यूज़, आर फर्स्ट कनेक्शन टू ए वर्ल्ड बियॉन्ड आर नेबरहुड, है कि नहीं. और आज का वक्त ऐसा जब सब कुछ हाईली विजुअल और एल्गोरिथम ड्रिवन है, ऐसे में रेडियो रिमेन्स दैट रॉ ऑथेंटिक ह्यूमन वॉइस सिटिंग राइट देयर इन द पैसेंजर सीट नेक्स्ट टू यू और इन योर होम, गिविंग यू दैट मच नीडेड कंपनी, है कि नहीं.

एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, ये गाना मैंने इसीलिए खास प्ले किया क्योंकि इसमें अमिताभ बच्चन का जो कैरेक्टर था ना, ही वॉज अ सिंगर, और इस गाने के साथ अभिमान फिल्म की शुरुआत होती है. और ये सीन ऐसे दिखाया गया है कि स्टेज पे अमिताभ बच्चन गा रहे हैं और वही ब्रॉडकास्ट हो रहा है रेडियो पे, एंड पीपल आर लिसनिंग हिम ऑन रेडियो एंड एंजॉयिंग हिज सिंगिंग. सो इसीलिए ये गाना प्ले हुआ. और क्यों प्ले हुआ, जो अभी अभी ट्यून इन कर रहे हैं, बताएं आपको कि बधाई हो, इट इज नेशनल रेडियो डे एंड थैंक यू for tuning into Phanisha Radio 104.9 FM. Subramaniam sahab, thank you for your call, and Raj, thank you for your call, and really appreciate connecting with me on National Radio Day. Sochi us waqt ke bare mein, jab hum chote the na, jab India Pakistan mein the, aur ghar ke kisi kone mein ek bada sa wooden radio ya chota sa ek transistor rakha hota tha, right? वो एक मतलब एक वुडन सा बॉक्स होता था, इफ़ यू ऑल रिमेंबर. हाँ, तो वो जो होता था ना, वो पूरे घर का सेंटर होता था, है कि नहीं? वो सुबह के यू नो कितने तो मैंने सुने भी हुए हैं अपने पापा मम्मी से, अपने दादा दादी नाना नानी से, आप लोगों ने भी सुने होंगे. ये जो आकाशवाणी होता था, यू नो दैट यूज़ टू बी वन ऑफ द थिंग्स जिससे दिन की शुरुआत होती थी. एंड इसके कितने सारे किस्से कहानी आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे. बहुत एक इंटरेस्टिंग मुझे स्टोरी पता चली थी, आई मे बी शेयर इट विथ यू सम अदर डे. लेकिन हाँ, वेंसडे की रात को अमीन सियानी साहब की वो जो जादुई आवाज़ होती थी, बहनों और भाइयों के साथ जो शुरुआत होती थी, वो पूरी फैमिली को एक जगह इकट्ठा करके मजे लेने का एक एक एक बहुत ही बड़ा सा एक एक क्या कहना चाहिए, एक ये एक हमारा एक एक साथ होने का एक बहुत अच्छा बहाना होता था. और जब पावर कट होता था ना, तब वही जो रेडियो है वो उसमें बैटरी लगाकर भी आप सुन सकते थे. यू नो दोज वर द टाइम्स जब हम क्रिकेट मैचेस के दौरान वी कुडंट हैव मिस्ड एनीथिंग. तो बैटरी ट्रांजिस्टर्स का तब बहुत इस्तेमाल हुआ है ना. हम स्कोर के लिए भी और स्क्रीन नहीं देखते थे हम. ये सारी चीज़ें आप सोचो कि क्रिकेट मैच देख रहे हैं, बस सुन रहे हैं, वो कमेंट्री सुन रहे हैं रेडियो पे. वो सारी जो एक्सपीरियंसेस थी ना, वो अपने आप में कमाल थी या वो रेडियो की गर्माहट, वो स्टैटिक आवाज़, वो प्योर मैजिक था. सीरियसली आई विल टेल यू, you are listening to Phanisha Radio 104.9 FM. Let's get somebody who wants to definitely talk about this National Radio Day. To chaliye sunte hain, bataiye, you are live on air. Is it that static sound? Somebody just played it. How amazing. Well, thank you so much for that. Ye to bilkul ye jise kehte hain impromptu hua. Thank you ji.

0: Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
1: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? Omar Khwaja.
2: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
3: अरे तीन पे क्यों अटक गया?
4: क्योंकि साल्स हॉट चिकन भी तीन पे पहुंच गया.
5: प्लेनो रिचर्डसन एंड नाउ एट अ ब्रांड न्यू लोकेशन. साल्स हॉट चिकन कमिंग सून.
6: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
7: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविन.
8: यार बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से स्ट्रेस.
9: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
8: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
9: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
8: ये क्या होता?
9: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
10: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
7: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन available.
11: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया.
12: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
11: नहीं.
12: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
11: नहीं.
12: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
11: वो भी नहीं.
12: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त.
7: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए. बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग हो. फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
13: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
14: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balvihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
15: Tracks that put you on the right track.

are tuned into Gupshup Gali with me to National Radio Day pe dil khol ke gupshup kijiye, and it is about your radio experience back in your country and after you came here. Ye do alag alag jo hamare phases rahe hain life mein na, in sab mein common ek baat wo rahi hai ki bhai radio ne saath kabhi nahi choda hamara aur humne radio ka saath kabhi nahi choda. To agle padav pe jaye, agle phase pe jaye, yani ki jab hum US aaye aur uske baad हमने रेडियो सुनना शुरू किया यहाँ पर, वो भी देसी रेडियो का जो मजा आया ना, वो उस टॉपिक तक जाए उसके पहले यार, इफ यू हैव एनी स्टोरी अबाउट योर यू नो रेडियो एक्सपीरियंस बैक इन योर कंट्री, तो जरूर कॉल कीजिए यार, या वो आपके चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, या मौसा मौसी के साथ, भाई बहनों के साथ अगर आप अपने कुछ शेयर करना चाहते हो तो जरूर कीजिएगा. आई स्टिल रिमेंबर कि हमारे रात को एक ना, मुझे अब उसका नाम नहीं याद, इफ एनीबडी कैन टेल मी, इट वॉज इन द 90s आई बिलीव और द लेट 80s आई एम थिंकिंग, कि शो एक सुना करते थे जहाँ पे ना कहानियाँ आती थी, रात को कुछ स्टोरीज नरेट की जाती थी रेडियो पे, और बहुत कमाल के तरीके से की जाती थी. तो देर वॉज अ टाइम वेन मी, माई सिस्टर, माई पेरेंट्स वुड रियली डू एवरीथिंग, वो दिन का सारा कुछ काम खत्म करके उसके बाद हमने अक्सर वो सुना है. इट वॉज नॉट एन एवरी डे थिंग, आई एम नॉट श्योर इफ इट केम एवरी डे, एक्चुअली हो सकता है हफ्ते में एक बार ही आता हो या महीने में एक बार, आई एम नॉट श्योर एक्चुअली, मुझे वो याद नहीं रहा है. लेकिन मुझे ये याद है कि हम सुनते थे, कुछ कहानियाँ आती थी और वो सुनते थे, बड़ा मज़ा आता था. एंड देन ऑफकोर्स द सुपर हिट सॉन्ग्स दैट वी गॉट अ टेस्ट ऑफ फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन रेडियो ओनली, एंड देन लेटर वेन वी वॉच द फिल्म एंड ऑल ऑफ दैट हैपन्ड, राइट? सो देर आर सो मैनी मेमरीज फॉर आर रेडियो. 972-235-5555 नंबर इन द स्टूडियो. अब मेमरीज की बात की जा रही है तो क्यों ना मैं आपको रक्षाबंधन का बताऊं कि भाई अगर आप अपने भाई बहनों के साथ कुछ अच्छा एक किस्सा शेयर करना चाहते हो, एक मिनट के अंदर अंदर एक वॉइस नोट आप बनाएं, और उस नोट, वॉइस नोट को आप व्हाट्सएप कीजिए 2148377147, एंड यू कैन विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, entertainment, resort stays, and the grand prize, which is sibling reunion weekend at Choctaw Casino and Resort in Durand. And we want to encourage you to send your 1 minute voice note as soon as possible, क्योंकि 28 तारीख की रक्षाबंधन जो है बस आ ही गया है, तो ये कुछ दिन और जो चलने वाला है उसमें ये contest का आप हिस्सा बन सकते हैं. एंड येस, डू रिमेंबर कि आपको अगर इसके बारे में कुछ डिटेल्स चाहिए हो तो सोशल मीडिया पेजेस पे हमारे मिल जाएगा, फाइनेंशियल रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस पर ऑफकोर्स, और यू मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट, दैट इज गिवन, एंड ऑल्सो दैट यू मस्ट नो कि भाई रिस्पॉन्सिबली खेलना है. ये बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि हम वो कैसीनो जब जाते हैं ना, कभी कभी जोश के साथ होश हो जाते हैं, इसीलिए ये कहना ज़रूरी है. ऑल्दो आई हैव फुल कॉन्फिडेंस इन माई लिसनर्स कि ये हमेशा ध्यान रहेगा उनको.

यही मजे और मस्ती हम लेते आएंगे आपके लिए नेशनल रेडियो डे टुडे इट इज. हम अपनी बातचीत कंटिन्यूड रखेंगे. पाकिस्तान सोसाइटी नॉर्थ टेक्सस जो लेकर आ रही है खास कैद मेला जो सेलिब्रेशन 2026 जश्न का आज़ादी का जश्न जो होने वाला है इट इज ऑन 22nd of August इसी सैटरडे की बात है और 3 PM से लेकर 11:45 PM तक आप लोगों के लिए एट साउथ फोक रैंच इन पाकर. बट आई विल सजेस्ट कि 2 बजे के बाद सीधे पहुंच जाएं ताकि सब ताज़ा ताज़ा आपको मिले वो चाहे शॉपिंग हो क्योंकि शॉपिंग में देखिए जो जल्दी पहुंचा उसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट मिलेगा है ना. और अगर खाने की बात आए तो भाई लाइन में आप पहले खड़े होंगे इसीलिए 2 बजे के बाद इमीडिएटली आप पहुंच जाएं. 2 बजे हमारे गेट्स खुल जाएंगे उनके साउथ पार्क रैंच के एंड साउथ फोक रैंच के. दिस इज़ द excitement speaking, ladies and gentlemen. I am excited for our Pakistani community celebrating this one. And here's the best part. Entry aapke liye bilkul free hai aur parking bhi bilkul free hai. Aur saath mein yahan ye kehna zaruri hai ki live performances hone wali hai. Raga boys ki, ladies and gentlemen, 200 years of legacy that they are bringing for all of you on 22nd of August, this Saturday, ladies and gentlemen. Be part of it. Media partner Fun Asia Radio 104.9 FM. अब ये जो अगला गाना है ना इसके साथ कुछ किस्सा है जो प्ले करना ही पड़ेगा आप लोगों के लिए और बताना ही पड़ेगा यार क्या है कि दिल की धड़कन और फ्रीक्वेंसी जब मिलती है एक साथ तो शुरू होती है म्यूजिक और मस्ती की बात. तो वॉल्यूम थोड़ा सा

बढ़ा लीजिए और चेहरे पे लाइए एक अच्छी वाली स्माइल, क्योंकि आपने ट्यून इन किया है टू द एब्सोल्यूट बेस्ट रेडियो डायल. थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन टू फनीश रेडियो 104.9 FM. ये है गपशप गली विथ मी टू.

And that is a song which totally encompasses the radio and Murphy radio ka jo ek essence hai wo is gaane mein jo hame mila aur radio salon ka jo mila ye to bhai yahan pe mention karna hi hai. If you didn't pay attention main bata dun wo stanza jahan par hota na ki Murphy jo amma ji ki coke mein tha soya amma ne Murphy ka radio mangaya Murphy munna jaisa lalla amma ka tha sapna munna jab hole hole duniya में आया बाबा ने सिलोन वाला स्टेशन लगाया ये जो दो थे ना मर्फी वाला रेडियो यू नो व्हाट इज दैट मर्फी रेडियो जो कि इंडिया में आया था 1948 में एंड सुब्रमण्यम साहब थैंक यू फॉर पॉइंटिंग दैट आउट मैं बिल्कुल मेरे दिमाग से निकल गया था रेडियो सिलोन के बारे में याद है कि इस गाने में मेंशन था बट यस और ये एक मैसिव कल्चरल आइकॉन बन गया था ड्यूरिंग 50s फ्रॉम 50s टू 70s यू कैन से फॉर इट्स यू नो वुडन कैबिनेट्स और एक कैच फ्रेज था एड के लिए घर घर की रौनक एंड दैट आइकॉनिक Murphy baby logo, a cute sa baby that you saw in the logo. And yes, that's Murphy Radio. And talking about Radio Ceylon, ladies and gentlemen, did you know how this tiny island nation got such massive broadcasting power? Ceylon, yani ki Sri Lanka ki baat ho rahi hai na. Chaliye, iske baad batati hoon. Filhal to ye gaana sun lete hain aur uske baad Radio Ceylon ki kuch history nikal ke baithne wali hoon main.

For everybody from India, this is a special, special chapter of history. Radio Ceylon की बात करने वाली हूँ क्योंकि आज National Radio Day है. मुझे लगा कि Radio Ceylon जो कि हमारे गाने में भी आया था, इसीलिए I thought I'll share it with you. After all, चार decades जो broadcast हुआ from Sri Lanka, वो तो बताना ही पड़ेगा ना. एक मतलब सोचे massive broadcasting power जो था, इसका secret actually directly World War II से जुड़ा हुआ है. And during the Second World War, the British military needed a reliable way to communicate. तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने Ceylon, यानी कि आज के श्रीलंका में एक अल्ट्रा पावरफुल रेडियो ट्रांसमिटर सेटअप किया, राइट अंडर द कमांड ऑफ लॉर्ड माउंटबैटन. दिस वॉज इन 1944 दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. और फिर दे बेसिकली यूज्ड इट ड्यूरिंग द वॉर टू ब्रॉडकास्ट न्यूज एंड सॉर्ट ऑफ एंटरटेन द एलाइड ट्रूप स्टेशन्ड अक्रॉस साउथ एशिया. लेकिन जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ, the British simply left that massive state-of-the-art equipment behind. As a result of which, Radio Ceylon ki transmission itni incredible strong thi ki ye Indian Ocean effortlessly par karke India ke ghar-ghar mein pahuncha. Actually, fast forward to the 1950s to clarify it better. India ke jo information and broadcasting minister the, us waqt Mr. B.V. Keskar, unka ek western music ke taraf ek bahut ek aversion tha. A strict classical music purist that he was. Unko ye baat pasand nahi aa rahi thi ki jis tarah ke Bollywood gaane us waqt radio pe chal rahe the. And he was determined to change that and bring everybody back to, in his words, quote unquote, India's traditional culture. In 1952, unhone drastically kam kar diya Bollywood music radio play karna, and then effectively banned film songs on All India Radio, replacing them with Indian classical music. तो जब ऑल इंडिया रेडियो ने बॉलीवुड फिल्म म्यूजिक पर बैन लगा दिया था, क्लेमिंग इट वाज टू वेस्टर्न एंड इनअप्रोप्रिएट, मिलियंस ऑफ इंडियन म्यूजिक लवर्स वर कंप्लीटली हार्ट ब्रोकन कि भाई आप फिल्मों के गाने कहाँ सुनेंगे हम. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हेन श्रीलंका जंप्ड into this opportunity. Radio Ceylon swept in like a savior for all the Indians who wanted to listen to Bollywood music. Unhone ek dedicated Hindi service start ki and gave us Indian radio history's biggest blockbuster show, Bina Ka Geet Mala, ladies and gentlemen, har Wednesday raat ko ye aaya karta tha, and the entire country would crowd around their Murphy radios, that wooden radio sets, just to hear the magic and magnetic voice of Amin Siani sahab saying, Behno aur bhaiyo, wo kaun bhool sakta hai? Seriously, kya awaaz bhai thi unhone? And that is how he kept that golden tradition of playing the hit music in Bina Ka Geet Mala, making radio listening a weekly festival in every single South Asian home. And that is Radio Ceylon history for all of you. पता है मुंबई में बैठ के अमीन सियानी रिकॉर्ड करते थे और फिर उसे फ्लाई किया जाता था. दोज रिकॉर्डिंग्स वर फ्लोन इनटू श्रीलंका टू बी प्लेड ऑन रेडियो सिलोन.

एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, छोड़ आए हैं हम वो गलियां, ये बात तो सही है, लेकिन कुछ चीजें फिर भी कितने आराम से यहाँ पे मिल जाती हैं, और उसमें एक चीज का आप और एडिशन कर लीजिए, इट इज होको। लेडीज एंड जेंटलमैन, दे आर स्प्रेडिंग देयर विंग्स इंटरनेशनली, एंड हाउ अमेजिंग इज दैट। जिन्होंने होको में खाना खाया है बैक इन इंडिया ना, वो जानते हैं कि यहाँ का खाना कितना पॉपुलर है, वो चाहे चना पूड़ी हो, आइकॉनिक सैंडविचेस हो, फ्लेवरफुल करीज हो, या फेमस होको कोल्ड कोको। जी हाँ, जरूर ट्राई कीजिए, एंड मच मोर दैट यू विल गेट ऑन द मेन्यू। अब मतलब फ्रिस्को में बैठे बिठाए अगर आपको मिल जाए तो क्या ही बात है ना। प्रेस्टन रोड, 2693 प्रेस्टन रोड, स्वीट 1000 इज व्हाट यू हैव टू टेल टू योर जीपीएस, और आराम से पहुंचे, मजे में खाएं और फिर हमें बताएं। दैट्स वॉट वी वॉन्ट यू ऑल टू डू। होको इन्जॉय कीजिए, और साथ ही में एक और जगह जिसके बारे में बताने वाली हूँ, जहाँ पर ना आपके लिए पिज्ज़ा होता है, और वो भी पूरे ट्विस्ट, इंडियन ट्विस्ट के साथ, देसी ट्विस्ट के साथ जो मिलता है, और साथ में मैक्सिकन ट्विस्ट इन द पिज्ज़ाज ऑल्सो दैट इज अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू। टेल मी द नेम ऑफ द प्लेस, लेडीज एंड जेंटलमैन। जी हाँ, वहाँ से $10 का अगर गिफ्ट कार्ड जीतना है आपको ना, तो कॉल करके मुझे बताना है कि ये फ्रिस्को का एड्रेस क्या है। फन पिज्जा किचन, लेडीज एंड जेंटलमैन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, इसका एड्रेस बता दीजिए और आप ले जाइए $10 का गिफ्ट कार्ड। ठीक है, वंस अगेन, छोड़ आए हैं हम वो गलियां। हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है, हम जब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल छोड़कर आए हैं यहाँ US। तो शुरू शुरू में सब कुछ कितना अजीब लगता था, डोंट यू रिमेम्बर? वो चौड़ी सड़कें, वो बड़े बड़े सुपर मार्केट्स, वो बहुत कमाल के लगते थे। लेकिन एक चीज़ है जो सबसे ज़्यादा हिट करती थी उस वक्त, और वो है यहाँ की खामोशी यार, पिन ड्रॉप साइलेंस, बाहर कोई आवाज़ नहीं, और घर मतलब हमारे बैक होम सड़कों पर शोर होता था यार, आवाज़ें कितनी सारी सुबह से सुनने को मिलती थी, और वो नुक्कड़ नुक्कड़ पे, गली गली में वो जो गाने बजते थे रेडियो पे, एक क्योटिक सा वॉर्म्थ मिलता था उसमें। नहीं, यहाँ आकर जब हम पहली बार इन नेवर एंडिंग अमेरिकन हाईवेज पर ड्राइव कर रहे थे, तो जब मुझे किसी ने बताया कि भाई 104.9 FM फनीशा रेडियो सुनो, तो मैंने लगाया, और वो जो लगाया, तब से आज तक एंजॉय कर रही हूँ फनीशा रेडियो, वो देसी रेडियो सुनने का मज़ा एंजॉय कर रही हूँ, राइट या बैठे बिठाए, या देसी म्यूज़िक, लोकल कम्युनिटी, न्यूज़, बिजनेसेस, सब कुछ देसी रेडियो के साथ ही तो हमें मिला था। नहीं, एंड सिंस देन वी हैव बीन हुक्ड ऑन, मानते हैं कि नहीं? तो नेशनल रेडियो डे पे ये तो बनता ही था कि हम आपको तहे दिल से शुक्रिया करें कि भाई बिकॉज ऑफ यू वी कुड डू दिस, एंड बिकॉज ऑफ यू वी विल कंटिन्यू टू डू दिस। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन टू माई शो ऑन फनीशा रेडियो 104.9 FM।

जी हाँ, हजारों मील अपने घर से दूर बैठे ना हमें यहाँ पे सोलेस मिला रेडियो सुनकर, अपनी देसी भाषा सुनकर, वो देसी म्यूजिक सुनकर जो मजा आया ना, आपको याद है आपको पहली बार फनीशर रेडियो 104.9 FM के बारे में किसने कहा था? मैं बहुत याद करने की कोशिश कर रही थी लेकिन मुझे याद नहीं आया. मुझे याद है मैं किनको सुनती थी. मैं शबनम जी को सुनती थी, मैं अमरीन को सुनती थी, एंड देयर वर अदर्स जिनको मैं सुना करती थी, और आज भी वो हमारे साथ हैं और आज भी हम उनको एंजॉय करते हैं. सो हैट्स ऑफ टू देम एंड टू एवरी अदर कॉलीग ऑफ माइन इन हियर जो अपना एक एक एक एफोवेंसेंस जो लेकर आते हैं, दिन चाहे उनका जैसा भी वो आपका दिन बनाने की कोशिश करते हैं, एंड दैट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग्स दैट आर टीम मेंबर्स डू हियर. सो थैंक यू टू देम एंड थैंक्स टू यू ऑल कि आप कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं जिस तरह से हमारे शोज पे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. क्योंकि क्या है ना कि रेडियो का एक्सपीरियंस कुछ ऐसा होता है कि सडनली यू नो द लोनली कम्यूट्स या घर और नेबरहुड का सन्नाटा एकदम वो भर जाता है, वो लोनलीनेस खत्म हो जाती है. फनीशिया हैज बिकम द ब्रिज दैट कनेक्टेड अस आर रूट्स टू आर डेली अमेरिकन हसल, गिविंग अस दैट एब्सोल्यूट बेस्ट अनफिल्टर्ड देसी रेडियो एक्सपीरियंस राइट हियर इन द हार्ट ऑफ टेक्सास. इससे ज्यादा यार हमें क्या ही चाहिए यहाँ पर, है कि नहीं?

अच्छा, जलपा से बात हो रही थी और उन्होंने बताया कि बचपन से लेके 5-6 साल की उम्र से लेकर अब तक वो जो रेडियो सुनती हैं उसका एक्सपीरियंस जो बता रही थी वो मुझे. एंड देन व्हेन शी मूव टू द यूएस एंड स्टेड इन कोलोराडो फॉर अ बिट एंड देन लुइजियाना एंड फाइनली जाके यहाँ जाके उन्हें देसी म्यूजिक का जो मज़ा मिला. तो जब यहाँ पे आया करती थी वो पहले व्हेन शी वॉज नॉट बेस्ड हियर, तब उनको लगता था कि यार यहाँ से जाना नहीं है, देसी रेडियो का एक्सपीरियंस इतना मजा आता था. शी सेड शी स्टार्टेड हर डे विद शबनम जी एंड एंडेड विद डीजे मूडी एंड हर किड्स यूज्ड टू लव डीजे मूडी एज वेल व्हेन ही सेड आई लव यू डैलस. एंड डैलस कौन नहीं प्यार करता फॉर द वेरियस रीजंस बट ऑल्सो फन एशिया रेडियो. सो नेशनल रेडियो डे, हैप्पी नेशनल रेडियो डे टू ऑल ऑफ यू लेडीज एंड जेंटलमैन. बनता है कि वी सेलिब्रेट इट टुगेदर, आफ्टर ऑल वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स टुगेदर, वी टॉक अबाउट DIY struggles, we talk life and its hustles, we share memories, yaar. Humne yaar recipes bhi share ki hain, and we complain about the Texas heat together. We are in this together, ladies and gentlemen. Ye frequency ek community ban chuka hai, ek ऐसी एक्सटेंडेड फैमिली है जिसका जिसका आप भी पूरी तरह से हिस्सा हैं. सो ऑन दिस नेशनल रेडियो डे द बिगेस्ट थैंक यू गोज टू ऑल ऑफ यू बिकॉज अ रेडियो स्टेशन इज नथिंग विदाउट इट्स लिसनर. इन ए वर्ल्ड जहां आप अपना चाहे तो क्यूरेटेड म्यूजिक प्लेलिस्ट बना सकते हो और इन सेकेंड्स बना सकते हो, यू स्टिल चूज टू ट्यून इन एंड लिसन टू रियल ह्यूमन. यू चूज द स्पॉन्टेनिटी, यू चूज दोज समटाइम्स एब्सोल्यूटली वंडरफुल जोक्स और कभी कभी वो जो जोक्स बिल्कुल फ्लैट पड़ते हैं वो भी. द माइनस लिप्स एंड फंबल्स दैट वी हैव, द लाइव कॉलर्स, द शेयर्ड मोमेंट्स ऑफ नॉस्टैल्जिया. इसे एक कंफर्टिंग खिचड़ी कहूँ या घर में बनाई हुई वो मज़ेदार बिरयानी कहूँ, क्या कहूँ इसे?

0: लिसन, नेशनल रेडियो डे ना मेरे साथ मनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी. रक्षा जी को मैंने होल्ड पे रखा है एंड थैंक यू रक्षा जी फॉर कॉलिंग इन एट द लास्ट मिनट. इट इज ऑलवेज सच अ प्लेजर टू टॉक टू यू एंड ऑल माई लवली लिसनर्स. वेल एजी फिनटैक्स दे आर द स्पॉन्सर्स ऑफ दिस पार्ट ऑफ माई शो, द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स एंड अकाउंटिंग फर्म इन द US. AGFinTax.com इज द वेबसाइट एंड नंबर इज
1: हीरे मोती.
2: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर. तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर. चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट. लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग.
3: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी एंड ए लाइफ टाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज. अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड. अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फनीशा रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस.
4: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर. मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. प्लीज प्ले रिस्पांसिबली.
5: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, ये बॉक्सेस उठा ले रे.
6: अरे, बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं, स्मार्ट लोग SFL वर्ल्ड वाइड को बुलाते हैं.
5: अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो?
6: डॉक्यूमेंट्स, बॉक्सेस, पूरा घर रिलोकेशन, इवन कार ट्रांसपोर्ट
5: इंडिया तक.
6: सिर्फ इंडिया नहीं, विद इन USA और वर्ल्ड वाइड कम्प्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज.
4: SFL वर्ल्ड वाइड, घर हो, गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव, सब सेफली पहुँचता है. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
7: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया.
8: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
7: नहीं.
8: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
7: नहीं.
8: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
7: वो भी नहीं.
8: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त.
9: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए. बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो. फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट AGFinTax.com, कॉल 972-618-8555. AGFinTax, your growth, our strategy.
10: AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
11: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
12: Hello, Weekend Lunch Emergency Helpline. How may I help you?
13: Hello, mere relatives aa rahe hain. Everyone's asking lunch mein kya hai?
12: Fikar not. We have the perfect solution.
14: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25-plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
15: The biggest gift you can give your child is the gift of confidence. I, Sunhee Simon Santiago, and my co-founder, Audra Langston, have coached debate champions, valedictorians, and Ivy League grads. We've created an online 3rd through 6th grade course that isn't just a public speaking class. It's a guide for building lifelong leaders. For more information, visit NextGenSpeakersAcademy.com. That's NextGenSpeakersAcademy.com.
16: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
17: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
18: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
19: Sadia!
3: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंड ट्रैक बन जाती है.
19: दीवारा तेरा.
5: वही आवाज
6: आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
1: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
20: तुमसे मिलके दिल का है.
6: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
1: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क.

रेडियो, आज तुमसे एक बातचीत है. सो हेलो हेलो डैलिस, इट्स थर्सडे आफ्टरनून एंड वेलकम टू द आफ्टरनून अड्डा विथ मी आरजे स्निग्धा, ओनली ऑन फनीशिया 104.9 एफएम पर. सो इट्स थर्सडे, इट्स गोना बी द पॉडकास्ट डे. मैं हूँ स्निग्धा और आप सुन रहे हैं आफ्टरनून अड्डा ऑन फनीशिया 104.9 एफएम. और आज का अड्डा थोड़ा स्पेशल है क्योंकि आज है नेशनल रेडियो डे. रेडियो की खूबसूरती ये है ना, स्क्रीन के बिना भी कोई आवाज आपका मूड बदल सकती है, आपको कंपनी दे सकती है, या कभी कभी वो बात कह देती है जो आपको खुद से ही सुनना होता है. आज का शो एक पॉडकास्ट के जैसा है. नो लेक्चर्स, नो परफेक्शन, बस ऑनेस्ट कॉन्वर्जेशन अबाउट आर माइंड, बॉडी एंड यू. तो कॉफी इमेजिनरी मेरी तरफ से. आई नो इट्स लंच टाइम बिकॉज वी वर टेलिंग पॉडकास्ट, तो मैंने सोचा थोड़ा लेट मी बी अ लिटिल एक्स्ट्रा एंड से इट एज कॉफी. हेडफोन्स आपके या आप गाड़ी में सुन रहे हो, और चलिए खुद से मिलते हैं आज. सो लिसनर्स, आज मुझे ये बताइए एक वर्ड जिसमें आपके माइंड को लगता है आइदर योर काम, you're tired, you're confused, are you happy or are you overwhelmed, what your body and mind feels today. चलिए मुझे कॉल करके जरूर बताइए, आज नेशनल रेडियो डे है.

0: जिसमें आपके माइंड को लगता है आइदर यू आर काम, यू आर टायर्ड, यू आर कन्फ्यूज, आर यू हैप्पी और आर यू ओवरवेल्म्ड, व्हाट योर बॉडी एंड माइंड फील्स टुडे. चलिए मुझे कॉल करके ज़रूर बताइए. आज नेशनल रेडियो डे है, लेट्स स्टार्ट द थर्सडे आफ्टरनून विथ फुल ऑन मूड ऑन, क्योंकि कल फ्राइडे है, वीकेंड आ रही है. तो अंटिल देन लेट्स कीप द एनर्जी हाई.
1: नंबर से संपर्क करना चाह रहे हैं, उसकी शादी हो रही है.

पालकी में होके सवार चली रे और आपकी सेलिब्रेशन भी हो एकदम रॉयल और यादगारी। वेडिंग हो, ग्रेजुएशन हो, हाउस वार्मिंग या कोई भी स्पेशल सेलिब्रेशंस, व्हेन इज़ इवेंट्स के साथ प्लान का टेंशन बिल्कुल खत्म। व्हेन यू सेलेक्शन गॉर्जियस डेकोर बाय सिग्नेचर इवेंट्स, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी एंड डिलिशियस केटरिंग एक्सक्लूसिवली बाय रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड, सब कुछ ही एक ही प्लेस पर। तो आपको बस अपनी मेमोरीज बनानी है, बाकी सेलिब्रेशंस का हर डिटेल संभाल लेगा वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर। आज ही कॉल कीजिए हरी बसेरा जी को एट 4694428770। पालकी में होके सवार चली रे और आपकी ड्रीम सेलिब्रेशन वैनेसा इवेंट्स के साथ तैयार चली रे। कीप लिसनिंग टू फन एशिया, हम बात करेंगे और भी।

are listening to The Afternoon Adal with me, RJ Snigdha, only on Funisha 104.9 FM. But so let's get back to our podcast time. So we were talking about mind, body and ourself. Agar main mind ki baat karu, kabhi notice kiya hai ki hum mental health shabd sunte hi sochte hai, kuch problem to nahi hai na. But mental health usse kaafi zyada broad hai. WHO ki according, mental well-being ka matlab लाइफ के स्ट्रेसेस को हैंडल कर पाना, अपनी एबिलिटीज को रियलाइज करना, सीखना और उन पे काम करना है. एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो अगर बोल रही है कि बस इट इज़ नथिंग एल्स, इतना स्ट्रेस मत लो, तो मत लो स्ट्रेस. तो अगर आज आप बस थोड़े टायर्ड है, थोड़े इमोशनली ड्रेन है या सिंपल लाइफ को प्रोसेस कर रहे हैं, इसके मतलब ये नहीं है कि आप वीक है. ह्यूमन होना ही एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है. हम हर दिन सेम एनर्जी के साथ ऑपरेट नहीं कर सकते. जैसे फ़ोन को चार्जिंग चाहिए, वैसे ही माइंड को पॉज चाहिए, कनेक्शन और रिकवरी भी चाहिए. आज आफ्टरनून अड्डा में हम मेंटल हेल्थ को स्केरी टॉपिक नहीं, डेली कॉन्वर्जेशंस बनाएंगे, क्योंकि अपने माइंड का हाल पूछना भी सेल्फ रेस्पेक्ट की एक फॉर्म होती है. आप अपने दोस्तों को पूछते हैं कि आर यू ओके, तो आज थोड़ा उल्टा कर देना, आप अपने खुद को भी पूछो आर यू ओके एंड लेट मी नो आई वांट यू गाइस टू बी ओके, क्योंकि वीकेंड इज लोडिंग.

0: You are listening to The Afternoon Adda with me, RJ Snigdha, only on Phanisha 104.9 FM. But we were talking about mental health and mental strength. According to me, my mental strength is facing everyday life challenges. Agar aap sochte ki mental strength is something else, I am ready to listen. Mujhe call kijiye aur bataiye so that I can even share it with a lot more people, because right now mental strength is very important for all of us, and I hope everybody takes it seriously, kyunki dimag se hamesha strong rehni chahiye.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Fun Asia 104.9 FM.
4: Turn up the volume.
5: यार मॉडर्न मंगल सूत्र ढूंढते ढूंढते थक गई हूँ,
6: तो कैरेट लेन चलो. दे नाउ हैव अ स्टोर इन फ्रिस्को एंड द बेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगल सूत्र.
5: सीरियसली, कैसा कलेक्शन है?
6: मिनिमल, डायमंड, एलिगेंट, एवरीडे स्टाइल्स. यू विल प्रोबेबली स्पेंड मोर टाइम चूजिंग देन शॉपिंग.
7: फाइंड द मंगल सूत्र दैट मैचेस योर स्टाइल एट कैरेट लेन, होम टू द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगल सूत्र. कैरेट लेन नाउ ओपन इन फ्रिस्को नेक्स्ट टू तनिष्क.
8: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
9: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
8: क्या मतलब?
9: Ura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
8: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
9: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled, and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
8: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
10: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
11: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था.
12: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया. सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स. और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी. लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा, ईस्ट प्लेनो. विजिट signaturecuisine.net. सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर.
13: हेलो, एक्सीडेंट क्लेम. Okay, name of the lawyer? Omar Khwaja.
14: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम, तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
15: हेलो, मेरे रिलेटिव आ रहे हैं. Everyone's asking लंच में क्या है.
16: Fikar not. We have the perfect solution.
1: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
17: Dad, प्रॉपर्टी पेपर्स कहाँ हैं?
18: लैपटॉप में.
17: इन्वेस्टमेंट,
18: गूगल ड्राइव,
17: इंश्योरेंस, पासवर्ड्स.
18: बेटा डोंट वरी, मुझे सब पता है.
17: डैड, वही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको पता है.
1: Your family shouldn't have to search for answers when you're not there to give them.
19: Hi, this is Deepthi Verma with NRI Wealth. With proper estate planning, protect what you have built and give your family clarity and control.
1: Call 669-243-5799. That's 669-243-5799. Or visit nriwealth.com for a free 15-minute consultation. NRI Wealth. Don't leave a mess. Leave a plan.
2: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just

You are listening to The Afternoon Adda with me, RJ Snigdha, only on Funasia 104.9 FM per. So before we got into the break, my question was, mental strength ka real meaning kya hai? Mental strength ka matlab ye nahi ki aapko kabhi rona nahi chahiye, kabhi anxious nahi honi chahiye, ya har situation mein I am strong bolkar smile karni hai. Real strength कभी कभी ये एक्सेप्ट करना है कि हाँ ये मेरे लिए डिफिकल्ट है. स्ट्रेंथ का एक परफेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी भी है, सिचुएशन को समझना, हेल्प लेना, बाउंड्रीज बनाना और फिर स्लोली मूव फॉरवर्ड करना. और प्लीज कंपैरिजन से मेंटल स्ट्रेंथ को मेजर मत कीजिए, किसी और का हाईलाइट रील देखकर या अपनी बिहाइंड द सीन्स की लाइफ को जज करना अनफेयर होती है. अगर आज आपका पेस स्लो है तो स्लो होना फेलियर नहीं, कभी कभी रिकवरी भी प्रोग्रेस होती है. और अगर फीलिंग्स बहुत हैवी हो रही है या डेली लाइफ इफेक्ट कर रहा है, प्रोफेशनल सपोर्ट लेना वीकनेस नहीं होती, इट्स जस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो लिसन टू योर सेल्फ, आपके लिए स्ट्रांग होना क्या है, चुप रहना, फाइट करना या जरूरत पड़ने पर हेल्प मांगना. फॉर मी आई थिंक इट शुड बी लाइक व्हेनेवर आई नीड समवन, हूएवर इज क्लोज टू मी, आई जस्ट आस्क देम कि कैन यू प्लीज बी देयर फॉर मी. एंड पीपल हु रियली केयर फॉर मी एंड हु रियली लव फॉर मी, दे वर ऑलवेज देयर फॉर मी, लाइक माई डैड, लाइक माई बेस्ट फ्रेंड, ऑल ऑफ देम एंड इवन माई सिस्टर समटाइम्स. सो देयर माइट बी सम पीपल हु डू केयर फॉर यू एंड हु आर ऑलवेज देयर फॉर यू व्हेन यू आर मेंटली वीक. सो इट इज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट टू लिसन टू योर सेल्फ. अगला गाना आपके लिए, कीपिंग द एनर्जीज हाई. जस्ट बिकॉज हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, मैं आपकी एनर्जी लो तो नहीं कर रही हूँ, मैं तो आपको और मोटिवेट करने वाली हूँ.

0: are listening to The Afternoon Adda with me, RJ Snigdha, only on Phoenicia 104.9 FM. But now it's the time we have Ms. Shefali, a home mortgage expert from myfamilyhomeloan.com, jo families ko home loan options samjhane aur buying process ko simple banane mein help karte hai. So hi Ms. Shefali ji.
1: Hello, good afternoon Phoenicia. To all Phoenicia listeners.
0: We have a question for you today. अगर homeowner के पास property में equity है, तो क्या refinance के through cash access किया जा सकता है?
1: जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है. इसे cash out refinance कहते हैं. अगर घर की current market value mortgage balance से ज्यादा है, तो homeowner eligible equity का एक portion cash में access कर सकता है. For example, अगर property की value 400,000 है और आपकी current mortgage balance 250,000 है, तो property में approximately $150,000 की equity है. लेकिन पूरी equity cash में नहीं मिलती है. वो depend करता है कि आपको कितना cash मिल सकता है property type पे, occupancy पे, आपके credit profile पे, income, appraisal और lender के maximum LTV guidelines के ऊपर depend करता है. LTV is like loan to value ratio. Cash out funds जो होता है उसको आप home improvement, high interest, debt consolidation, educational purposes या फिर investment के लिए use कर सकते हैं. लेकिन refinance से current mortgage replace हो जाता है, इसलिए new interest rate, mortgage payment और closing cost को carefully evaluate करना जरूरी है before going for that option.
0: Okay, कैसे पता चलेगा कि refinance करना financially beneficial है या current mortgage को continue करना better है?
1: सिर्फ lower interest rate देखना enough नहीं होता है, हमें complete cost versus saving analysis करना जरूरी होता है, जो काफी पॉइंट्स पे डिपेंड करता है. जैसे आप कंपेयर कर सकते हैं कि आपकी करंट रेट वर्सेस न्यू रेट क्या होगी, आपका करंट पेमेंट वर्सेस आपका जो प्रपोज पेमेंट है उसमें क्या डिफरेंस है, क्लोजिंग कॉस्ट कितना है रीफाइनेंस का, लोन टर्म रीसेट हो रहा है, जैसे काफी दफा दे हैव अ 3 ईयर टर्म जिसके बाद बलून पेमेंट ड्यू होता है, तो उस टाइम पे अगर आपके लिए ये वर्कआउट करता है ऑप्शन, आपको बेटर टर्म्स मिल रहे हैं, देन यू शुड लुक फॉर इट. आपका प्रॉपर्टी कितने साल आप रखना चाहते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है. आर यू प्लानिंग टू कीप इट लॉन्ग टर्म और योर गोल इज टू जस्ट कीप इट अ शॉर्ट टर्म एंड देन सेल इट आउट. सो इन सब के बेस के ऊपर डिसाइड करना चाहिए कि आपका रीफाइनेंस आपके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है. करंटली रेट अगर आपका ऑलरेडी लो है, तो रीफाइनेंस से रेट या लाइफ टाइम इंक्रीज हो रहा है या आपको उसमें कुछ और बेनिफिट्स मिल रहे हैं, आपका टर्म एक्सटेंड हो रहा है कि आप उसको नियर फ्यूचर में सेल आउट करना चाह रहे हैं, अभी आपको खाली कैश आउट निकाल के इक्विटी यूज करना है, उस बेसिस एवरी इंडिविजुअल सिनेरियो इज डिफरेंट. सो देर आर सो मैनी बेनिफिट्स टू इट टू, बट यू ऑल्सो नीड टू लुक इन टू योर इंडिविजुअल सिनेरियो वेदर इट इज बेनिफिशियल फॉर यू टू डू इट राइट नाउ और शुड यू वेट, डिपेंडिंग ऑन योर सिनेरियो एंड योर गोल. वॉट आर यू ट्राइंग टू अचीव फ्रॉम दैट रीफाइनेंस, वॉट आर यू ट्राइंग टू गेट फ्रॉम दैट कैश आउट, वॉट इज द पर्पस ऑफ द कैश आउट, how you going to use that, it all depends on each individual situation. So you can call us and we can help you discuss the refinance options or HELOC options or HELOAN options on investment properties. My number is 469-734-3338.
0: Thank you so much, Shefali ma'am.

लंच टाइम हो गई है, इफ आपने अभी लंच अभी तक नहीं किया है तो बोरिंग खाना क्यों? सिजलिंग कबाब्स, चपाती, चटपटी, चाट, फ्यूजन बाइट्स और रिफ्रेशिंग मॉकटेल्स। अगर आपने Page 3 ईटरी एट हब 121 ट्राई नहीं किया है तो सीरियसली यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग। यहाँ इंडियन स्ट्रीट फूड मिलता है मॉडर्न फ्लेयर के साथ, परफेक्ट फॉर अ क्विक लंच, फूडी मीटअप या फ्रेंड्स के साथ चिल। तो लंच का मूड सेट कीजिए और हेड टू Page 3 ईटरी एट हब 121 फॉर मोर डिटेल्स। यू कैन इवन विजिट Page3eatery.com, Page 3 ईटरी, जहां लंच भी फुल ऑन फ्लेवर और वाइब्स के साथ।

एक लाइन ना हम बहुत सुनते हैं, पुट योर सेल्फ फर्स्ट, लेकिन इसका मतलब क्या है? हर सिचुएशन में सिर्फ अपनी मर्जी चलाना बिल्कुल नहीं, सिर्फ सेल्फ प्रायोरिटीज का मतलब है अपनी नीड्स को कॉन्वर्जेशन में इंक्लूड करना। आपको रेस्ट चाहिए तो रेस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको बाउंड्री चाहिए तो बाउंड्री भी इम्पॉर्टेंट है। आप इमोशनली अवेलेबल नहीं हो तो हर किसी को प्लीज करना ज़रूरी नहीं होता है, और दूसरों के ख्याल रखते रखते अगर आप खुद कम्प्लीटली एम्प्टी हो जाते हो तो लॉन्ग टर्म में वो सस्टेनेबल भी नहीं होता है। WHO भी सिर्फ सेल्फ केयर को हेल्थ को मेंटेन करना और इलनेस से कोप करने में सपोर्ट के रूप में डिफाइन करती है। ये प्रोफेशनल हेल्थ केयर के रिप्लेसमेंट नहीं, उसका कॉम्प्लीमेंट है। तो आज का कैफे एक सिंपल सा सवाल पूछती है, मैं सबके लिए अवेलेबल हूँ लेकिन क्या मैं खुद के लिए भी अवेलेबल हूँ? आज एक छोटी सी चीज़ सिर्फ अपने लिए स्केड्यूल कीजिए विदाउट एनी गिल्ट। इट कैन बी अ वर्कआउट, इट कैन बी अ ग्रोसरी शॉपिंग। डोंट टेल मी ग्रोसरी शॉपिंग, क्योंकि आई नो सारी मम्मी आके मुझे मारेगी कि डू यू थिंक ग्रोसरी शॉपिंग इज सेल्फ टाइम? गो फॉर अ पेडिक्योर, और आई एम नॉट फॉरगेटिंग द बॉयज ईदर। यू कैन गो प्ले विथ योर फ्रेंड्स, चिल फॉर सम टाइम, और यू कैन इवन गो फॉर अ मेडिटेशन जस्ट फॉर योर सेल्फ। प्लान समथिंग जस्ट फॉर योर सेल्फ एंड फील लाइक, टेल मी हाउ डू यू फील अबाउट इट, बिकॉज आई फील अमेजिंग अबाउट इट वेन यू आई डू पिलाटीज फॉर माई सेल्फ। और मुझे वो टाइम दिन में माई फेवरेट टाइम, बिकॉज आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर माई सेल्फ, मी माई बॉडी, आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स। सो ऑलवेज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज एंड प्रायोरिटाइज एंड डू एटलीस्ट वन थिंग इन अ डे फॉर योर सेल्फ।

think drama queen is? Do you think हमारी mind drama queen है या हमारी body drama queen होती है? Body का problem हो तो doctor, mind का mood off हो तो ignore. But connection बहुत real है. Physical activity, do you know who does physical activity? I'm not talking about gym since मैं normally physical activity के benefits सिर्फ body तक limited नहीं होते. According to World Health Organization, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी मेंटल हेल्थ, ब्रेन हेल्थ और ओवरऑल वेलबींग को सपोर्ट करती है और डिप्रेशन और एंग्जाइटी के सिम्टम्स को रिड्यूस भी करती है. एंड इट कैन हेल्प अस फॉर दैट ऑल्सो. और फिजिकल एक्टिविटी का मतलब सिर्फ हार्डकोर वर्कआउट नहीं, वॉकिंग, साइकिलिंग, रिक्रिएशन, स्पोर्ट्स, हट्टे कट्टे, एक्टिव हाउस होल्ड भी और वर्क में भी हम ये कर सकते. तो अगर जिम आपकी पर्सनैलिटी नहीं है तो कोई बात नहीं, आज दोपहर में बाहर ना जाए, घर पे ही एक 10 मिनट वॉक कर लो खाना खाने के बाद. आई शुड टेल यू 10 मिनट मतलब वेन एवर आई ईट आई जस्ट डोंट सिट. ऐसे ही खाना हो गया तो मैं बैठ नहीं जाती हूँ, मैं 10 मिनट वॉक करके ही बैठती हूँ. मेक दिस अ पार्ट ऑफ योर लाइफ स्टाइल एंड सी हाउ इट चेंजेस. इट मेक्स यू फील सो एक्टिव, सो अवेलेबल. लिफ्ट की जगह स्टेयर्स में जाइए. मीटिंग के बाद थोड़ा वॉक कीजिए, एक फेवरेट सॉन्ग पे गाना चला दो और नच नाच लो ना अपने बाथरूम में, कोई आपको आके नहीं देखेंगे. इट इज सो देर आर सो मेनी थिंग्स टू कीप योर बॉडी मूविंग एंड योर माइंड फोकस. सो आई हैव गिवन यू सो मेनी things to do, तो कीजिए and keep your body always moving and keep yourself always active. मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ बट आज हमारे पॉडकास्ट में सिर्फ हम यही बात करने वाले हैं. बट आई एम गिविंग यू सच गुड टिप्स, प्लीज फॉलो गाइज.

फ्लावर, प्यार की बात हो तो स्पार्कल तो बनती है, और अगर डायमंड्स का स्पार्कल हो तो और भी इरेसिस्टिबल। तनिष्क फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स इज हियर। एंजॉय अप टू 25% ऑफ ऑन डायमंड वैल्यू एंड मेकिंग चार्जेस, प्लस 18 कैरेट से ऊपर की ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर जीरो डिडक्शन। तो अपने लव को बोलो, तेरा नहीं मैं लवर, बस तनिष्क को स्पार्कल चाहिए होती है अपने लवर को चमकाने के लिए। विजिट तनिष्क इन फ्रिस्को एंड मेक योर लव स्टोरी शाइन इवन ब्राइटर। तनिष्क, बिकॉज सम लव डिजर्व्स टू स्पार्कल। तो 25% ऑफ ऑन डायमंड्स, लेडीज कम ऑन, गेट योर मैन एंड गेट गोइंग टू तनिष्क।

0: you are listening to The Afternoon Adda with me, RJ Snigda, only on Phanesha 104.9 FM. Par dosa lovers ready ho, kyunki aaj National Radio Day hai and we have the giveaway from San Idli Wedge Restaurant. It is located at Highway 121 or Custard Junction par. Milenge crispy dosas, fluffy idlis, authentic South Indian flavors, Jain friendly options aur shahar ki best filter coffee. और अब आता है गिव अवे का ट्विस्ट. अभी मैं ये तो नहीं कर रही हूँ कि मैं बॉलीवुड का ऑडियो चलाऊंगी, आप बस बता दो. मैं ये करने वाली हूँ कि एक आरजे की वॉइस प्ले करूंगी, आपको बस गेस करनी है ये किस आरजे की आवाज है. सही जवाब देने वाले जीत सकते हैं एनी डोसा ऑफ योर चॉइस प्लस वन फिल्टर कॉफी एट सैन इडली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट. तो खाने खोल के रखिए, वॉइस पहचानो और गिव अवे जीतो. दिस इज again located San Idli Wedge Restaurant, Highway 121 or Custard Junction par. Taste authentic and giveaways fantastic. So get ready people. And she is my favorite RJ and I'm sure you might known her and calls tup tup tup tup aa jayenge.
1: Listen, meri awaaz hi meri pehchan hai, aisa log kehte hain. To batao batao.
0: So that's it. तो बताओ बताओ, कॉल कीजिए 972-235-5555 पर. नेशनल रेडियो डे है एंड आई एम एक्साइटेड कि कौन बोलेंगे ये आरजे कौन है और कौन पाएंगे फ्री डोसा विद फिल्टर कॉफी. अंटिल देन, नेक्स्ट गाना एंड आई एम वेटिंग फॉर द आंसर.

डॉक्टर के पास जाके सिर्फ 5 या 10 मिनट में कंसल्टेशन खत्म कर ली है। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर में ऐसा नहीं होता है। यहाँ हर अपॉइंटमेंट के लिए पूरे 30 मिनट होते हैं, क्योंकि आपकी हेल्थ को समझने के लिए वक्त बहुत ज़रूरी होता है। एनुअल फिजिकल एंग्जाइटी केयर, अल्कोहल रिलेटेड लिवर कंसर्न्स के लिए फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 डेफिशिएंसी टेस्टिंग और मोर, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। क्योंकि पैशन हेल्थ में आप सिर्फ पेशेंट नहीं है, उनके लिए अपने परिवार होते हैं। तो अपनी और अपनी फैमिली की हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए। कॉल देम एट 214-666-6259 एंड स्केड्यूल योर अपॉइंटमेंट टुडे। गिविंग योर सेल्फ प्रायोरिटी इज इम्पॉर्टेंट एंड दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे इन आवर पॉडकास्ट कैफे ऑन अ थर्सडे आफ्टरनून।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोल की भी है।
3: अरे सारे तो सेम है।
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो ये वाला।
3: ओह हाँ, ये तो अलग है।
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे?
6: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
5: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
6: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
5: सच में? सब संभालेंगे?
6: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
4: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
7: जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए।
8: आपका डॉक्टर गया लॉन्ग वेकेशन पर, कोई बात नहीं। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के मल्टीपल लोकेशंस, एक्सपीरियंस फिजिशियंस के साथ क्वालिटी केयर कभी नहीं रुकती। और सिर्फ ट्रीटमेंट ही नहीं, आज ही अपना एनुअल फिजिकल शेड्यूल कीजिए। रेगुलर स्क्रीनिंग्स के साथ डिप्रेशन और एंग्जाइटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ स्क्रीनिंग, फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग और बहुत कुछ। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, हेल्थ केयर दैट नेवर टेक्स अ वेकेशन।
4: कॉल 214-666-6259 टू बुक योर अपॉइंटमेंट्स टुडे।
9: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
10: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर।
11: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
9: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
12: वेट, इतना सब और प्राइस?
9: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
13: मैं।
14: अजी सुनते हो?
15: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
8: The OG of tax planning, AG FinTax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Funasia Radio.
16: Dallas, तैयार हो जाइए एक शानदार जश्न के लिए।
17: पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास प्रेजेंट्स कायद मेला 2026, अ ट्रिब्यूट टू आवर हेरिटेज एंड अ सेलिब्रेशन फॉर ऑल। एंजॉय लाइव म्यूजिक, डिलीशियस फूड, शॉपिंग, कल्चरल एक्टिविटीज एंड फैमिली फन फॉर एवरी एज।
16: लाइव परफॉर्मेंस बाय रागा बॉयज,
17: सैटरडे ऑगस्ट 22nd फ्रॉम 3 PM टू 11:45 PM एट साउथ फोर्क रैंच इन पार्कर, टेक्सास। डोर्स ओपन एट 2 PM, एंट्री और पार्किंग बिल्कुल फ्री। Kayad Mela 2026.
16: Media Partner, Fun Asia Network,

You are listening to The Afternoon Adda with me, RJ Snigdha, only on Funisha 104.9 FM. Par. So that was about our podcast today. Aur aaj ka trending topic, did you know, सिर्फ हेडफोन्स या हेडलाइंस तक लिमिटेड नहीं होती है. सोशल मीडिया से लेकर एवरीडे कॉन्वर्जेशंस तक सब जगह इसी की बस है. लेकिन क्या आपको पता है कि ये ट्रेंड एक्चुअली स्टार्ट कैसे हुआ और कितना पॉपुलर क्यों है? चलिए 60 सेकंड्स में जानते हैं कि ये ट्रेंडिंग टॉपिक की इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और वो बात जो आपको नहीं पता है. फॉर दिस स्टे ट्यून्ड, दैट इज नन अदर देन आउट ट्रेंड्स दैट इज गोइंग ऑन इंस्टाग्राम. हम बात कर रहे हैं उसके बारे में.

सफर चाहे जिंदगी को या रोड का, कभी कभी एक एक्सीडेंट पूरी जर्नी बदल देती है। अगर आप कोई कार या ट्रक्स एक्सीडेंट या स्लिप एंड फॉल के इंसिडेंट के शिकार हुए तो अटॉर्नी उमर ख्वाजा आपके केस के लिए फाइट करेंगे और आपको वो कॉम्पेंसेशन दिलाने में मदद करेंगे, तो आप जो आप डिजर्व करते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज के प्रेशर से परेशान मत होइए, अपने राइट्स के लिए राइट लीगल हेल्प लीजिए। और सबसे खास बात, यू डोंट पे अंटिल यू विन। फ्री कंसल्टेशन के लिए कॉल करें 4693005046 या विजिट करें attorneyomar.com। attorneyomar ख्वाजा, योर जर्नी डिजर्व्स जस्टिस।

दिल डूबा किसकी गानी गाना है ये? इट इज नन अदर देन सोनू निगम. गेट रेडी फॉर एन अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ म्यूजिक. द वन एंड ओनली सोनू निगम आ रहे हैं लाइव इन कॉन्सर्ट. एक्सपीरियंस रिवोल्यूशन ये हो रही है ऑन सैटरडे सितंबर 26 8:30 PM एट क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर इन एलन. आपकी फेवरेट गाने, दैट आइकॉनिक वॉइस, ऑल इन लाइव. टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉल 855-360 शोज. रेवोल्यूशन सोनू निगम लाइव. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर नन अदर देन फन एशिया रेडियो. और नेशनल रेडियो डे पर मुझे रेडियो की सबसे ब्यूटीफुल चीज़ याद आती है, एक आवाज़, एक लिसनर और बीच में एक इनविजिबल कनेक्शन. आप डैलस में कहीं पे भी हो, ड्राइव कर रहे हो, खाना खा के बस बैठे हो, या कॉफी बना रहे हो, ऑफिस में हो, थैंक यू फॉर लेटिंग मी स्पेंड दिस आफ्टरनून विथ यू. मैं हूँ स्निग्धा. दिस इज आफ्टरनून अड्डा ऑन फन एशिया 104.9 FM. रेडियो को सुनते रहिए, कॉन्वर्जेशंस को लाइव रखिए और सबसे इम्पोर्टेंट अपने आप से कनेक्टेड रहिए. हैप्पी नेशनल रेडियो डे. मिलते हैं नेक्स्ट अड्डा में. तब तक माइंड को थोड़ा स्पेस, बॉडी को थोड़ा केयर और खुद को थोड़ा एक्स्ट्रा काइंडनेस दिखाइए. एंड प्लीज कीप लिसनिंग एंड प्लीज Be connected to Funasia Radio 104.9 FM per, and we will meet next week, Monday to Thursday, 12:30 to 2:30. It will be me who will be on Afternoon Adda, or hum der sari aur baatein bhi karenge. Thank you guys.

0: जाना।
1: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़रवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM टू 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 काइज़रवे, स्वीट 205, फ्रिस्को।
2: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? Omar Khwaja.
3: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम, तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
4: भूख लगी
5: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
6: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 Eatery। ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
7: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू पेज 3, हब 121 मैकिनी।
8: तुमने कभी इंश्योरेंस लिया? कभी पॉलिसी समझ भी आया?
9: नहीं आया।
8: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर। No confusion, no unnecessary extras. Call Humera Jumani at Sonata Inc. 972-863-7772. That's 972-863-7772.
10: Visit www.sanadainc.com today.
11: Yaar, boss ne fir se daat diya. Traffic alag. और ऊपर से ये स्ट्रेस।
12: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
11: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
12: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
11: ये क्या होता है?
12: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
10: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस, सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
1: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 doors डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन अवेलेबल।
13: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
14: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
15: आर यू लुकिंग फॉर अ स्मार्टर अप्रोच टू रिड्यूसिंग टैक्सेस व्हाइल बिल्डिंग एंड प्रिजर्विंग वेल्थ? माय टाइम इक्विटी, अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म लेड बाय CPA सुधीर पाई, ऑफर्स एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late stage pre-IPO opportunities and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
14: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
16: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
10: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
14: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
17: तुमसे मिलके दिल का है।
10: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
14: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।

A very, very good afternoon to the listeners of 104.9 FM Fun Asia Radio. Sun rahe hain aap. Main hoon Kiran aapke saath. Thank you so much for connecting with us this afternoon. Thank you, Snigdha, for an absolutely beautiful show. And music ka silsila Fun Asia pe aapke liye jari rehta hai 24/7. Hum karte hain aapko entertain as well as informed rakhte hain of what is going on everywhere. Aur aaj hai ji Thursday. Thursday ko afternoon drive time with Sunehri Kiran. May first Thursday of every month we do food junction jahan main aapko leke jaati hu mukhtalif mulkon ke mukhtalif shehron mein jahan hum baat karte hain unke local favorites kya hain unke desi favorites kya hain international cuisine kya khate hain wo unke dessert favorites kya hain ye sari baatein hoti hain food junction mein. But that happens on the first Thursday of every month. The rest of the Thursdays of month we do wo 90s ka Bollywood aapka one of the most favorite segments jisme mujhe sabse zyada calls aati hain aap sab apne pasand ke gaane batate hain filmon ke discuss kare hote हैं और 90s के बॉलीवुड को जो हम कितने प्यार से उसको सेलिब्रेट करते हैं पिछले कई हफ्तों से हम बॉलीवुड की 90s के बॉलीवुड की डिफरेंट डिफरेंट चीजों को सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे ही हम वापस आएंगे मैं आपको बताऊंगी कि आज हमने 90s की क्या सेलिब्रेशन करनी है. सो लेट्स बिगिन. दिस इज वो 90s का बॉलीवुड राइट हियर ऑन योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण.

अच्छा जी, ट्विस्ट ऑफ टंग हो जाता है, नॉट वर्ल्ड रेडियो डे, वो फॉरेन अंदाजा हो गया मुझे, क्योंकि वर्ल्ड रेडियो डे तो हम फरवरी में मनाते हैं. दिस इज नेशनल रेडियो डे टुडे, अगस्त 20th, आज का दिन इज द नेशनल रेडियो डे. ये वो दिन था, दिस मार्क्स द एनिवर्सरी ऑफ स्टेशन 8MK, जिसे अब आजकल WWJ कहा जाता है इन डिट्रॉयट. दे स्टार्टेड ब्रॉडकास्टिंग रेगुलर डेली प्रोग्रामिंग ऑन August 20th, 1920. तो आप देख लीजिए कि 1920 अब 2026 हो गया है, तो अराउंड 106 साल हो गए हैं US में नेशनली रेडियो को ब्रॉडकास्ट होते. इट इज रिकग्नाइज्ड एज वन ऑफ द फर्स्ट एंड द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल रेडियो ब्रॉडकास्टिंग माइलस्टोन्स इन द US. तो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं नेशनल रेडियो डे, और बहुत सारा कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ. हम बात करेंगे, थोड़ा सा कवर करेंगे, यू नो, द एवोल्यूशन, व्हाई नेशनल रेडियो डे इज स्पेशल, और रेडियो के आने के बाद क्या क्या हुआ, आवाज़ें कैसे हमारी जिंदगी में इतनी इंपॉर्टेंट हुई, और भी बहुत कुछ हम कवर करेंगे. अच्छा, साथ साथ 90s का बॉलीवुड तो चल ही रहा है, तो आपके लिए कुछ 90s के बेहतरीन गाने मैं प्ले कर रही हूँ. अगर आप कोई रिकमेंडेशन देना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, मुझे कॉल करके जरूर रिकमेंडेशन दीजिए. इफ आई कैन फिट इन योर चॉइस ऑफ सॉन्ग, आई विल. 972-235-5555 इज द नंबर टू द स्टूडियो.

0: The Dill of Dallas. Heart to Heart, Funasia.
1: नेशनल रेडियो डे सेलिब्रेट करते करते हम बढ़ेंगे आगे और कुछ आपकी रिकमेंडेशंस भी मेरे पास मौजूद हैं. थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल्स. अच्छा जी, ये जो डेट है August 20th, ये नेशनल डे क्यों मनाया जाता है? लाइकली रेफरेंस द डे इन 1920 जब 8MK, जिसे आज WWJ इन डिट्रॉइट कहा जाता है, फर्स्ट वेंट ऑन एयर. द हॉलीडे हैज बीन सेलिब्रेटेड सिंस द अर्ली 1990s, गेनिंग अ मेजर बूस्ट इन रिकग्निशन इन 2011 व्हेन द नेशनल पब्लिक रेडियो NPR हैविली प्रमोटेड इट. तो NPR को श्रेय जाता है थोड़ा सा इसको हैविली प्रमोट करने के लिए और मेरे और आप तक इस डेट को बहुत ज्यादा यू नो मैसिवली पहुंचाने के लिए. इट रिकग्नाइजेज द फर्स्ट टेक्नोलॉजी केपेबल ऑफ रियल टाइम मास इन्फॉर्मेशन कम्युनिटी कनेक्शन एंड एंटरटेनमेंट डिस्ट्रीब्यूशन. मैं सोचती हूँ वो 1920 का जमाना कैसा होगा, 20 अगस्त 1920, जब पहली बार इतने बड़े लेवल पर रेडियो जो है वो कितने सारे लोगों के दरमियान पहुंचा होगा. सच अ माइलस्टोन.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: श्रावण हमें जोड़ता है भगवान से, रक्षाबंधन हमें जोड़ता है अपनों से, और कुछ रिश्ते एक डोर से शुरू होते हैं और एक अनमोल निशानी के साथ हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। हर रिश्ता अपनी एक कहानी लिखता है और पीएमजे ज्वेल्स उस कहानी को देता है सोने की चमक, हीरों की रोशनी और क्राफ्टमैनशिप जो पीढ़ियों तक साथ रहे।
0: पीएमजे ज्वेल्स नाउ ओपन ऑन 13215 मेन स्ट्रीट, फ्रिस्को।
4: होचो
5: होको
4: ओचो
5: होको
4: ओचो
5: इट्स होको।
6: अरे बस भी करो यार।
5: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है।
6: नाम होको हो या होचो क्या फर्क पड़ता है।
7: एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा।
0: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको अब फ्रिस्को में। वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस। टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज। इफ यू होल्ड H1B, F1, L1 और एनी अदर नॉन इमिग्रेंट वीजा स्टेटस एंड आर कंसिडरिंग द पाथ टू परमानेंट रेजिडेंसी, कॉन्टैक्ट द लॉ ऑफिसेज ऑफ सीमा मेहता। अटर्नी सीमा मेहता एंड हर डेडिकेटेड टीम ऑफ प्रोफेशनल्स कैन हेल्प यू अटेन परमानेंट रेजिडेंसी थ्रू द EB5 इन्वेस्टर प्रोग्राम। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द EB5 इन्वेस्टर वीजा प्रोग्राम, प्लीज कॉल 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
8: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
9: साइन मिलना मुश्किल है लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स, और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा, ईस्ट प्लेनो। विजिट signaturecuisine.net। सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
10: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, ये बॉक्सेस उठा ले रे।
11: अरे बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं, स्मार्ट लोग SFL वर्ल्ड वाइड को बुलाते हैं।
10: अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो?
11: डॉक्यूमेंट्स, बॉक्सेस, पूरा घर रिलोकेशन, इवन कार ट्रांसपोर्ट
10: इंडिया तक।
11: सिर्फ इंडिया नहीं, विद इन USA और वर्ल्ड वाइड, कम्प्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज।
0: SFL वर्ल्ड वाइड, घर हो, गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव, सब सेफली पहुँचता है। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
12: अरे तीन पे क्यों अटक गया?
13: क्योंकि साल्स हॉट चिकन भी तीन पे पहुंच गया।
0: प्लेनो रिचर्डसन एंड नाउ एट अ ब्रांड न्यू लोकेशन, साल्स हॉट चिकन, कमिंग सून।
14: तारा वो तारा हर तारा।
0: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
15: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट, ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट, ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
16: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल, Fun Asia 104.9 FM.

हेलो हेलो हेलो, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? ऑफ कोर्स यू कैन. आप उस मीडियम पे मुझे सुन रहे हैं. दैट हैज सर्वाइव्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग. टेलीविजन, कैसेट टेप्स, सीडीज, MP3, सैटेलाइट टेलीविजन, स्मार्टफोन, यूट्यूब, पॉडकास्ट, हर चीज अपनी जगह. और रेडियो अपनी जगह. सब कुछ आया, बट रेडियो इज स्टिल हियर. टुडे इज नेशनल रेडियो डे और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं समथिंग दैट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ. And that has been a part of our life more than a century. मैं आपको बता रही थी अभी. सोचिए, मतलब ऐसे ही हम अगर थोड़ा सा analysis करें कि radio has been here while people were driving to work, while families were sitting around their living room radios. जब soldiers were waiting for news to come and they would keep their static radio or जो भी उनके पास radio रहता था अपनी खबरें सुनने के लिए. While teenagers were secretly listening to late night love songs. And today, radio is still sitting right here on your phone, your computer, your smart speaker, and of course, your car. And today, we are going on a journey through 100 plus years of radio in US, from the crackling voices of 1920s to the golden age of radio, to FM, to cassettes and CD era radio, to satellite radio, and finally, the world of streaming, apps, podcasts, एंड डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग. ये है कहानी इस बात की कि रेडियो कैसे बदला एंड हाउ डिस्पाइट चेंजिंग टेक्नोलॉजी वन थिंग नेवर चेंज्ड, आवर लव फॉर द वॉइस दैट कीप्स अस कंपनी. दिस वॉइस इज ऑफ कोर्स द हर आवाज जो हम रेडियो पे सुनते हैं वही हमारा कनेक्शन होता है रेडियो के साथ. सो मैं हूँ किरण और आपके साथ सेलिब्रेट कर रही हूँ नेशनल रेडियो डे स्पेशल, द वॉइस दैट नेवर लेफ्ट अस. और चल रहा है हमारा स्पेशल वो 90s का बॉलीवुड, तो गाने प्ले होंगे टोटल 90s के. दिस इज किरण एंड यू अट्यून्ड इन टू योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम. थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन.

0: अच्छा, रेडियो के बारे में मैं आपसे बातें कर रही हूँ, हम नेशनल रेडियो डे मना रहे हैं, कुछ आपको बता रही हूँ रेडियो का, लेकिन जो सबसे अनोखी और प्यारी बात होती है वो ये कि जब आप मुझे कॉल करते हैं और आप कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं जो हमारी थीम से मैच करता है, एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड इट. हमारे साथ एक हमारी बहुत प्यारी कॉलर जुड़ी हुई है जो हमें कुछ रेडियो एक्सपीरियंसेस बताने वाली हैं. गुड आफ्टरनून, अपना नाम बताइए.
1: जी सुरैया, अस्सलाम
0: वालेकुम.
1: जी,
0: वालेकुम अस्सलाम. सुरैया जी, बताइए, क्या आप कोई ऐसी पुरानी रेडियो की मेमोरी क्या शेयर करना चाहती हैं?
1: जी मेरे फादर है ना, ऑलमोस्ट 75 years पहले की बात होगी, उनके पास मर्फी रेडियो था, तो वो पूरे खानदान में एक ही रेडियो था मेरे फादर के पास. तो उस जमाने में सारे कजन उनके जो थे ना, सब जब इलेक्शन होता या क्रिकेट मैच होते इस तरह, तो फिर मेरे फादर के घर आ जाया करते थे, तो सब बैठ के वहीं सुना करते थे. तो वो अभी तक मुझे थोड़ा थोड़ा याद है. और वो ब्राउन कलर का था, और उसको एक उन्होंने बड़ा अच्छा एक लकड़ी का एक बॉक्स बनाया हुआ था, तो उसमें सजा के रख देते थे. SA बोल के नाम भी लिखा हुआ था उनका, तो दैट रेडियो इज मर्फी,
0: तो मुझे
1: वो
0: लगता है
1: ब्राउन कलर का था.
0: जी, आपके फादर जो हैं वो ऐसे होंगे जैसे नया नया किसी के पास स्मार्टफोन आया हो, वैसे वैसे नया नया
1: जी
0: रेडियो.
1: उस टाइम, हाँ उस टाइम में जैसे टीवी भी पहली बार किसी के पास आता था, तो इस
0: जी
1: तरह तो हमें तो टीवी का याद है, लेकिन ये रेडियो तो हमसे पहले वाली जनरेशन के टाइम का था. तो
0: एब्सोल्युटली जी
1: फिर मुझे भी इतना शौक हो गया था हमको सुनने का. तो बाद में जब मैं कॉलेज में थी, तो मेरे पास एक छोटा सा पैनासोनिक बोल के कुछ एक ट्रांसिस्टर आया करता था, तो वो मेरे बैग में होता था. कभी हम ऐसे कॉलेज में फ्री टाइम में भी सुन लिया करते थे अलग से ले जाके ना, तो वी जस्ट हैड अ गुड रेडियो मेमोरीज.
0: एब्सोल्युटली श्रेया जी,
1: और
0: बहुत
1: ये
0: बहुत शुक्रिया आपका, हमारी मेमोरी आपने शेयर की. दिस इज सच अ ब्यूटीफुल मेमोरी. और देखिए, आप लोग अपनी मेमोरीज शेयर कर रहे हैं तो मैं आप सबको बताती चलूं. श्रेया जी, बहुत बहुत शुक्रिया, सुनते रहिए. मैं
1: जी
0: अभी
1: रेडियो की वजह से आप लोगों से भी तो मिले ना हम, फिर हमको
0: ये भी सही है.
1: जी अमीन सियानी भी एक रेडियो के बहुत बड़े वो थे, समझिए तो आइकॉनिक ना.
0: जी हाँ.
1: ओके थैंक यू,
0: थैंक यू सुरैया जी,
1: थैंक
0: थैंक यू. अच्छा जी, सुनते रहिए क्योंकि इतनी प्यारी मेमोरीज आ रही हैं. तो मैं बताती चलूं कि मैं दो लोगों को गिव अवे देने वाली हूं. आप अपनी रेडियो की मेमोरी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं. मिराज लाउंज की तरफ से ये गिव अवे आया है. मिराज लाउंज आपके लिए $20 ऑफ लेकर आए हैं फॉर योर मिनिमम डाइन इन बिल ऑफ $50 और मोर. मिराज लाउंज इज लोकेटेड ऑन मिकनी रैंच पार्कवे. बहुत जबरदस्त उनका खाना है, हैंडक्राफ्टेड कॉकटेल्स, प्रीमियम हुकर्स, लाइव म्यूजिक, एक्साइटिंग डीजे नाइट्स और साथ ही साथ लेडीज नाइट एज वेल एज कॉलेज नाइट्स. एक और कॉल हमें आ रही है. दिस इज फॉर मिराज लाउंज, $20 ऑफ योर मिनिमम डाइन इन बिल ऑफ $50 और मोर. फानेजे रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर. अपना नाम बताइए.
2: किरण जी, मेरा नाम ऋतु है.
0: जी ऋतु, बताइए.
2: मैं ये बोल रही थी कि रेडियो, थैंक यू फॉर लेटिंग अस नो नेशनल रेडियो डे. बहुत ही, मुझे तो लगता है इट वाज ऑलवेज वेरी एक्साइटिंग. मेरे दादाजी हमारे साथ रहते थे और मैं ये अर्ली 70s की बात करती हूँ कि क्रिकेट का बड़ा शौक था सुनने का. तो उनके पास ट्रांजिस्टर होता था
0: जी.
2: दो तरह के ट्रांजिस्टर थे, विच इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ रेडियोज. एक थोड़ा सा बड़ा था, एक छोटा था, जो वो बाहर मंजी पे बैठ के ना, जब सर्दियों में जब क्रिकेट कमेंट्री होती थी तो मेरे को पास में बिठाते थे एक डायरी के साथ, और कान पे लगा के वो ट्रांजिस्टर मुझे स्कोर बताते थे.
0: क्या बात.
2: और इट यूज्ड टू बी सो फैसिनेटिंग. और मैं आजकल अपने बच्चों को जब ये स्टोरीज बताती हूँ तो दे कांट इवन फैदम टू थिंक दैट दिस वाज समथिंग व्हिच वाज पॉसिबल. और बल्कि जो जेन जी के बच्चे हैं उनको तो आई डोंट थिंक दे कैन इवन एक्सपीरियंस और इवन थिंक अबाउट समथिंग लाइक दिस एक्सेप्ट देयर ओन सेल फोन्स एंड लिसनिंग टू म्यूजिक ऑन द सेल फोन. सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर दैट.
0: नो रियली, एंड दे गिव यू सच ब्लैंक लुक्स. अगर आप उनको बताओ, कभी हमारे हाथ में वॉकमैन हुआ करता था, रेडियो तो खैर बहुत ही पुराना, मतलब उनको वॉकमैन नहीं समझ आता कि ये कैसेट और ये क्या मामा बात करती रहती है. ठीक है ऋतु, दैट इज सच अ ब्यूटीफुल मेमोरी दैट यू हैव शेयर्ड, एंड थैंक यू सो मच. सुनती रहिए, मैं अभी विनर अनाउंस करती हूँ राइट आफ्टर दिस. फानेशे रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर. व्हाट इज योर नेम?
3: हाय, माय नेम इज शिवानी.
0: हाय शिवानी जी, बताइए.
3: हाँ, एक्चुअली रेडियो से बहुत ही क्यूट मेमोरी है मेरे पास, कि हमारे जब कॉलेज टाइम में दोपहर को हम कुछ आर्ट रिलेटेड वर्क करते थे कॉलेज में, तो हमारा ग्रुप ऑफ सिक्स होता था जिसमें 5 लड़के और 1 लड़का होता था, और एग्जैक्टली उसी टाइम में रेडियो में सखी सहेली आता था तो हम सखी सहेली ऐसे करके जो वो जो पूरा 1 घंटे का शो होता था तो हम उसको सखा सहेला बोलते थे, एक अकेला लड़का जो हमारे ग्रुप में था.
0: राइट राइट राइट.
3: Yeah.
0: बिल्कुल सही है शिवानी, दीज आर सच ब्यूटीफुल हमारी रेडियो की मेमोरीज हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, सुनते रहिए. मैं अभी भी अनाउंस करती हूँ, फाइनेंशियल रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर, प्लीज टेल अस योर नेम एंड योर एक्सपीरियंस.
4: हेलो, दिस इज कुशानु. सो आई वांट टू गिव अ डिफरेंट एक्सपीरियंस अबाउट रेडियो. व्हाइल यू नो एवरीवन यूज्ड टू लिसन टू रेडियो एंड ऑल, आफ्टर दैट ओल्ड रेडियो गिव अप एंड यू नो आफ्टर सो मेनी टाइम्स ऑफ रिपेयरिंग, इट केम टू मी एज अ गिफ्ट. ओके, डू एनीथिंग यू वांट टू डू. सो यू नो आई स्टार्टेड प्लेइंग विद इट.
0: Okay.
4: And I started reusing its stuff. So I still remember I reused the speaker of the radio to make our first calling bell of the house, okay?
0: Lovely. Aap paidaishi engineer the. Okay.
4: You know, we started learning about circuits and all, and you know, soldering use karna, that, at that time it started.
0: Ji.
4: So there are marks of that, you know, old radio in several things in our house, you know, when we were all growing up. So I think that was kind of an organ donor.
0: Yeah.
4: You know, that radio is that way.
0: Of course, that is beautiful, lovely. मतलब वो कहते हैं ना, जिसमें एक इंजीनियर होता है वो किसी भी चीज से कोई ना कोई नई चीज बना लेता है. तो आपने एग्जैक्टली वही किया. थैंक यू सो मच कृषानु फॉर शेयरिंग दैट एक्सपीरियंस. प्लीज सुनते रहिए फाइनेंशियल रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर. अपना नाम बताइए.
5: Yeah, hi, this is Pooja.
0: जी पूजा बताइए.
5: So I don't have memories while growing up because at the time radio was not much in style in India, but I have more memories with Panacea. When I moved here in 2008 and someone told me there's a desi radio and I started listening, oh my goodness, it feels, you know, something come closer to you from home and you're so far from everyone.
0: Right.
5: I used to enjoy my, you know, late night drive with Panacea, listening to all the songs. So for me, if someone says radio, just Panacea comes to my mind.
0: That is so sweet. And radio ki memory har insaan ki apni special hai, kisi ki purani, kisi ki nai. Thank you, Pooja, for connecting with us. And I will announce the winner in a bit. But thank you so much for sharing your experience. Acha ji, that is all the time that we had for this giveaway brought to you by Mirage Lounge. Is gaane ke baad main winner announce karungi. Sunte rahiye because I might have to ask you to give me a call back to share your personal information. That was such beautiful memories that you shared with me. And there is no better way to celebrate National Radio Day than this.

0: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
1: Jeet unki hoti hai, jinki nazar sirf target par hoti hai. चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग, फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी. फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस. फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग, एजेस 8 एंड अबव.
2: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को. विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 469-333-1099.
3: Mention FunAsia and get 50% off on tryout session.
4: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
5: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
6: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
7: Hello, Weekend Lunch Emergency Helpline. How may I help you?
8: Hello, mere relatives aa rahe hain. Everyone's asking lunch mein kya hai?
7: Fikar not. We have the perfect solution.
9: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25-plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
10: जिंदगी एक रंगमंच है
11: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल. रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो. दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन. फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग, एक्सपीरियंस अ स्मूथ, सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन. कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com.
12: Floors clean.
13: Check.
12: Windows clean.
13: Check.
12: Kitchen clean.
13: Check.
12: Air ducts clean.
13: Wait, air ducts भी clean करना होता है?
14: बिल्कुल. जो दिखता है वो तो हम clean कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं दिखता उसका क्या? That's where Duct Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology. No roto brush. Plus dryer vent or chimney cleaning. Ghar ho, restaurants, hotels, offices ya phir any business. Duct Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
15: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
16: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
15: Kya matlab?
16: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
15: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
16: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
15: Ab to karna hi padega, madam.
17: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
18: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए. दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स. डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन.
19: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
20: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
19: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
20: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
19: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
20: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
19: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338. दैट्स 817-786-3338.
21: Hi, this is Kunal Kapoor and you're listening to FunAsia Radio.
0: डालस की धड़कन 104.9 FM, फनीजिया रेडियो।
12: कितने आदमी थे?
22: सरकार पूरा का पूरा डेलिस फनीशिया सुनता है।

ऑलराइट जी, मिराज लाउंज की तरफ से गिव अवे लेकर आई थी आपके लिए ब्रेक पे जाने से पहले. मैं हूँ किरण, दिस इज योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. और मिराज लाउंज जो कि मेकिनी रैंच पार्कवे पे लोकेटेड है, आप सबने अपनी रेडियो मेमोरीज, अपनी रेडियो की बातें मेरे साथ शेयर की. थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल्स, फॉर योर पार्टिसिपेशन. और हमारे जो आज के लकी विनर हैं वो जी मैं नंबर्स डालती हूँ मैथ के फॉर्मूले में और उसी से निकलता है आपकी लक, आपका फैसला करती है. और आज के हमारे दो लकी विनर्स इज कृषानु एंड पूजा. सो कृषानु एंड पूजा, थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस. आपका नाम और नंबर हमें दो दिन दीजिए रेस्टोरेंट पे पहुंचाने के लिए. मिराज लाउंज मिकिनी रैंच पार्कवे पे लोकेटेड है. एंड देन यू विल हैव अबाउट 7 days टू गो टू द रेस्टोरेंट एंड अवेल योर $20 ऑफ विद मिनिमम डाइन इन बिल ऑफ $50. और आप तमाम लोग, रितु, सरैया जी, बिल, शिवानी एंड मेनी मोर जिन्होंने ऑफ एयर भी मुझे कॉल किया, बहुत बहुत शुक्रिया. फनी जी इस तरह के बहुत सारे गिव अवेज आपके लिए लेकर आता है, पर मेरे लिए जो सबसे स्पेशल बात होती है वो ये होती है कि आप कॉल करके करते हैं पार्टिसिपेट. दैट इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट. थैंक यू.

वो 90s का बॉलीवुड सुन रहे हैं आप राइट हियर ऑन योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. और आज का हमारा गाने तो सारे 90s के चल रहे हैं, पर आज का जो स्पेशल है वो है जी नेशनल रेडियो डे. कुछ रेडियो के बारे में बातें कर रहे हैं और इसी तरह से बातों का सिलसिला तो आगे बढ़ता रहेगा. पर उससे पहले मैं आपको बताऊं कि हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आ सकती है, कभी भी आ सकती है. और अगर आप किसी एक्सीडेंट, देर हैज़ बिन एन एक्सीडेंट, देर हैज़ बिन अ कार और अ ट्रक इंसीडेंट, या फिर कोई स्लिप और फॉल इंसीडेंट है, तो ऐसी सिचुएशन कैन गेट एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल. डीलिंग विद द इंश्योरेंस कंपनी, द पेपर वर्क, द लीगल

स्लिप और फॉल इंसिडेंट है तो ऐसी सिचुएशन कैन गेट एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल. डीलिंग विद द इंश्योरेंस कंपनी, द पेपर वर्क, द लीगैलिटीज, द निटिग्रिटीज ऑफ द सिचुएशन, अलॉन्ग विद आपको अपनी सेहत, लीगल, मेंटल एज वेल एज फिजिकल हेल्थ और वेलबींग का ख्याल रखना है, तो आप अपनी फिजिकल हेल्थ और वेलबींग का ख्याल रखिए और लेट अटर्नी उमर ख्वाजा टेक केयर ऑफ एवरीथिंग एल्स फॉर यू. Not only he and his team will fight the case for you, they will get you the best compensation that you deserve. Aur jo isme best baat hai wo ye ki aapko kuch pay nahi karna jab tak ki aap ye case jeet nahi jate. So this is a win-win situation for you in this stressful time that you or anyone you know of is going through. Give attorney Umar Khwaja a call for a free consultation. Ask your questions and see where you stand. 469-300-5046. 469-300-5046 उनका नंबर, या फिर आप उनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं विच इज attorneyomar.com. दैट इज OMAR attorneyomar.com. और इसी के साथ बैक टू द रेडियो. रेडियो की हम बात कर रहे थे, इंट्रोड्यूस हुआ, आप सब ने अपनी अपनी कहानियां शेयर की. वो टाइम था, वो दौर था जब फैमिलीज जो हैं वो रेडियो के इर्द गिर्द बैठ जाया करती थीं. जस्ट लाइक यू नो, बाद में वक्त जब गुजरा तो फैमिलीज टेलीविजन के इर्द गिर्द बैठ जाया करती थी. आजकल तो खैर सब अपने अपने फ़ोनों के इर्द गिर्द बैठते हैं, बट एक वक्त था दुनिया में जब हम एक किसी चीज़ के इर्द गिर्द सारे एज अ फैमिली बैठ जाया करते थे. रेडियो वॉज़न्ट जस्ट अ बैकग्राउंड नॉइज, रेडियो वॉज द इवेंट एंड द पर्सन बिहाइंड द माइक्रोफोन, जैसे कि मैं उस जमाने में, तो दैट पर्सन बिकेम इनक्रेडिबली इम्पॉर्टेंट. पीपल रिलेटेड टू देम. द अर्ली रेडियो अनाउंसर्स सिर्फ डीजे और आरजे नहीं हुआ करते थे, दे वर द स्टोरी टेलर्स, द न्यूज रीडर्स, द एंटरटेनर्स, द कनेक्शन बिटवीन द आउटसाइड वर्ल्ड एंड योर लिविंग रूम, जो उस जमाने में रेडियो के इर्द गिर्द बैठा करते थे. एंड यू नो, सोचिए, देर वॉज नो स्क्रीन, देर वॉज नो वीडियो, नो इंस्टाग्राम, नो यूट्यूब. The audience had to imagine everything. मतलब जो गाना भी चल रहा है वो भी आपको imagine करना है, जो बात भी हो रही है वो भी आपको imagine करनी है. That was radio's first, very first super power.

पिछले 13 साल से टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक प्राउडली हमारी कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं और अब वो बढ़ रहे हैं जी. दे आर ग्रोइंग विद अ ब्रांड न्यू नेम एंड अ सेकंड फ्रिस्को लोकेशन. इंट्रोड्यूसिंग लिनोक्सी मेडिकल. दिस इज LUNOXY. लिनोक्सी मेडिकल, इफ यू'd लाइक टू सर्च इट अप, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. लिनोक्सी मेडिकल आपके लिए लेकर आता है जी प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, इन हाउस लैब टेस्टिंग, एक्सरेज, सीटी स्कैन, कार्डियक डायग्नोस्टिक और यही नहीं बल्कि हिमालयन मेड स्पा सर्विसेज भी आपको मिलेंगी. एवरीथिंग अंडर वन रूफ. तो अब आपको कहीं ये नहीं सोचना कि मुझे सीटी स्कैन करने कहीं और जाना है या एक्सरे करवाने कहीं और जाना है. सब कुछ मिलेगा आपको लिनोक्सी मेडिकल में. और ये है जी 7 दिन, अभी कहानी यहां खत्म नहीं हुई है. 7 दिन खुले हैं आपके लिए, 7 days a week, 8 AM द मॉर्निंग टिल 8 PM आपके लिए खुले रहते हैं ये सारे दिन, 5, 7 days a week. और अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, यू डोंट हैव टू बुक एन अपॉइंटमेंट, आप वॉक इन कर सकते हैं. वॉक इन इज वेलकम एनी टाइम. सो ये है आपके लिए लिनोक्सी मेडिकल विद टेक्सस प्राइमरी केयर. जरूर विजिट कीजिए, लोकेटेड इन फ्रिस्को. अच्छा जी, थोड़ी सी हम रेडियो की बात कर रहे हैं तो अब हम तरह 1920s की तो हमने बात कर ली. रेडियो इंट्रोड्यूस हुआ, कैसे फैमिलीज का हिस्सा बना. 30s and 40s इज वॉट मैनी पीपल कंसिडर एज द गोल्डन एज ऑफ रेडियो. रेडियो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं था, वो हमारी डेली लाइफ का तब तक हिस्सा बन चुका था. 10 साल में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका था रेडियो. इमेजिन करिए कि एक फैमिली है, वो यू नो दे आर सिटिंग टुगेदर इन द इवनिंग. डैड ने न्यूज़ सुननी है, जो कि हर घर की यही कहानी होती है. वालिद साहब ने न्यूज़ ही सुननी होती है. मॉम ने अपना ड्रामा प्रोग्राम देखना है, ऑफकोर्स द लेडी ऑफ द हाउस हैज़ टू वॉच द ड्रामा. बच्चों को एंटरटेनमेंट चाहिए किसी भी तरीके की. एंड एवरीवन इज गैदर्ड अराउंड द सेम रेडियो. रेडियो ड्रामाज तब बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगे थे. इनक्रेडिबल रेडियो ड्रामा बनने लगे थे एंड दे वर इनक्रेडिबली पॉपुलर बिकॉज ऑब्वियसली कोई आजकल के ड्रामे की तरह कोई टी वी पर तो चल नहीं रहा था. तो वॉइस से ड्रामा बनाया जाता था और वो ही लोगों को पसंद आता था. और एक बड़ी फैसिनेटिंग बात आपको बताऊं, बिकॉज देयर वाज नो विजुअल, ब्रॉडकास्टर्स हैड टू क्रिएट पिक्चर्स विद साउंड, जैसे कि डोर ओपनिंग, फुटस्टेप्स, या फिर टेलीफोन रिंगिंग. थंडर हुआ तो रेडियो जॉकी को ही अपनी आवाज में वो थंडर की आपको फीलिंग देनी है. ट्रेन चल रही है, क्राउड है, म्यूजिक है, ये सब ह्यूमन वॉइस से बनाया जाता था. रेडियो ड्रामा टॉट द वर्ल्ड समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, that you don't always need to see something to experience it. Your imagination becomes the camera for you. That's what radio does to us.

प्रणव, थैंक यू सो मच हमें इतना खूबसूरत गाना याद कराने के लिए, टेकन फ्रॉम द मूवी आजा मेरी जान. और रेडियो का सिलसिला, रेडियो के बारे में बातें, जरा थोड़ा आगे बढ़ते हैं. 1950s और 60s के दौर में आप कह लीजिए कि दिस इज़ व्हेन रेडियो की अपनी पर्सनालिटी थी, रेडियो की अपनी एग्जिस्टेंस थी. और ना सिर्फ रेडियो बल्कि अब बन गए थे स्टार्स थ्रू रेडियो, एंड देवर द रेडियो डीजेस या रेडियो जॉकीज. म्यूजिक सिर्फ रेडियो की एक बिगेस्ट अट्रैक्शन नहीं रहा था. न्यूज़ ये सब तो रेडियो पे ऑब्वियसली मोड ऑफ कम्युनिकेशन तो था ही, लेकिन डीजेस या जो आरजेस थे रेडियो के, वो बन गए थे लोगों के लिए एक कनेक्शन पॉइंट. दे वर क्रिएटिंग अ रिलेशनशिप विद द ऑडियंस. दे इंट्रोड्यूस सॉन्ग्स, दे टॉक्ड अबाउट आर्टिस्ट, दे मेड जोक्स, दे टुक रिक्वेस्ट, और साथ ही साथ दे रेड डेडिकेशंस और कॉन्टेस्ट भी करते थे. और स्लोली एंड ग्रेजुअली द पर्सनैलिटी बिहाइंड द माइक्रोफोन बिकेम जस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज द म्यूजिक. तो जी ना सिर्फ ये कि डीजे का या आरजे को लोग नाम से जानने लगे, उनको उनके स्टाइल से, उनके कैच फ्रेज से, उनकी पर्सनालिटी से जानने लगे. और सडनली जैसे ही एक जुमला वो कैच फ्रेज को आरजे आके बोलता है, या डीजे उस जमाने में बोला जाता था, डीजे आके बोलते थे, तो लोग पहचान लेते थे कि ये किसकी आवाज़ है. जैसे अभी जब हम आपकी रेडियो की मेमरीज सुन रहे थे, तो श्रेया जी ने बताया कि अमीन सियानी साहब मुझे आज तक याद हैं. ये वो आवाज़ थी, उनकी पर्सनालिटी का जादू था, जिससे वो कनेक्शन उनका आज भी कह लीजिए आप 50 साल बाद भी बरकरार है. सो दैट इज व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ दोज प्रेजेंटर्स बिहाइंड द रेडियो. तो आपका कौन सा फेवरेट, किस जमाने का आरजे है, आप मुझे बता सकते हैं. 9722355555.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Yaar, modern Manga Sutra dhoonte dhoonte thak gayi hoon.
7: To Carrot Lane chalo, they now have a store in Frisco and the best collection of modern Manga Sutras.
6: Seriously? Kaisa collection hai?
7: Minimal, diamond, elegant, everyday styles. You will probably spend more time choosing than shopping.
8: Find the Mangalsutra that matches your style at Carrot Lane, home to the largest collection of modern Mangalsutras. Carrot Lane, now open in Frisco next to Tanishq.
9: सुनो, कल बहुत काम है. पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली. कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे.
10: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
9: कहाँ?
11: फूडिस्तान इन ऑबरी. फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, केटरिंग सर्विसेज, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी. एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइव, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर.
12: फूडिस्तान इन ऑबरी. मेंशन फन एशिया एंड एंजॉय 10% डिस्काउंट.
13: एक्सीडेंट के बाद इंश्योरेंस कंपनी से डील करना बहुत मुश्किल हो गया था. ना वो हेल्प कर रहे थे, ना मुझे समझ आ रहा था कि क्या करूं. आई फेल्ट कम्प्लीटली स्टक. फिर मैंने ओमर ख्वाजा टीम को कॉल किया और सब कुछ चेंज हो गया. उन्होंने सारे कॉल्स हैंडल किए, मेरी तरफ से बात की और इंश्योर किया कि मुझे फेयर ट्रीटमेंट मिले. हर स्टेप पे मुझे अपडेट किया, सब कुछ क्लियरली समझाया और मेरी टेंशन कम कर दी. उन्होंने मेरी केस के लिए सच में फाइट की और आज मैं दिल से थैंकफुल हूँ.
14: कॉल नाउ टू 833-GET-OMAR, द लॉ ऑफिसेज ऑफ ओमर ख्वाजा. आपका हक, उनके जिम्मेदारी.
15: जीनी, हुकम मेरे आका. हम आज पार्टी के मूड में हैं. एक ऐसी जगह बताओ जहाँ मेरी एंट्री ही रॉयल हो.
16: मिराज लाउंज, चलिए मेरे आका. लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में है.
15: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं.
16: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए.
15: और एंटरटेनमेंट?
16: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स, सब आपकी खिदमत में.
15: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
16: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे. मिरेकल्स हैपन इन मिराज.
17: द बिगेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव योर चाइल्ड इज द गिफ्ट ऑफ कॉन्फिडेंस. I, Sunhee Simon Santiago, and my co-founder, Audra Langston, have coached debate champions, valedictorians, and Ivy League grads. We've created an online 3rd through 6th grade course that isn't just a public speaking class. It's a guide for building lifelong leaders. For more information, visit NextGenSpeakersAcademy.com. That's NextGenSpeakersAcademy.com.
18: अरे, तीन पे क्यों अटक गया?
19: क्योंकि साल्स हॉट चिकन भी तीन पे पहुंच गया.
20: प्लेनो रिचर्डसन, एंड नाउ एट अ ब्रांड न्यू लोकेशन. साल्स हॉट चिकन, कमिंग सून.
21: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी, एंड ए लाइफ टाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज. अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज, एन अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड. अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फन एशिया रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस.
20: चौकटा कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर. मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली.
22: मेरे कल वाले खाने में दोसा,
0: आने वाले खाने में डोसा।
1: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? योर सर्च एंड्स हियर।
21: फैन इडली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट 100% प्योर वेजिटेरियन मेड विथ फ्रेश ऑथेंटिक फ्लेवर्स, क्रिस्पी डोसास, फ्लफी इडलीज, कम्फर्टिंग साउथ इंडियन थाली और साथ में शहर की बेस्ट फिल्टर कॉफी। फैमिली डिनर्स टू केटरिंग सर्विसेज विद जैन फ्रेंडली ऑप्शंस।
1: विजिट फैन इडली वेज रेस्टोरेंट एट द हाईवे 121 और कस्टर जंक्शन।
0: हीरे मोती मैं चाहूं।
22: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। Luxury Brilliance Celebration, Tanmay Jewelers in Irving.
23: Hi, this is Shraddha Pandit and you're tuned into Fun Asia Radio.
24: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल, Fun Asia 104.9 FM.

0: You're tuned into 104.9 FM Fun Asia Radio. This is your afternoon drive time with the Sunehri Kiran. Thank you so much for connecting with me this afternoon. Aur ab waqt aa chala hai hamara aapke saath connect karne ka. Pakistan Society of North Texas ki joint treasurer Jia Ahmed, jo hame batayengi ki Pakistan Society of North Texas hamare liye kaun sa qayad mela 2026 lekar aa raha hai, kahan hai ye event aur aap kyun use miss nahi kar sakte. Let's welcome Jia on the airwaves of Fun Asia. Hello and assalamu alaikum, Jia. Kaisi hain aap?
1: Assalamu alaikum, Kiran. Kaisi hain aap? Thank you so much for having me here.
0: Absolutely. Walaikum assalam. Bataiye, Jia. Kuch bataiye hame Qayad Mele ke baare mein, kahan ho raha hai aur kya kya hone wala hai is event mein?
1: Pakistan Society of North Texas warmly invite you and your family and friends for Qayad Mela, and we are celebrating this one on South Fork Ranch, Saturday, August 22nd. Bring your family and friends, and hum sab milke Pakistan ki khushiyan, culture aur community spirit celebrate karenge wahan pe.
0: There you go. Ek baar phir aapko batate chalein ki ye event hone wala hai South Fork Ranch mein. That is August 22nd. Do din reh gaye hain, matlab daily din keh lijiye, to pahunch jaye. Jia, kitne baje se kitne baje tak ye event hone wala hai?
1: शाम 5 बजे से लेके मिडनाइट तक है, और हमारा जो म्यूजिक ग्रुप है रागा सूफी बैंड है, रागा बैंड, वो आ रहे हैं. दे आर सेलिब्रेटिंग विद अस, और बहुत सारे अच्छे सॉन्ग्स हैं, गेम्स हैं बच्चों के लिए, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, और क्वेश्चन आंसर्स हैं, बहुत सारे बूथ्स, सब कुछ है वहां पे.
0: चलिए जी, जबरदस्त. तो हमें जिया ने एक मौका दे दिया है पाकिस्तान की जश्न आजादी सेलिब्रेट करने का. पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सस हमारे लिए ये इवेंट लेकर आ रहे हैं. जिया हमारे साथ मौजूद थी, और वी विल सी यू जिया देयर ऑन सैटरडे, राइट?
1: यस, इंशाल्लाह. सी यू ऑल.
0: एब्सोल्युटली. थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस, एंड वी विल टॉक टू यू नेक्स्ट टाइम. ऑलराइट जी, दैट वाज द इवेंट. अभी जब ब्रेक से वापस, इस गाने से वापस आएंगे, तो मैं आपको थोड़ा और बताऊंगी इस इवेंट के बारे में. देयर इज सो मच दैट इज लाइंड अप फॉर यू.

And this next message is for all the business owners in Texas. अगर आप Texas के business owner हैं and you're looking for smarter commercial energy solutions, तो मैं आपको बताती हूँ जी, Tara Commercial Energy is where you should definitely contact at least. अपने सवाल कीजिए. There's no harm in contacting, asking your questions and getting the answers. They are proudly serving Texas businesses since 2002. Competitive rates हैं उनके, reliable service है और सबसे important बात, they customize the energy plans around your needs. So all you have to do is give them a call and talk to them. That number is 844-428-2808. The number again is 844-428-2808. या फिर आप उनकी वेबसाइट विजिट कीजिए, विच इज taraenergy.com, TARA taraenergy.com. बातों का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहां से रुका था या मुनकता हुआ था, और वो था कि हम रेडियो, नेशनल रेडियो डे आज सेलिब्रेट करते हैं, तो मैं आपको बता रही थी कि कैसे फिर रेडियो जॉकीज जो हैं वो लोगों की जिंदगी का हिस्सा बने लगे. रेडियो सिर्फ म्यूजिक का माध्यम नहीं रह गया, बल्कि देयर कनेक्शन विद द पीपल दैट वाज सिटिंग बिहाइंड द माइक्रोफोन्स वाज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पीपल्स लाइव्स. उसके बाद आप कह लीजिए 70s और 80s का एरा आया रेडियो में, जिसमें FM रेडियो इंट्रोड्यूस हुआ. FM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बताती चलूं जी. FM स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. ऑफर्ड दिस FM रेडियो स्टेशन टेक्नोलॉजी ऑफर्ड इंप्रूव्ड साउंड क्वालिटी एंड बिकेम स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर म्यूजिक ब्रॉडकास्टिंग ऑफकोर्स. और वहां से सारी कहानी बदल गई. म्यूजिक साउंडेड बेटर, स्टीरियो बिकेम इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट, रेडियो स्टेशन और ज्यादा स्पेशलाइज हो गए, एंड यू कुड फाइंड स्टेशन फोकस्ड ऑन रॉक म्यूजिक और पॉप म्यूजिक. मतलब अब जॉनर्स बनने लगे, क्लासिकल म्यूजिक, न्यूज, टॉक शोज के अलग रेडियो स्टेशंस बन गए, न्यूज के अलग स्टेशंस बन गए, अलग अलग कंट्रीज में स्टेशंस बनने लगे, एंड इवेंचुअली डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड डिफरेंट कम्युनिटीज ने अपने अपने रेडियोज को इंट्रोड्यूस करना शुरू किया. और रेडियो जो है वो एक, मतलब एक सिंपल रेडियो से बहुत पर्सनलाइज्ड हो गया, जैसे पर्सनल हो गया ना, मतलब इट्स वेरी पर्सनल. फनीश इज वेरी पर्सनल टू मी, सो इट स्टार्टेड बिकमिंग पर्सनल. एंड द 1980s का एरा अगर आप कहें तो 1980s ब्रॉट पर्सनालिटी रेडियो टू अनदर लेवल. दिस वाज द एरा ऑफ बिग पर्सनालिटीज, जैसे हमने अभी अमीन सियानी साहब की बात की, तारिक अजीज साहब, अगर आप पाकिस्तान का रेडियो शो सुनते हैं, बड़े बड़े नाम हैं हमारे पास. द मॉर्निंग शो बिकेम अ डेस्टिनेशन, द आफ्टरनून ड्राइव बिकेम अ हैबिट. रेडियो होस्ट जो हैं वो सेलिब्रिटी बन गए अपनी अपनी कम्युनिटीज में, उनको जाना पहचाने जाने लगा, एंड द रिलेशनशिप बिकेम इवन मोर इंटीमेट. यू डिडंट जस्ट लिसन टू द स्टेशन, you listen to the station because of the RJ.

और इस रक्षाबंधन, बस रक्षाबंधन आ रहा है जी, और इस रक्षाबंधन फनी एशिया रेडियो और चौकटाव कैसीनो एंड रिजॉर्ट इन ड्यूरेंट आपके लिए लेकर आए हैं जबरदस्त एक्साइटिंग डेली प्राइजेस एज वेल एज द ग्रैंड प्राइज. और दीज डेली प्राइजेस इंक्लूड डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टे, जबकि जो ग्रैंड प्राइज है दैट विल बी एन अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटाव कैसीनो एंड रिजॉर्ट इन ड्यूरेंट. तो आप इसका हिस्सा कैसे बन सकते हैं? तो फन एशिया और चौकटाव कैसीनो एंड रिजॉर्ट इन ड्यूरेंट सुनना चाहते हैं आपकी मोस्ट अनफॉरगेटेबल मेमोरी विद योर सिबलिंग. भाई या बहन किसी के साथ भी आपकी मेमोरी है कोई ऐसी जो आप शेयर करना चाहते हैं, तो एक मिनट की वीडियो बना, वॉइस नोट बनाए, वीडियो नहीं, आवाज की ही दुनिया में ही रहते हैं हम, तो आवाज वाली अपनी वॉइस नोट बनाइए एक मिनट की और सेंड कर दीजिए व्हाट्सएप के थ्रू इस नंबर पे. नंबर सबसे पहले आप नोट कर लीजिए 214-837-7147. इस पे आपने व्हाट्सएप करना है अपने एक मिनट का वॉइस नोट शेयरिंग योर अनफॉरगेटेबल मेमोरी विद योर सिबलिंग और भेज देना है, एंड देन यू कैन पार्टिसिपेट इन दीज, ऑटोमेटिकली पार्टिसिपेट इन दीज डेली प्राइजेस एज वेल एज द ग्रैंड प्राइज. कंप्लीट कॉन्टेस्ट डिटेल्स फन एशिया के सोशल मीडिया पेजेस पे मौजूद हैं. अगर आपने अब तक हमें फॉलो करना शुरू नहीं किया तो राइट नाउ इज द टाइम, स्टार्ट फॉलोइंग अस. चौकटाव कैसीनो एंड रिजॉर्ट वो जगह है जहां आप बनाते हैं जबरदस्त मेमोरीज. यू हैव टू बी 21 ईयर्स और ओल्डर टू पार्टिसिपेट. And there's terms and conditions apply, and while you are there, please play responsibly.

अच्छा जी, ये तो पूछ रहे हैं क्या कहती हो इस बारे में, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ आप क्या कहते हैं इस बारे में कि सोनू निगम आ रहे हैं, जी हाँ डालस आ रहे हैं, आपके लिए आ रहे हैं, कब आ रहे हैं? आ रहे हैं जी 26th of September, विच इज अ सैटरडे, शाम 8:30 बजे एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर इन एलन। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में, ले रहे हैं टिकट? फौरन जाइए, टिकट खरीदिए टिकट मास्टर पे। सोनू निगम इज लाइव इन कॉन्सर्ट, एक्सपीरियंस दिस इवेंट कॉल्ड Revolution Sonu Nigam Live. Fan Asia Network is the exclusive media partner. We are so happy to have him here. अगर आपका कोई भी सवाल है इस इवेंट को लेके तो मैं आपको एक नंबर दे रही हूँ, आप कॉल कर सकते हैं उस नंबर पे. That number is 855-360-SHOWS. 855-360-SHOW. इस पे कॉल कीजिए और अपने सवालों के जवाब पाइए. वंस अगेन, सोनू निगम कमिंग लाइव टू डैलस राइट हेयर इन क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर इन एलन ऑन सैटरडे सितंबर द 26th. तो फिर वंस अगेन क्या कहते हैं आप इस बारे में?

0: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
1: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
3: Weekend ka plan abhi tak nahi mila. First 90 minutes north of Dallas, Choctaw Casino and Resort, Durant mein, har visit ban jata hai ek winning experience. Poker ho ya blackjack, exciting slots ho ya phir 20 amazing restaurants mein zabardast dining. Aur agar break chahiye to luxurious sky tower or relaxing spa aapka intezar kar rahe hain. To sirf lucky feel mat kijiye, lucky ban jaiye. Choctaw Casino and Resort, Durant. Entertainment, luxury or excitement, sab ek hi destination mein. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
4: Beta, 95% aaye?
5: Haan, mummy.
4: Good. Ab chaliye, papa. Aap apna report card dikhaiye.
6: Mera?
4: Haan. Profit margin, cash flow, tax planning, business goals. Sare accounts updated?
6: Whoa.
7: School ka report card saal mein ek baar aata hai. But business ka report card har mahine. AG Fintax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
8: 2026 mein aapki rashi ke liye dhan aur safalta ke yog hain.
9: Arey sun, ye astrologer bol raha hai 2026 teri rashi walon ke liye bahut lucky hai.
10: Maa, real space ab lucky hi hote hain. Generic predictions सबको थोड़ी help करती हैं, तो फिर अगर real clarity चाहिए तो personalized guidance लो.
11: Guidance की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां astrology सिर्फ राशियों तक limited नहीं बल्कि आपकी personal journey के हिसाब से guide करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
10: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
12: Hocho.
13: It's Hoko.
14: अरे बस भी करो यार.
15: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है.
14: नाम होको हो या होचो क्या फर्क पड़ता है. एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा.
7: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको अब फ्रिस्को में. वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस. टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज.
16: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
17: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे.
16: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
17: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
16: सच में सब संभाल लेंगे.
17: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनोन्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
7: कॉल हरि बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.
18: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
7: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन अर्विंग.

मैं हूं किरण, आप सुन रहे हैं आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण राइट हेयर ऑन 104.9 एफएम फैन एशिया रेडियो. और ये गाना आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी मैक्सिमम, जिसमें हमें नजर आए सोनू सूद, नसीरुद्दीन शाह, नेहा धूपिया, डायरेक्टेड बाय कबीर कौशिक. और इस गाने में आवाज थी जी रागा बॉयज की. और ये गाना खास मैंने आपको सुनाया क्योंकि रागा बॉयज आ रहे हैं डालस में. पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास आपके लिए लेकर आ रही है शानदार कायद मेला 2026. ये होगी एक जबरदस्त सेलिब्रेशन ऑफ हेरिटेज, कल्चर एज वेल एज कम्युनिटी. तो आइए एंजॉय कीजिए. लाइव म्यूजिक होगा, ऑफकोर्स रागा बॉयज आएंगे तो लाइव तो होना ही है. अभी मैं आपको रागा बॉयज के बारे में भी बताती हूँ. खाना पीना बेहतरीन मिलने वाला है आपको वहां पे, तो खाली पेट आइए ताकि आप एंजॉय करें. अपना स्टॉल्स होंगे खाने के, साथ ही साथ शॉपिंग, अगर आप शॉपिंग पसंद करते हैं तो बहुत सारी शॉपिंग की ऑप्शन होंगी आपके लिए. सो ब्रिंग दोज वॉलेट्स एंड कीप दोज शॉपिंग स्पिरिट्स हाई. कल्चरल फेस्टिविटीज हो रही होंगी और साथ ही साथ आप ये कह सकते हैं कि इट विल बी अ फैमिली फन सेलिब्रेशन फॉर ऑल एजेस. और जो है सैटरडे को ये इवेंट हो रहा है, August 22nd, परसों, यानी कि बस डेढ़ दो दिन रह गए हैं. फ्रॉम 3 PM टिल 11:45 PM, 2 o'clock से डोर्स ओपन हो जाएंगे आपके लिए. तो यू कैन स्टार्ट कमिंग, यू कैन स्टार्ट एंजॉइंग दी फेस्टिविटीज, यू कैन स्टार्ट एंजॉइंग फूड एंड शॉपिंग एंड म्यूजिक दैट बी देयर. और कहां हो रहा है ये इवेंट? दिस इज हैपनिंग एट साउथ फोर्क रैंच इन पार्कर टेक्सास. तो जी, और बेहतरीन बात तो मैंने अभी आपको बताई ही नहीं कि कोई टिकट नहीं खरीदना आपको, कोई पार्किंग के पैसे नहीं देने. इट विल बी फ्री पार्किंग एंड एब्सोल्युटली फ्री एंट्री. अपने फ्रेंड्स के साथ आइए, अपनी फैमिली के साथ आइए और इन्जॉय कीजिए इस इवेंट को. दिस इज कायद मेला 2026, जिसमें हमारे साथ मौजूद होंगे ये जो मन कुंत मौला आप सुन रहे थे, इनके सिंगर्स रागा बॉयज, इनके बैंड का नाम है. मैं आपको रागा बॉयज के बारे में बताऊं कि एक पाकिस्तानी सूफी रॉक बैंड है ये, जो कि लाहौर से बिलोंग करता है, पटियाला घराने का ये बैंड है ऑफ क्लासिकल म्यूजिक. दिस बैंड कंसिस्ट ऑफ 3 brothers, नायाब अली खान, वली हामिद अली खान एंड इनाम अली खान. और ये बेटे हैं जी लेजेंडरी उस्ताद हामिद अली खान साहब के, और 9th generation ऑफ पटियाला घराना. अब ये सारी चीजें मैंने आपको इसलिए बताई कि आपको ये पता हो कि सिंगिंग का लेवल क्या होने वाला है इस कायद मेले पे. इसके बारे में तो जिक्र और तस्करा जरूरी ही नहीं, बल्कि पटियाला घराना ही काफी है ये बताने के लिए. तो बेहतरीन म्यूजिक, अमेजिंग क्वालिटी, साउंड क्वालिटी और गाने जबरदस्त एंजॉय करने के लिए आइए हमारे साथ. एंजॉय रागा बॉयज एट पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास कायद मेला 2026, हैपनिंग ऑन August 22nd एट साउथ फोर्क रैंच इन पार्कर टेक्सास, 3 PM टिल 11:45 PM. सी यू देयर. द प्राउड मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क. आई विल बी देयर फॉर श्योर.

अच्छा जी, हमारी बात आज का दिन तस्करा रहा द नेशनल रेडियो डे, और हमने पूरा 1920s से लेके और 90s तक का सफ़र कर लिया था. अब कुछ 90s से और 2000 तक का रेडियो का हम सफ़र करते हैं. ये वो दौर था जब हमने खुद जिस दौर को पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, द 90s. ये एक रेडियो के लिए बड़ा फैसिनेटिंग टाइम था. म्यूजिक रैपिडली चेंज हो रहा था, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही थी, रेडियो रिमेंड, लेकिन इस सारे जो म्यूजिक भी चेंज हुआ, टेक्नोलॉजी भी चेंज हुई, बट इस सब में रेडियो रिमेंड वन ऑफ द ईजिएस्ट वे टू डिस्कवर म्यूजिक. स्टूडियो इट सेल्फ वर इवॉल्विंग, कैसेट टेप्स वॉज जॉइंड बाई सीडीज, देन कंप्यूटर स्लोली स्लोली हमारी दुनिया में एंटर होने लगे और रेडियो प्रोडक्शन में एंटर होने लगे. एडिटिंग आसान होने लगी, म्यूजिक स्केड्यूलिंग ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होती गई, और रेडियो स्टेशंस जो हैं वो रिकॉग्नाइजेबल ब्रांड्स बनते गए. मतलब देयर गेम आल्सो गॉट बिगर एंड बेटर. और जो स्टेशन है वो अपने जिंगल से पहचाने जाने लगे. कई आपको जिंगल्स ऐसे प्ले होते हुए नजर आते हैं जिनसे पहचान हो जाती है कि ये बीबीसी का जिंगल है, या ये बीबीसी रेडियो का जिंगल है, या ये किस रेडियो का जिंगल, जैसे फन एशिया के अपने जिंगल्स हैं. सो यू न्यू द मॉर्निंग शो बाय इट्स होस्ट, यू न्यू द आफ्टरनून डीजेज, और साथ ही साथ यू न्यू एग्जैक्टली कि कौन से स्टेशन पे कितने बजे आपको कौन सा शो मिलने वाला है जो आपका बड़ा फेवरेट है. मुझे याद है जब मैं 90s में हम स्कूल कॉलेज में थे, और एक बड़ा पॉपुलर शो 12 बजे रात को आया करता था. वो शेर शायरी का शो होता था, और गजलें उसमें प्ले होती थी, और 12 बजे से लेकर 3 बजे तक या 4 बजे तक, जो कभी कभी हम पढ़ाई करने के लिए जाग रहे होते थे, और मैथ का कोई सवाल चल रहा है और आपको थोड़ा सा सूदिंग म्यूजिक भी चाहिए, तो वो मेरा फेवरेट शो हुआ करता था. 12 बजे रेडियो हम ऑन कर लेते थे, और साथ वो रेडियो चलता रहता था, और साथ जो है वो पढ़ाई हमारी चलती रहती थी. सो पढ़ाई, रेडियो वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विद माई पढ़ाई बैक इन दोज डेज इन द नाइट, लगी रहती थी. तो ये था रेडियोस का वो 90s का दौर, और फिर 2000 से लेके आज तक का जो दौर आया, बिगेस्ट चैलेंज जो रेडियो ने फेस किया वो 2000 के बाद से किया. इंटरनेट आ गया, सडनली लोगों ने म्यूजिक को ऑनलाइन सुनना शुरू कर दिया, सॉन्ग्स डाउनलोड होने लगे, प्लेलिस्टें बनने लगी, यूट्यूब आ गया, स्ट्रीमिंग सर्विसेज आ गई, पॉडकास्ट आ गए, स्मार्टफोन्स, मतलब यू नेम इट एंड एवरीथिंग वाज देयर. लेकिन रेडियो फिर भी गायब नहीं हुआ. वो कैसे? ये बात इस गाने के बाद.

जी हाँ, इतनी सारी टेक्नोलॉजी के बीच रेडियो डिसअपीयर नहीं हुआ बल्कि इवॉल्व हुआ. स्टेशंस वेंट ऑनलाइन, लाइव स्ट्रीमिंग बिकेम नॉर्मल, लिसनर्स कुड हेयर देयर फेवरेट स्टेशंस फ्रॉम ऑलमोस्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड. जैसे कि फन एशिया को आप दुनिया में कहीं भी सुन सकते हैं. अगर आपने हमारी ऐप अब तक डाउनलोड नहीं करी तो जल्दी से कर लीजिए. फन एशिया रेडियो की ऐप जो है वो आपके साथ रहेगी और आप अपने फेवरेट शोज, अपने फेवरेट आरजेस को कभी भी जहां भी चाहे वहां सुन सकते हैं. तो जी, सोशल मीडिया ने जो आपके रेडियो जॉकीज हैं या डीजे आप उनको कह लीजिए, उनको कम्युनिकेट करने की इजाजत दी विद दी लिसनर्स इंस्टेंटली, टेक्सटिंग, फेसबुक, इंस्टाग्राम. सो सब लोग जैसे इवॉल्व हुए वैसे ही आपका रेडियो भी इवॉल्व हुआ. एंड टुडे रेडियो इज़न्ट रिस्ट्रिक्टेड टू द रेडियो रिसीवर ओनली. यू कैन प्ले इट इन द कार, फोन, कंप्यूटर, हेडफोन, स्मार्ट स्पीकर, कहीं भी. और फिर ऑफकोर्स पॉडकास्टिंग. पॉडकास्ट्स हैव टेकन ऑन रेडियो इज वन ऑफ रेडियोज ओल्ड स्ट्रेंथ्स विच इज कॉन्वर्सेशन and expanded it into an on-demand format. और अब तो आपको सुबह 8 बजे ही लॉग इन करने की जरूरत नहीं है. कभी भी लॉग इन करके आप लाइव आप पॉडकास्ट सुन सकते हैं जो आपके लिए पड़ी हैं, आज, कल, परसों, जो भी. टेक्नोलॉजी बदली, तरीके बदले, लेकिन इम्पैक्ट वही रहा या थोड़ा सा और स्ट्रॉन्गर हो गया. दिस वॉज द जर्नी ऑफ द रेडियो. नेशनल रेडियो डे पे हमने इस जर्नी को डिस्कस किया. 1920s से लेके आज तक रेडियो ने हमारी जिंदगी में क्या रोल प्ले किया. ऑल इन ऑल, रेडियो इज हियर टू स्टे. तुम चिकन डाका चिकटा तुम चिकन.

और इसी के साथ इट इज टाइम टू गिव यू द करेंसी अपडेट. यूएस डॉलर कहाँ स्टैंड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू अदर करेंसीज इन द वर्ल्ड. द यूरो इज ट्रेडिंग एट 0.85, ब्रिटिश पाउंड 0.73, इंडियन रुपी 95.76, जबकि कैनेडियन डॉलर 1.37, पाकिस्तानी रुपी 277.55 पे ट्रेड कर रहा है, नेपालीज रुपी 153.29, जबकि बांग्लादेशी टका 122.22. बांग्लादेशी टकाज आर ट्रेडिंग फॉर 1 US डॉलर.

0: जी हाँ, और मेरा भी जो वक्त है आपके साथ वो हो चुका है अब खत्म. मैं मिलूंगी आपसे कल. थैंक गॉड इट्स फ्राइडे गाइस. बच्चा पार्टी रेडी हो जाइए. आई विल बी टेकिंग योर कॉल्स लाइव, योर रिक्वेस्ट, एंड साथ साथ वी हैव चिल्ला पार्टी, अ न्यू आरजे, प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा या मुन्नी सी कोई आरजे हमारे साथ होंगी और शो होस्ट करेंगी, मेरे साथ को होस्ट करेंगी राइट हियर ऑन द चिल्ला पार्टी ऑन किड्स जंक्शन. आई विल सी यू टुमारो 2:30 PM टिल 5 PM वंस अगेन एवरी डे मंडे थ्रू फ्राइडे. Stay tuned and enjoy the rest of your evening.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
4: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
5: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
6: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
7: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
8: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
9: Kahan gaya? Kahan rakha tha? Suno na, mera wo wala set kahan hai?
10: Kaun sa?
9: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
10: अरे सारे तो सेम है.
9: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला.
10: ओ हाँ, ये तो अलग है.
11: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
12: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर.
13: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
11: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
14: वेट, इतना सब और प्राइस?
11: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
15: मैं हीरो.
16: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
17: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
16: Kya matlab?
17: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
16: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
17: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
16: Ab to karna hi padega, madam.
18: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
19: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं. एवरीवन्स आस्किंग लंच में क्या है.
9: फिकर नॉट, वी हैव द perfect solution.
11: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday 12 PM to 3 PM. This weekend let the Flavor Lounge do the cooking.
8: Arre yaar, ghar mil gaya.
2: Ghar to dekh raha hoon, lekin it's hard to find a realtor who offers great service and also cashback at closing.
11: Isliye call karo Ajay Prabhu of Beam Real Estate. अजय इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर. वो सिर्फ घर नहीं दिखाते, हर प्रॉपर्टी का ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, प्रोज एंड कॉन्स समझाते हैं, बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करते हैं, बिल्डर इंसेंटिव दिलवाते हैं और क्लोजिंग पर कैशबैक भी.
2: सीरियसली, अच्छे सर्विस भी और कैशबैक भी.
11: बिल्कुल, विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई सो मेनी पीपल आर रेविंग अबाउट हिम.
5: अरे तीन पे क्यों अटक गया?
9: क्योंकि साथ हॉट चिकन भी.
19: लोकेशन पे पहुंच गया.
15: प्लेनो रिचर्डसन एंड नाउ एट अ ब्रांड न्यू लोकेशन. सैल्स हॉट चिकन कमिंग सून.
20: फ्लोर्स क्लीन
21: चेक.
20: विंडोज क्लीन
21: चेक.
20: किचन क्लीन
21: चेक.
20: एयर डक्ट्स क्लीन.
21: वेट, एयर डक्ट्स भी क्लीन करना होता है?
22: बिल्कुल, जो दिखता है वो तो हम क्लीन कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं दिखता उसका क्या? That's where Duck Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology. No roto brush. Plus dryer vent or chimney cleaning. Ghar ho, restaurants, hotels, offices, ya phir any business. Duck Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
23: भूख लगी
24: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
22: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू. ऑल अंडर वन रूफ एट पेज 3 ईटरी. ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग.
15: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट. यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू पेज 3, हब 121 मैकिनी.
25: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है.
26: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
15: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
27: तुमसे मिलके दिल का है.
26: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
15: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क.

ऑलराइट, किद्दा डालर्स, की हाल है, की हाल चाल है, कौन हूँ मैं? पारुल हूँ, आपकी अपनी होस्ट पारुल भाटिया. काफ़ी समय के बाद आई हूँ एंड सिटिंग इन फॉर आर ओन मार्विन दास, हूज आउट टुडे, सो सबिंग इन फॉर हिम एंड एंजॉयिंग दिस क्रेजी क्रेजी थर्सडे इवनिंग, बिकॉज इट फील्स सो क्रेजी जस्ट टू बी बैक ऑन टू टॉक टू यू गाइज. आई मिस्ड यू ऑल सो मच. इसी बात पे कोई ऐसी फीलिंग आ रही है जो कि मैंने आजकल एड्स भी सुने हैं और ये गाना हैज़ बीन लाइक स्टेइंग विद मी कॉन्स्टेंटली, कर लाइक रिंगिंग इन माई ईयर्स एंड आई थॉट व्हाई नॉट. इट फील्स लाइक वन ऑफ दोज इवनिंग्स विच इज़ लाइक अ तंदूरी नाइट. सो आई एम गोना प्ले दिस सॉन्ग फॉर यू. और इसी बात से मुझे ये भी लगा कि हिमेश रेशमिया के एक दो और गाने मैं आपके लिए प्ले करने वाली हूँ आज. उसके साथ साथ आई हैव अ फ्यू सॉन्ग्स लाइंड अप फॉर यू फ्रॉम मिक्का. तो आप वाइब समझ गए होंगे, उस तरह का मूड है कि मस्ती हो और इतना हंगामा हो कि 5 to 7 आपको किसी की याद ना आए, बस मस्ती करिए आप मेरे साथ. विद दैट, तंदूरी नाइट्स ऑन एयर फॉर यू. नॉट येट, इट्स कमिंग अप बिकॉज द अदर सॉन्ग वॉज प्लेइंग बिफोर एंड हियर इट इज. ऑलराइट.

Yes, the song I find it so catchy. अगर मैंने आपसे सवाल पूछा होता कौन सी फिल्म है तो आपने शायद बताया होता कर्ज. और इस फिल्म में खुद इस गाने में हिमेश रेशमिया के साथ हैं उर्मिला मातोंडकर. और ये कौन गा रही हैं ये भी I'm sure you would have answered that. And it was Sunidhi Chauhan. I did not ask you that because there is a quiz coming your way, a giveaway around 5:45 after the 5:40 break, and another one coming out at 6:15. So mark the timings and the cool giveaways aa rahe hain aapke liye listeners. You know what, life is either a daring adventure or nothing at all, said Helen Keller. Like Bertrand Russell said, the time you enjoy wasting is not wasted time. Indeed, lighten up, just enjoy life, smile more, laugh more. When you arise in the morning thinking of what a precious privilege it is to be alive, just being alive is enough, don't you think listeners? It is not how much we have but how much we enjoy that makes happiness. So let's count it. Let's count each moment in our lives and let's make it happening. क्योंकि मैं कहती हूँ ना कि ये लाइफ में जो हैपनिंग जो मोमेंट्स होते हैं अगर आप फनीजिया के साथ जुड़ के और सेलिब्रेट करें तो और मज़ा आता है. और इसी बात पे एक और गाना हिमेश रेशमिया की आवाज़ में, साथ में हैं सुनिधि चौहान और उनकी आवाज़ है. और फिल्म आप गेस कर सकते हैं, ये वैसे क्विज नहीं है तो मैं बता ही देती हूँ, 36 China Town. Aur ye gana bahut famous hua tha. Let's hit it right here. And before that, yes, I do have some information, important information for all you lovely listeners. Discover Himalayan Bazaar in Grand Prairie, serving the entire South Asian community with authentic groceries, fresh produce, premium halal meats, and everyday essentials. Enjoy hot samosas, pani puri, masala chai, and coffee while you shop. Competitive prices, free delivery on orders over $50 within 5 miles, and loyalty rewards with every purchase. Just off of Highway 360 South at 5103 Magna Carta Boulevard, Grand Prairie, Himalayan Bazaar, where every aisle feels like home. Ye sunke hi mera to mood ho raha hai wahan jaake chai aur samosa. Chalo isi bahane us taraf का एक यू नो मौका मिल जाएगा वहाँ जाने का. आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया. हिमालयन बाजार, ये ग्रैंड प्रेरी में है. डू गिव इट अ शाउट आउट एंड डू ट्राई इट. विद दैट द सॉन्ग इज हियर वेटिंग वेरी वेरी एंशियसली फॉर यू.

0: Thank you, listeners, for your calls. Totally love them.
1: देसी फ्लेवर्स भी और टेक्सास के फेवरेट्स भी अब सब कुछ मिलेगा एक ही जगह HEB में सोना मसूरी राइस नानक पनीर पाले जी बिस्किट्स और बहुत कुछ वही ऑथेंटिक स्वाद जिसके साथ आप बड़े हुए हैं और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो आपको यहां पसंद है अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सीरीज अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स HEB हियर एवरीथिंग इज बेटर
2: Texas Parivar, kya aapko pata hai, there is a first-time home buyer program under Fannie and Freddie for conforming loans that helps you to get better rates by almost half a point to 1%. So call kijiye Kamna ko at 214-845-4189 kyunki aapka bharosa hi meri pehchan hai. NMLS 96641.
3: Party is on everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights bhi.
4: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway. Cause miracles happen in Mirage.
5: Beta, 95% aaye?
6: Haan, mummy.
5: Good. Ab chaliye, papa, aap apna report card dikhaiye.
7: Mera?
5: Haan. Profit margin, cash flow, tax planning, business goals. Sare accounts updated.
7: Whoa.
8: School ka report card saal mein ek baar aata hai. But business ka report card har mahine. AG Fintax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG Fintax led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
9: Ya pehle us aadmi ka sign lekar aao jisne mere haath pe ye likh diya tha.
10: Sign milna mushkil hai, lekin Plano mein zabardast khana, uska signature mil gaya. Signature cuisine in Plano. Famous nihari, sizzling grills, crispy fried chicken or mouth-watering parhatha rolls. Aur koi bhi celebration ho, to banquet services bhi. Located at Spring Creek and Alma, East Plano. Visit signaturecuisine.net. Signature Cuisine. Har taste par, apna signature.
11: Dad, property papers kahan hai?
12: Laptop mein.
11: Investment?
12: Google Drive.
11: Insurance? Passwords?
12: Beta, don't worry. Mujhe sab pata hai.
11: Dad, वही तो प्रॉब्लम है सिर्फ आपको पता है
13: योर फैमिली शुडंट हैव टू सर्च फॉर आंसर्स व्हेन यू आर नॉट देयर टू गिव देम
14: हाय दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ विद प्रॉपर एस्टेट प्लानिंग प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव बिल्ट एंड गिव योर फैमिली क्लैरिटी एंड कंट्रोल
13: कॉल 669-243-5799 दैट्स 669-243-5799 और विजिट nriwealth.com फॉर अ फ्री 15 मिनट कंसल्टेशन NRI वेल्थ डोंट लीव अ मेस लीव अ प्लान
15: अरे तीन पे क्यों अटक गया
16: क्योंकि साल्स हॉट चिकन भी तीन पे पहुंच गया
13: प्लेनो रिचर्डसन एंड नाउ एट अ ब्रांड न्यू लोकेशन साल्स हॉट चिकन कमिंग सून
17: गिव योर चिल्ड्रन द गिफ्ट ऑफ स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग एंड कल्चरल आइडेंटिटी थ्रू चिन्मया मिशन्स बालविहार प्रोग्राम Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balvihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.

इंडीड आज हिमेश रेशमिया को हम कवर कर रहे हैं. उनका बर्थडे एक्चुअली अभी गया है July 23rd को. इतना दूर भी नहीं है देखा जाए तो. अभी एक महीने भी नहीं हुआ उनके बर्थडे को. सो व्हाई नॉट सेलिब्रेट हिम टुडे अलोंग विद अ फ्यू मोर यू नो स्टार्स, फ्यू मोर सिंगर्स, एक्टर्स. उनकी उम्र है 53 इस वक्त. मुंबई में वो पैदा हुए. जॉनराज हैं उनके डिस्को, पॉप म्यूजिक, रॉक म्यूजिक, बॉलीवुड, इलेक्ट्रॉनिक, डांस म्यूजिक एंड भजन. म्यूजिक डायरेक्टर हैं, लिरिसिस्ट हैं, कंपोजर, प्लेबैक सिंगर, सॉन्ग राइटर, एक्टर, राइटर, फिल्म प्रोड्यूसर, एज वेल एज ही इज डेफिनेटली आई वुड से इन अ लॉट ऑफ मूवीज. ही ऑल्सो मेक्स अपीयरेंसेस. टेलीविजन पर्सनैलिटी हैं. बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं उनको, वोकल्स, तबला, ढोलक एट्सेट्रा, गिटार, हारमोनियम, सैक्सोफोन, यू नेम इट. ही इज़ वेरी वेरी टैलेंटेड एंड वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट हिमेश रेशमिया क्योंकि आज मुझे उनका वो गाना तंदूरी नाइट, तंदूरी नाइट से समहाउ मेरी मॉर्निंग शुरू हुई. आई जस्ट थॉट अबाउट दैट सॉन्ग बिकॉज आई बीन हियरिंग इट ऑन द रेडियो एंड आई फेल्ट चलो व्हाई नॉट टॉक अबाउट हिम. यू नो द फेमस प्लेराइट, अमेरिकन प्लेराइट, हर नेम इज ईव एंसलर. She said something really interesting about life. She said, cherish your solitude. Take trains by yourself to places you have never been. Sleep out alone under the stars. Learn how to drive a stick shift. Go so far that you stop being afraid of not coming back. Say no when you don't want to do something. Say yes if your instincts are strong, even if everyone around you disagrees. Decide whether you want to be liked or admired. Decide if fitting in is more important than finding out what you're doing here. Believe in kissing. That's Eve Ensler. Lovely quote I want to share with you. Aur isi ke saath saath, yes, giveaway aa raha hai. Ek interview bhi aa raha hai Ura ka. Aur ek aur giveaway bhi aayega 6:15 baje. Lekin saath saath life ke important baatein bhi main sabko batana chahti hu ki Texas Star Rehab के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ. टेक्सास स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर इज प्राउड टू अनाउंस आवर न्यू स्टेट ऑफ द आर्ट फ्रिस्को लोकेशन. फ्रॉम ऑर्थोपेडिक एंड स्पोर्ट्स इंजरीज टू पेल्विक फ्लोर थेरेपी, मसाज थेरेपी, जेरियाटिक रिहैबिलिटेशन, स्पोर्ट्स मेडिसिन, रेड लाइट थेरेपी एंड फंक्शनल न्यूट्रिशन, दे डिलीवर पर्सनलाइज्ड वन ऑन वन केयर डिजाइन टू हेल्प यू परफॉर्म एट योर बेस्ट. ट्रस्टेड बाय प्रोफेशनल एथलीट्स, एंटरटेनर्स and community leaders, they believe every patient deserves VIP treatment. Visit TexasStarRehab.com to schedule your consultation today. Conveniently serving Frisco and Irving, Texas Star Rehab and Performance Center, move better, feel better, as well as live better. अब नेक्स्ट गाना उनका जो हिमेश रेशमिया का May 2026 में ब्रांड न्यू गाना जो रिलीज हुआ है उसका नाम है शराब. और ये मैं आप लोगों के लिए अप्ले करने वाली हूँ. लेट्स हिट इट राइट हियर.

एंड ये इस गाने में हिमेश रेशमिया तो है ही. He features a lot in his own songs with his very iconic, cap that he wears. Unke saath hai Manushi Chiller. Aap unko recognize karenge. If you see her, there are like many, many songs she's come in. She might have come in a movie too, but she's definitely like a model and she's come in music videos. Her name is Manushi Chiller, yeah. तो ये आपने सुना गाना लेटेस्ट जो है हिमेश रेशमिया जी का गाना. और यही नहीं, ही हैज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द पाइपलाइन. दैट्स व्हाई आई थॉट इनको डेफिनेटली कवर करना ज़रूरी है, क्योंकि एक उनकी अपकमिंग फिल्म में जहाँ वो साउंड ट्रैक प्रोजेक्ट्स हैं उनके, एक तो उनकी खुद अर्जुन नागा में उन्होंने सिक्योर किए हैं म्यूज़िक राइट्स फॉर दिस अनिल शर्मा डायरेक्टेड मूवी विद म्यूज़िक कंपोज बाय हिमेश रेशमिया, अर्जुन नागा. ऊपर से एक और फिल्म आ रही है, ये प्रेम मोल लिया, और ये है आपकी सूरज बरजातिया फैमिली एंटरटेनर स्टारिंग आयुष्मान खुराना एंड शर्वरी. ये नवंबर 27 को रिलीज़ हो रही है. ये प्रेम मोल लिया नाम भी बहुत अच्छा है. इसमें भी हिमेश रेशमिया का म्यूज़िक होने वाला है. और गन मास्टर G9 हैंडलिंग म्यूज़िक राइट्स फॉर द अपकमिंग एक्शन फिल्म रीयूनाइटिंग हिम विद नन अदर दैन इमरान हाशमी एंड आदित्य दत्त. तो काफ़ी इनकी पाइपलाइन में है मूवीज़. एंड डेफिनेटली ये शराब जो अभी आपने नया ट्रैक इनका सुना वो भी काफ़ी कूल सा था. उनके गाने तो डेफिनेटली कूल होते हैं. एक और फिल्म, एक और उनका जो एक पर्सनल एल्बम है जिसका नाम है हिमेश के दिल से, उनका फर्स्ट ट्रैक है प्यार करूँ, which is sung by Mohammed Faiz. It is set to release on September 23rd, 2026. And now I'm going to play another single track of his. It is called Dilli Ki Garmi. Ab main to kahungi Dallas Ki Garmi aisi bhayankar ho gayi hai. Uff, jaise ki Dilli Ki Garmi bhayankar thi. I think Dallas ne Dilli ko peeche chhod diya hai. And I think Himesh Rishamiya ko ek gana banana chahiye, Dallas Ki Garmi. Ya hamare paas Dallas mein itne talented music, directors hain, singers hain. I'm giving you an idea. And you can give me a cut if you make that Dallas Ki Garmi. Do it.

0: तो डेफिनेटली थोड़ी ठंड पाइए, ऐसे रहिए कि बस ठंडक रहे, और लाइफ में चाहे एसी चलता रहे, कूलर चलता रहे, फैन चलता रहे, क्योंकि यू नो व्हाट, जैसे कहा है दिस रिलीजियस लीडर फ्रॉम द चर्च, अमेरिकन चर्च, ही सेज, गॉर्डन बी हिंकली इज हिज नेम, ही सेज, आई रियली लाइक दिस कोट, ही सेज, स्टॉप सीकिंग आउट द स्टॉर्म्स एंड एंजॉय मोर फुली द सनलाइट. Something simple, but something like a reminder. Stop seeking out the storms and enjoy more fully the sunlight. And he also says, our lives are the only meaningful expression of what we believe and in whom we believe. He said, you can't build a great building on a weak foundation. Be happy, enjoy the ride, and have the courage to do the right thing. That's Gordon B. Hinckley. He passed away in 2008, born in 1910, a religious leader and the author who served as the 15th president of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. There's a lot to learn from people. Just have, aise se kehte hain na ki aankhein khol ke rakhni chahiye, kaan khol ke rakhne chahiye aur muh thoda band rakhna chahiye. लेकिन अगर आप गांधी जी के प्रिंसिपल्स पे जाएंगे तो बुरा मत सुनिए, बुरा मत कहिए और बुरा मत देखिए, लेकिन अच्छी चीज़ें देखिए, अच्छी चीज़ें सुनिए. विद दैट लिसनर्स, आपके साथ साथ और भी बातें होंगी, और भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन लेके आने वाली हूँ. एट द सेम टाइम आपको जो जानकारी मैंने अभी दी थी उसके बारे में फिर से कॉल आया, टेक्सास स्टार रिहैब, जी हाँ, आप वहाँ संपर्क कर सकते हैं. ये फ्रिस्को में भी है और ये आपके, ये इट हैंडल्स अ लॉट ऑफ डिफरेंट इंजरीज. इट्स कॉल्ड टेक्सास स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर, एंड फ्रिस्को में भी ये नई लोकेशन खुल गई है. एंड लिसनर्स, विद दैट, जहाँ हेल्थ की बात हो रही है, आपको बता दूँ दैट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के बारे में ये जानकारी बहुत ही ज़रूरी है. पहली बात तो उनका नंबर है 214-666-6259. आप ये नंबर नोट कीजिए क्योंकि आप उन्हें कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं. लेकिन व्हाट इज दिस पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, हाउ मच टाइम डज योर डॉक्टर स्पेंड विद यू इज अ क्वेश्चन आई एम गोना आस्क. 5 minutes, 10 एट द मोस्ट. एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर एवरी अपॉइंटमेंट इज स्केड्यूल्ड फॉर 30 minutes, बिकॉज ट्रूली अंडरस्टैंडिंग योर हेल्थ टेक्स टाइम. Because at Passion Health, you're not just a patient, you're family for them. For you, for your family, and for the health of our community, Passion Health Primary Care. 30 minutes is all it takes to complete your annual physical. Anxiety care, fibroscan for alcohol-related liver concerns, vitamin B12 deficiency testing, and more are all available at Passion Health. Schedule your appointment today. The number is 214-666-6259. Book your appointment. Again, Passion Health Primary Care. Your health is our passion. With that, I have a next song totally lined up. Aur ye gana ja raha hai especially Safi ko. Safi, I hope you are having a wonderful evening. Is waqt mein Himesh Rishamia ke gaane chala rahi hoon. और ये गाना बहुत ही कूल है, लेकिन अभी छोटा सा ब्रेक आने वाला है. आफ्टर दैट वील बी बैक फॉर अ सॉन्ग.
1: हीरे मोती मैं ना चाहूं.
2: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर. तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर. चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो, या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट. लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग.
3: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है. चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग, फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी. फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस. फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग, एजेस 8 एंड अबव.
4: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को. विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 469-333-1099.
5: Mention Funasia and get 50% off on tryout session.
6: सुनो सुनो सुनो सारे मैकन्नी वाले सुनो, हाईवे 380 पर खुल गया है पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर. अब एनुअल फिजिकल के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, सेम डे अपॉइंटमेंट के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं, और पूरे परिवार के भरोसेमंद डॉक्टर्स की तलाश भी खत्म. सुनो सुनो सुनो, स्वास्थ्य का नया ठिकाना पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, अब मैकन्नी में हाईवे 380 पर।
7: एनुअल फिजिकल्स, प्रिवेंटिव केयर, सेम डे अपॉइंटमेंट्स, क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट और केयरिंग फिजिशियंस, सब एक ही जगह। कॉल टुडे और टेक्स्ट 2146666259।

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, ये बॉक्सेस उठा ले रे।
3: अरे, बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं, स्मार्ट लोग SFL वर्ल्डवाइड को बुलाते हैं।
2: अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो?
3: डॉक्यूमेंट्स, बॉक्सेस, पूरा घर रिलोकेशन, इवन कार ट्रांसपोर्ट
2: इंडिया तक।
3: सिर्फ इंडिया नहीं, विद इन USA और वर्ल्ड वाइड, कम्प्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज।
0: SFL वर्ल्डवाइड, घर हो, गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव, सब सेफली पहुँचता है। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
4: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa,

And welcome, listeners. आप लोग सुन रहे हैं थर्सडे इवनिंग एंड दिस इज होस्ट पॉल भाटिया कवरिंग इन फॉर मार्विन दास. बात हो रही थी हिमेश रेशमिया की और जो गाना नेक्स्ट में प्ले करने वाली हूँ वो जा रहा है सफ़ी को. ही वॉन्टेड अ सॉन्ग जिसमें सुनिधि चौहान की भी आवाज़ हो, तो ये गाने में उनके साथ हिमेश रेशमिया के साथ सुनिधि चौहान भी हैं. जो दो गाने मैंने पहले भी इससे पहले जो मैंने प्ले किए थे दो में उनके साथ भी उन्होंने गाया था. ही यूज़ टू सिंग अ लॉट विद हर. और इस गाने में है इमरान हाशमी, साथ में है उदिता गोस्वामी. लगी लगी इज द नेम ऑफ द सॉन्ग. मैं प्ले करने वाली हूँ थोड़ी देर में, बस पाँच ही मिनट में एक इंटरव्यू भी आने वाला है लिसनर्स. उससे पहले मैं आपको बताऊँ दैट देयर वाज अ ऑथर वॉल्टर फॉली. ही यूज्ड टू राइट चिल्ड्रंस बुक्स अबाउट हॉर्सेस. उनकी एक पर्टिकुलर जो बुक थी उसका नाम था द ब्लैक स्टैलियन, जो कि बहुत पॉपुलर हुई और उन्होंने बहुत सारे सीक्वल्स लिखे फिर हॉर्सेस एंड स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन. अब उनके बेटे स्टीवन लिखते हैं, ही इज़ नो मोर वॉल्टर फॉली. लेकिन उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात बोली. आज हम बात कर रहे हैं हाउ टू इन्जॉय लाइफ एंड हाउ टू नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्टॉर्म्स एंड रादर लुक फॉर द सनलाइट. तो ये कोटेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ बाय वॉल्टर फॉली. ही सेड आई बिलीव दैट हाफ द ट्रबल इन द वर्ल्ड comes from people asking, what have I achieved? Rather than, what have I enjoyed? I've been writing about a subject I love as long as I can remember, horses, and the people associated with them, any place, anywhere, anytime. I couldn't be happier knowing that young people are reading my books. But even more important to me is that I've enjoyed so much the writing of them. With that, Lagi Lagi going out to all you lovely listeners. डालर्स गर्मी थोड़ी कम करिए और इंजॉय करिए गाने.

0: And now, listeners, I'd like to welcome Mr. Aman on the airwaves of Funasia Radio. Welcome to the URA Debt Relief segment. Today, we have the pleasure of having URA Debt Relief Organization representative, Mr. Aman. He's going to tell us about URA Debt Relief programs. Hello, how are you doing, Mr. Aman?
1: All good. Funasia sunne wale sabhi listeners ko URA aur Aman ki taraf se ek baar phir se namaskar. So, dosto, ye mahina शुरू हुआ कब मिड से क्रॉस करता हुआ अब आखिरी पड़ाव पर जाने लगा है लेकिन अगर अभी भी बहुत सारे दोस्तों ने मिनिमम पेमेंट नहीं भरा है क्रेडिट कार्ड का तो जरा ठहर जाइए क्योंकि क्रेडिट कार्ड मिनिमम पेमेंट से उतरता नहीं है अगर आप चाहते हैं कि क्रेडिट कार्ड सच में उतर जाए आपका कर्जा माफ हो जाए तो URA को कॉल कर सकते हैं URA आपके क्रेडिट कार्ड चाहे वो पर्सनल हो बिजनेस के हो स्टोर के हो इन सारे कार्ड्स की एक पेमेंट बना देगा उसमें से आधे से ज्यादा कर्जा तो माफ ही हो जाएगा और without any interest, interest भी माफ हो जाएगा, principal आधा हो जाएगा, और जो बाकी बचेगा आधा, उसकी आसान से किस्तें बन जाएंगी। और number two, important ये bankruptcy नहीं है, ये settlement है, settlement through out of court हो जाएगा। और अगर इसके साथ साथ अगर आपका कोई personal loan भी है, या गाड़ी जो repossess हो गई है, गाड़ी कार भी हो सकती है ट्रक भी हो सकता है ट्रेलर भी हो सकता है जो भी हमारे दोस्तों के पास गाड़ियां अगर वो रिपोजेस हो चुकी हैं या टोटल हो गई हैं किसी कारण उसको भी आप नेगोशिएट करके माफ करवा सकते हैं तो सिंपल कीजिए ये काम कि आप URA को कॉल कीजिए अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन कीजिए हिंदी पंजाबी उर्दू अंग्रेजी किसी भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं आप हमसे बात कर सकते हैं हम आपको फ्री एनालाइज करके देंगे कि आप कितना पैसा आप इनिशियली बचा सकते हैं और कितना बाद में बचेगा उसकी सेटलमेंट के बाद आप डेट फ्री हो जाएंगे डेट फ्री होंगे तो स्कोर बढ़ेगा और आपका कर्जा अप्रूवल का रेट बढ़ जाएगा सो कॉल अस हमारा टोल फ्री नंबर है 1-888-888-9914 या फिर अपने दोस्त अमन मुझसे बात कर सकते हैं 916-776-3555
0: That's wonderful. आपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दिया आप ये बता सकते हैं कि आप कंज्यूमर्स एंड बिजनेस दोनों को सर्व करते हैं
1: कंज्यूमर्स और बिजनेस दोनों को सर्व करते हैं एज लॉन्ग एज दे आर अनसिक्योर्ड डेट कोई भी क्रेडिट कार्ड का डेट है कोई भी अनसिक्योर्ड डेट है कोई भी पर्सनल है क्रेडिट कार्ड बिजनेस के भी हो सकते हैं पर्सनल लोन्स हैं या बिजनेस के पर्सनल लोन्स हैं जो बिजनेस के लोन्स होते हैं जो कलेक्ट्रल नहीं है SBA लोन नहीं हम करते ऐसे लोन्स जो कलेक्ट्रल ना हो उनको नेगोशिएट करके माफ करवाया जा सकता है
0: तो साथ साथ आपको संपर्क किया जा सकता है आपकी वेबसाइट है URA that is oraa.org right
1: exactly तो कॉल कीजिए अभी 916-776-3555
0: that's wonderful anything else that you want to say before I let you go
1: Yes, यही कहना चाहूंगा कि मिनिमम पेमेंट करने से पहले कीजिए कॉल तभी आप पैसा बचा पाएंगे क्योंकि मिनिमम पेमेंट से आप अपना पैसा खराब कर रहे हैं मिनिमम पेमेंट आपका 40% इंटरेस्ट खा जाता है तो इससे बेटर आप कॉल कीजिए और आधे से ज्यादा कर्जा माफ करवाइए
0: और इवैल्यूएशन फ्री है
1: बिल्कुल इवैल्यूएशन फ्री है
0: दैट्स वंडरफुल थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस मिस अमन
1: थैंक यू
0: All right, looks like people were already calling him. That's wonderful. And you can save so much money. Once again, his number is, Mr. Aman's number is 916-776-3555. Lagi.

0: And now, listeners, SBA loan expert say, yani ki Mr. Shahid Panjwani, he's on the air. Hello, Mr. Panjwani, how are you doing?
1: I'm doing great. Thanks for having me.
0: आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो existing जो business owners होते हैं, उनको आप कैसे करते हैं सर?
1: So, हम हमेशा जब भी लोन की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि किसी को बिजनेस शुरू करना है,
0: जी.
1: किसी को बिजनेस खरीदना है, फ्रेंचाइज शुरू करनी है, फ्रेंचाइज खरीदनी है. We always talk about that, but we don't talk about that often about existing business owners. So I want to let existing business owners know how and what options do they have. जब भी business आप चला रहे हो, if your business is growing, you need money to grow. Maybe your business is slow, maybe you're waiting for some vendors to pay you or your customers to pay you, and there are people who operate business on 60, 90, 120 days of credit, then slow time, you still need money. Either way, what happens is, जब भी पैसे की जरूरत आती है, पहले से पता नहीं होता है. It's very short notice that you need the funds, and then most people, they try to max out their credit cards, or they, most business owners, they will go use their line of credits. Many times they will go get hard money loans, जो fast bank statement दिखा के जहाँ पे दो से तीन दिन में बहुत high interest rate पे funding मिलती है. We have term loan options, and many times when the term loan option comes to mind, business owner thinks कि यार इसमें बहुत time लगेगा, इसमें बहुत सारा paper work जाएगा, इसमें hard inquiry होगी, and I do not have that much time, and plus documentation का सोच के ही stress हो जाता है. So good news is, we have been doing this program for a while, and it has been very successful. So for existing business owners, if you have been in business for at least 12 months, and you need term loan, you need loan to grow your business, expansion, inventory, equipment, whatever may be the reason, we do not need your bank statements, we do not need your tax returns upfront. Again, we don't need your bank statements, we don't need your tax return. We do not do hard inquiry on your credit.
0: Okay.
1: And we can get you an answer, a loan proposal, in as little as under 10 minutes. All I need is, you call us and give us some basic information about your business, kitne times your business mein ho, kitne employees hai, employer ID number kya hai, aapka gross revenue kya hai, some basic preliminary info, and a soft credit pull will be done. There is no hard inquiry.
0: Okay.
1: Based on the soft pull, we can give you a loan proposal. Mm-hmm. And we basically close this funding three times more. Hamara jo national average, three times faster turnaround hai is particular loan mein. Aapko 10 year ka term loan milega.
0: Mm-hmm.
1: Koi prepayment penalty nahi hai. If you want to pay off early, then you can pay off. कोई कोलैटरल की रिक्वायरमेंट नहीं है. सो आउट एंड आउट इट इज अ वेरी हेल्पफुल प्रोग्राम फॉर एग्जिस्टिंग बिजनेस ओनर एंड वेरी इजी प्रोग्राम. सो इफ यू आर एन एग्जिस्टिंग बिजनेस ओनर लुकिंग फॉर कैपिटल, कॉल अस. वी गॉट दिस एक्सीलेंट प्रोग्राम फॉर यू विदाउट एनी हार्ड इंक्वायरी ऑन क्रेडिट एंड विदाउट एनी अपफ्रंट डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड. वर्थ केस सिनेरियो, अगर आप लेट्स से डिक्लाइन भी होते हो तो आपकी कोई क्रेडिट पे इंक्वायरी नहीं है, नो नीड टू वरी अबाउट इट. सेकेंड सिनेरियो इज, मेनी टाइम्स पीपल से कि हमने आपका लोन ये सब प्रोसेस कर दिया, आपके टर्म्स नहीं समझ में आए, इंटरेस्ट रेट समझ में नहीं आया, कंडीशन समझ में नहीं आई, वी डोंट लाइक दोज टर्म्स. ओके, स्टिल वी आर नॉट डूइंग अ हार्ड इंक्वायरी ऑन योर क्रेडिट, यू डिड नॉट प्रोवाइड अस एनी डॉक्यूमेंटेशन, सो देयर इज नथिंग टू लूज, इट्स अ विन विन सिचुएशन.
0: वेरी प्रॉमिसिंग
1: वे फॉर यू.
0: या या, वेरी प्रॉमिसिंग. दिस वॉज SBA लोन एक्सपर्ट शाहिद पंजवानी, और आपका नंबर है
1: 469817.
0: जी,
1: आई विल गिव माय डायरेक्ट लाइन.
0: ओके,
1: 817-786-3338.
0: That's wonderful. Thank you so much for joining us. This is sounding very promising. That was Mr. Shahid Panjwani from SBA Loan Expert.
1: Thanks for having me.
0: All right. Listen, एक छोटा सा ब्रेक आने वाला है, और ब्रेक के बाद कुछ गिव अवेज भी आने वाले हैं, कुछ सवाल जवाब होंगे आपसे, कुछ मैं पूछूंगी, और देखते हैं कि क्या पता चलता है, क्या आपको मिलता है. बस छोटा सा ब्रेक है, और वी गोना बी राइट बैक.
2: दिस इज द फन एशिया नेटवर्क. यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
3: Official tax and finance partner, AG FinTax.
2: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
3: In association with Passion Health Primary Care.
4: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
5: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
6: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
7: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: Shravan hame jodta hai Bhagwan se. Raksha Bandhan hame jodta hai apno se. Aur kuch rishte एक डोर से शुरू होते हैं और एक अनमोल निशानी के साथ हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। हर रिश्ता अपनी एक कहानी लिखता है और पीएमजे ज्वेल्स उस कहानी को देता है सोने की चमक, हीरों की रोशनी और क्राफ्टमैनशिप जो पीढ़ियों तक साथ रहे।
2: पीएमजे ज्वेल्स नाउ ओपन ऑन 13215 मेन स्ट्रीट फ्रिस्को।
9: जीनी हुकम मेरे आका, हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
10: मिराज लाउंज चलिए मेरे आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं।
9: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
10: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
9: और एंटरटेनमेंट,
10: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में है।
9: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
10: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
11: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़रवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य। एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेस्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर ओपन 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
12: सुनो, कल बहुत काम है। पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने हैं और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली। कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
2: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
12: कहाँ?
13: फूडिस्तान इन ऑबरी। फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, केटरिंग सर्विसेज, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइव एंड अपस्केल restaurant for the perfect family dinner.
2: Foodistan in Aubrey. Mention Fun Asia and enjoy 10% discount.
14: Mere kal wale khane mein dosa, aane wale khane mein dosa.
2: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? Your search ends here.
15: Fan Idli Vegetarian Restaurant, 100% pure vegetarian made with fresh authentic flavors. Crispy dosas, fluffy idlis, comforting South Indian thali aur saath mein shahar ki best filter coffee. Family dinners to catering services with Jain friendly options.
2: Visit San Idli Veg Restaurant at the Highway 121 or Custer Junction.
16: तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
17: लिया।
16: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
17: नहीं आया।
16: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर। नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास। कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-772. That's 972-863-772.
18: Visit www.sanadainc.com today.
19: अरे तीन पे क्यों अटक गया?
20: क्योंकि साल्स हॉट चिकन भी तीन पे पहुंच गया।
2: प्लेनो रिचर्डसन एंड नाउ एट अ ब्रांड न्यू लोकेशन, साल्स हॉट चिकन कमिंग सून।
21: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी एंड ए लाइफटाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड। अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837 7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फन एशिया रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस.
17: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर. मस्ट बी 21 ओल्डर टू पार्टिसिपेट. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली.
18: Number one hit station.
0: नंबर वन हिट स्टेशन विद दैट लिसनर्स. बातें हो रही हैं ऐसी इंस्पायरिंग लोगों की भी जो हमें इंस्पायर करते हैं टू लिव बेटर, टू इंजॉय लाइफ बेटर. और ऐसे एक सोल्जर हैं जिनका नाम है एरन लॉरेंसेन. इनके बारे में आपको बताऊं दैट ही इज अ फॉर्मर प्रोफेशनल सोल्जर एंड स्मॉल बिजनेस ओनर टर्नड ट्रैवल एडवेंचरर. ही रिजाइड्स विद हिज फैमिली इन द फुट हिल्स वेस्ट ऑफ कैलगरी अल्बर्टा कैनेडा, where he cherishes world-class craft beer, running painfully slow over long distances and living in the shadow of the Rocky Mountains. So you can understand that his life is relaxed. It's like this, where he lives mindfully. And they say, it's in those quiet little towns at the edge of the world that you will find the salt of the earth people who make you feel right at home. आई टोटली अग्री विद दैट. आप जब इंडिया भी जाते हैं, इंडिया पाकिस्तान कहीं भी बांग्लादेश, जब आप वहाँ जाते हैं जहाँ की इतनी क्रेजी लाइफ नहीं है, सिटी लाइफ नहीं है, थोड़ी ऐसी लाइफ है जहाँ लोग बस रह रहे हैं, जस्ट दिन पर दिन रह रहे हैं. दे आर जस्ट इन्जॉइंग लाइफ एट इट्स ओन पेस. वहाँ जो खाना वो देते हैं आपको, डोंट यू थिंक उसका एक अलग ही मज़ा है, एक अलग ही नमक होता है उसमें. वो नमक होता है नॉट रनिंग, नॉट मेकिंग यू रश, making you just savor that moment with them. That's what Aaron Lauritsen said in that quote. He also wrote 100 Days Drive, in which he says, life's trials will test you and shape you, but don't let them change who you are. 100 Days Drive, the great North American road trip mein unhone ye likha hai. Ek aur baat unhone kaha hai, true friends don't come with conditions. I definitely feel that that's so true. जो फ्रेंड्स आपके हैं और आपको समझते हैं वो कंडीशंस नहीं रखते. सिर्फ बातें नहीं हैं, ये एक्चुअली हार्ड, इट्स हार्ड टू फाइंड सच फ्रेंड्स, डोंट थिंक लिसनर्स. इसके साथ साथ अब एक क्विज भी आने वाला है, लेकिन व्हेन आई एम गोना एक्चुअली एंड हिमेश रेशमिया सेगमेंट नाउ विद अ वेरी आइकॉनिक सॉन्ग. अगर ये गाना मैं नहीं प्ले करूँगी तो डेफिनेटली इट वॉन्ट डू जस्टिस टू हिमेश रेशमिया. बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, झलक दिखलाजा भी है बहुत फेमस, लेकिन एक और बहुत फेमस है, आई एम गोइंग टू प्ले दैट वन. विद दैट आपको ये बता दूं दैट योर ड्रीम होम मे बी क्लोजर देन यू थिंक. जी हाँ, विद हूम? विद नन अदर देन ड्रीम होम मॉर्गेज. सिंस 1998 ड्रीम होम मॉर्गेज हैज हेल्प्ड फैमिलीज अक्रॉस द कंट्री टर्न होम ओनरशिप इनटू रियलिटी विद पर्सनलाइज्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस एंड अ स्मूथ स्ट्रेस फ्री प्रोसेस. Licensed in all 50 states, their experienced team is committed to finding the right loan options tailored to your needs, whether you're buying your first home, upgrading, or refinancing. Start your home ownership journey with confidence today. Call 972-245-5626. Hussain ya Sharmeen Panjwani ko aap call kar sakte hain. Number again is 972-245-5626. Or you could also visit their website, which is dreamhomemortgage.com, for more details. Dream Home Mortgage, making dream homes happen. With that, here is the song ending Himesh Rashamiya's segment for today. It's a remix version.

ऑल राइट, आइकॉनिक गाना क्या गाते हैं. और काफ़ी समय से मैंने इनके गाने नहीं सुने, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है इनके गाने सुनते सुनाते हुए आप लोगों को, एट द सेम टाइम सुनते हुए भी. एंड नाउ लिसनर्स, इट्स टाइम फॉर द गिव अवे दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, दैट आई वुड बी गिविंग अवे वन थिंग. इन फैक्ट टू आर नाउ, बिकॉज वी पुश्ड इट आउट टू द 6 o'clock आवर. सो टू गिव अवेज कमिंग अप. द फर्स्ट वन इज़ फ्रॉम नन अदर दैन फन पिज़्ज़ा किचन. You know what? They have launched a brand new Mexican-inspired pizza lineup. And these aren't just pizzas. They are a full-on flavor fiesta. From the fresh fiesta veggie to the fiery Polo Loco, the seafood-packed Sonor Camarón, every bite is bold, exciting, and made to impress. Head over to Fun Pizza Kitchen and taste the new obsession for yourself. New flavors, new obsession. For more details, visit funpizzakitchen.com. And now here is your chance to win a $10 gift card from Fun Pizza Kitchen by answering a simple question. Once you give me the right answer, the first winner will need to give me their phone number and email ID. And then I'll ask you to go to FPK Frisco location and collect the gift card. तो क्या क्विज है ये? क्विज बहुत ही मज़ेदार है. आपको मुझे बताना है, ये जो मैं गाना प्ले कर रही हूँ, विच आई एम अबाउट टू प्ले, यू गॉट टू गिव मी टू थिंग्स, ए थ्री थिंग्स. ए द नेम ऑफ द फिल्म, सेकंड द नेम ऑफ द हीरो हीरोइन, आई एम काउंटिंग दैट एज नंबर टू. नंबर थ्री द नेम ऑफ द म्यूजिक डायरेक्टर. एंड इट्स अ हिंट कि जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं वो शायद सिंगर भी हैं. चलिए सुनते हैं ये गाना. लेट्स सी इफ यू कैन डू इट. द फर्स्ट कॉलर विद द राइट आंसर विल विन द $10 गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज़्ज़ा किचन.

0: Yes, that's how I am.
1: All right, you're live on air. Who's this?
2: Hi, I'm Yash.
1: Yes, Yash. Can you tell me the name of the film?
2: Apia Ghar Aaya from Awarapan 2.
1: Yes, Awarapan 2 is the name of the film. Isme hero heroine kaun hai?
2: Imran Hashmi aur Disha Patani.
1: Bilkul sahi bola aapne ye bhi. Ab aap bata sakte hain ki music direction kisne diya hai?
2: Akhil Sachdev.
1: All right. Aapko pata hai ki ye gana kaun ga raha hai?
2: Abhishek Bhatia.
1: नहीं ये खुद गान वैसे मैंने कहा था कि ये म्यूजिक डायरेक्टर और जो सिंगर है वो सेम है तो यानी कि अखिल सचदेव इसको गा भी रहे हैं
2: okay.
1: उन्होंने म्यूजिक भी कंपोज किया है और द बेस्ट पार्ट इज उन्होंने लिरिक्स भी लिखे हैं
2: oh.
1: तो यश आप बताइए आपका फुल नेम
2: यश राज चावला
1: ठीक है तो मैं आपसे चोपड़ा नहीं है चावला है मैं आपसे बस off-air, आपकी information ले रही हूँ. You have won the $10 gift card from Fun Pizza Kitchen. Congratulations.
2: Thank you.
1: Just, I'll take you off-air, just a sec. All right. Enjoy the song. Akhil Sachdev ki awaaz mein, Yash Raj Chawla has won the card.

0: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
1: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: Yaar, modern mangalsutra dhoonte-dhoonte thak gayi hoon.
3: To Karat Lane chalo, they now have a store in Frisco and the best collection of modern mangalsutras.
2: Seriously? Kaisa collection hai?
3: Minimal, diamond, elegant, everyday styles. You will probably spend more time choosing than shopping.
4: Find the Mangalsutra that matches your style at Karat Lane, home to the largest collection of modern Mangalsutras. Karat Lane, now open in Frisco next to Tanishq.
5: अजी सुनते हो सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे
6: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे
5: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा
6: हेलो तुम डैलस में हो यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो
5: सच में सब संभालेंगे
6: अरे सब कुछ वेडिंग हो हाउस वार्मिंग ग्रेजुएशन यू नेम इट दे डिलीवर वेन्यू फोटोग्राफी हॉस्पिटैलिटी सब कुछ एक ही जगह सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनोन्ड बसेरा ग्रैंड ओनली
1: कॉल हरि बसेरा ऑन 469-442-8770 Vanessa Events, your celebration partner.
7: Floors clean.
8: Check.
7: Windows clean.
8: Check.
7: Kitchen clean.
8: Check.
7: Air ducts clean.
8: Wait, air ducts भी clean करना होता है?
9: बिल्कुल. जो दिखता है, वो तो हम clean कर लेते हैं. लेकिन जो नहीं दिखता, उसका क्या? That's where Duct Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology. No roto brush. Plus dryer vent or chimney cleaning. घर हो, restaurants, hotels, offices या फिर any business. Duct Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
10: यार बॉस ने फिर से डांट दिया ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस
11: अरे रिलैक्स यू नीड अ कूल थेरेपी
10: थेरेपी वो तो बहुत महंगी है
11: नहीं कूल मतलब कूल चा थेरेपी
10: ये क्या होता
11: सिंपल चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन
12: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस
1: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन
13: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer?
14: उमर ख्वाजा
15: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com
16: अरे तीन पे क्यों अटक गया
17: क्योंकि साल्स हॉट चिकन भी तीन पे पहुंच गया
1: प्लेनो रिचर्डसन एंड नाउ एट अ ब्रांड न्यू लोकेशन साल्स हॉट चिकन कमिंग सून
18: जिंदगी एक रंगमंच है
19: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग एक्सपीरियंस अ स्मूथ सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com
20: Party is on everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights bhi.
1: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway. Cause miracles happen in Mirage.
21: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
22: अरे सुन ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है
23: माँ रील्स पे सब लकी ही होते हैं जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो
24: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है पंडित राम तुलसी
0: जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
23: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
2: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
3: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
7: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
24: तुमसे मिलके दिल का है।
3: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
7: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
25: जी हाँ लिसनर्स, थोड़ी और जानकारी दूंगी मैं आपको सोनू निगम के शो के बारे में इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स। अभी मैंने जो क्विज दिया था वो था इमरान हाशमी के ऊपर। फिल्म है अवारापन 2। जो फर्स्ट अवारापन आई थी वो आई थी बैक इन 2007। अ लॉट हैज टू बी सेड अबाउट दिस। तो चलिए फटाफट हाईलाइट बता दूँ कि अवारापन 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 5 हाईलाइट्स। हिज दैट इज इमरान हाशमीज फिल्म इज सेट टू क्रॉस रुपीज 150 करोड़ रुपीस मार्क ये क्रॉस कर रही है और ये बिगेस्ट हिट है ऑफ हिज 18-year लॉन्ग करियर। इंडीड ही हैज बीन परफॉर्मिंग स्ट्रांगली दिस अवारापन 2 एट द बॉक्स ऑफिस। दिस रोमांटिक एक्शन ड्रामा विच ओपन टू डिसेंट रिव्यूज क्रॉस्ड 80 करोड़ इन इट्स ओपनिंग वीकेंड। आफ्टर अ स्लाइट डिप इन कलेक्शन ऑन मंडे द फिल्म अर्न्ड 9.75 करोड़ ऑन ट्यूजडे and the film's net domestic total now stands at 100.75 crore. The film has earned rupees 144.13 crore worldwide. Aur panchve din to get almost 150 crore rupees cross kar chuki hai. Aur jo ye first franchise jo Aarapan wo 2007 mein aayi thi. However, the Mohit Suri directorial, which also starred Imran Hashmi like 19 years ago, it went on to gain cult status over the years. Avarapan 2, however, has become a historic film for Imran Hashmi, as this is now the first solo film in his 18-year career that he that has entered this 100 crore club rupee, you know, 100 crore rupees ka jo club hai, it has entered it. Unke saath hain, jaise ki bataya tha, jo hamare listener hain, jinhone jeeta hai $10 ka fun pizza kitchen se gift card. Yashraj Chawla ne bataya tha ki isme Disha Patni bhi hain. Uske saath saath main bata dun aur kaun hain. Puran Gabbi, Anirudh Rawal, Shabana Azmi, Suvinder, Vicky, there is one name, Suvinder Vicky, Vijayant Kohli and Atul Kumar, they are all in the key roles. The film has been directed by Nitin Kakkar and produced by Vishesh Bhatt and Mukesh Bhatt under the banner of Vishesh Films. So it's a huge shout out going out to Imran Hashmi, the scintillating man. By the way, as far as he's concerned, I would say, just like people say, you know, Anil Kapoor hasn't aged, then Jimmy Shergill hasn't aged, I feel like Imran Hashmi definitely also hasn't aged. In fact, he looks even better. इसमें अगर आप इस गाने को आप देखेंगे तो उनका जो look है बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, very striking look. So with that, we wish him all the best and he may continue growing. And with that, listeners, एक और giveaway की बारी आ गई है. मैंने आपको बताया था कि एक और giveaway होने वाला है. So this is the time. And this one is a chatpata giveaway also. Hoko, you must have heard of it. You know, you found a truly iconic food brand when just hearing its name brings back a flood of memories. That's exactly what Hoko has been for generations across India. And now it's here in North Texas, whether you've been craving their legendary chana puri or iconic sandwiches, flavorful curries, or the famous Hoko cold cocoa that people absolutely swear by. You don't have to wait for your next trip to India anymore. Visit Hoco, and where is it? It's in Frisco. The address is 2693 Preston Road, Suite 1000, Frisco, Texas 75034. You can quickly Google it, HOCCO, and you can experience the authentic flavors that have made it one of India's most loved food brands. So for the full menu and more information, visit hoco.us, and that's hoco.us. Come hungry and leave with the taste of India. And now here's your chance to win a plate of Alu Tikki Chaat from Hoco by answering a simple question. Bahut hi simple question hai. Wo question ye hai ki jo main gaana aapke liye play karne wali hoon, aapko batana hai ye gaana kaun si film se hai. Isme hero heroine, agar heroines bhi aap bata sakte hain, do heroines hain, do heroes hain, to wo sahi rahega. Aur saath saath ise kisne direct kiya hai. With that, I have someone already on air. Hello, you're on air. Who's this?
4: Hello.
25: Hi. I haven't played this song yet. Who's this?
4: This is Dildo Muncher calling from Anson Corporate.
25: All right. So I'm going to play the song, Gautam, and then you can answer and call back, okay?
4: Okay.
25: Thank you. All right. So this song I'm going to play for you. And that's आपको मुझे बताना है ये तीन चीज़ें, फिल्म का नाम, हीरोज़ हीरोइंस के नेम्स, और साथ साथ इसे किसने डायरेक्ट किया है. और गाना मैं ये नहीं पूछूंगी, वैसे तो आप बता सकते हैं कि इसमें गाना कौन गा रहा है, वो एक एडिशनल चीज़ हो जाएगी, तो उसमें भी मज़ा आएगा. व्हाट डू यू से?

0: Phoenicia Radio, you're on air.
1: Hi.
0: Yes, you're on air. Who's this?
1: The movie is Bol Bachchan.
0: The movie is Bol Bachchan, yes.
1: And the actors are Ajay Devgan and Aasin.
0: And Aasin, okay. Aap dusre bhi pair ko jaanti hain isme jo hai? Is
1: usse bhai hai na Prachi Desai hain.
0: Ji.
1: And Abhishek Bachchan hain.
0: Bilkul sahi bola aapne. Ab aap bata sakti hain ki direct kisne kiya hai?
1: Director. Ek minute. Peter Peter job, Peter job, you know.
0: बहुत फेमस डायरेक्टर हैं
1: जी जी रोहित शेट्टी
0: ये भी आपने सही बोल दिया अब तो बस एक ही बात रह गई है कि इसको गा कौन रहा है
1: ये हिमेश रेशमिया
0: एंड गर्ल
1: जी हिमेश रेशमिया
0: एंड लुक लिसन टू द गर्ल
1: अच्छा ये अच्छा आप गर्ल सब लिखती है ओके श्रिया घोष
0: अरे भाई आप तो ऐसा आपने पूरा जैसे कहते हैं ना छक्का मार दिया और टोटल आपने सही आंसर्स दिए आपका नाम
1: सबक
0: सबक
1: सबा सबा
0: सबा सबा यस यस सबा आपने बिल्कुल सही बोला सबा एंड मैं आपकी इन्फॉर्मेशन ऑफ लेयर लेती हूँ आपका फुल नेम क्या है सबा
1: सबा जाफरी
0: जाफरी Okay, just stay on air and I'll take you offline and talk to you, okay?
1: Thank you so much.
0: This is such a cool song. I want to play it from the very top for all you lovely listeners out there. Here it is.

0: Phanasia Radio.
1: Farul?
0: Yes?
1: I know somebody who hasn't aged yet.
0: Well, you know someone who hasn't aged yet. Who is it?
1: Yeah, and that's you.
0: You're so sweet.
1: That is not true. Remember, Farul, this is Suraya.
0: Oh, wow. The one who played my mom?
1: Yeah.
0: I don't think... Now I think I will look like your mom, I feel.
1: No. I haven't seen you for a while after those our Jamaat Khana program. But yes. I think you were always looking wonderful.
0: Oh, that's nice. But since you haven't seen me, you don't know how I look anymore.
1: No, I see you on Facebook.
0: So I haven't aged, you think?
1: No, you haven't. You have the same beautiful Asian featured girl.
0: Thank you, Mom.
1: Love you, beta.
0: Oh. That listener is reminding us of a movie we did together. My father's daughter, Jisme Suraya Heather, was my mom. And it was such a great experience. Nishendu Asavra was in it.
1: That.
0: Yeah, it was so much fun. Thank you so much for calling, Suraya. You totally made my evening.
1: Of course. Bye-bye.
0: Yeah, take care and stay in touch. Bye.
1: Bye.
0: वाह कि मेरा तो मज़ा है. जैसे कहते हैं ना, शुरुआत मैंने कहा था तंदूरी नाइट्स, आज वैसी ही फीलिंग आ रही है. तो विद दैट, ये गाना तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ ही था जो आप सुन रहे थे. और अब एक और गाने की रिक्वेस्ट आई है, क्योंकि बात हो रही है ना हिमेश रेशमिया की, और अभी भी जो हमने गाना प्ले किया बाय चांस वो भी उन्होंने ही गाया. तो आज तो टोटल हिमेश रेशमिया का, जिसे कहते हैं ना, उनका जादू चल रहा है. और ये जो गाना है, ये जो सबा ने जीता था लास्ट अवार्ड, जो हॉको से उन्होंने जीता है आलू टिक्की चाट, सबा जाफरी ने, उन्होंने कहा कि ये गाना ज़रूर प्ले करिए जो सिंस हम लोग कर रहे हैं हिमेश रेशमिया. और ये गाना लिया है नमस्ते लंदन से, इसका नाम है राफ्ता राफ्ता. अभी क्विज तो खत्म हो गया. आई एम गोना गो अहेड एंड प्ले दिस सॉन्ग बिफोर वी टेक अ क्विक कमर्शियल ब्रेक.

What a lovely track this was. And ये जो गा रहे हैं इस particular film में, वैसे music दिया हिमेश रेशमिया ने, लेकिन दर्शन रावल और अदिति सिंह शर्मा की आवाज में ये आपने बहुत ही प्यारा सा गाना सुना. With that, listeners, बताऊं कि at Shri Krishna Jewelers, jewelry is more than an accessory. It's a reflection of many things such as tradition, elegance and timeless beauty. From classic gold designs to sparkling diamonds and from intricate kundan to stunning

ये गाना तो डेफिनेटली रिक्वेस्टेड होना ही था, क्योंकि ये बहुत ही आइकॉनिक गाना जब शुरू शुरू में आया था हिमेश रेशमिया का. लिरिसिस्ट थे समीर और म्यूजिक डायरेक्शन एंड सिंगर भी इसमें हिमेश रेशमिया है. फिल्म थी अक्सर और इमरान हाशमी के साथ थे डीनो मौर्या एज वेल एज उदिता गोस्वामी. तो आपने गाना सुना. थोड़ी बात लिसनर्स, एक बात बताना चाहती हूँ मैं आपको कि पाकिस्तान सोसाइटी नॉर्थ टेक्सस की तरफ से गेट रेडी फॉर अ स्पेक्टैक्युलर सेलिब्रेशन. द पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सस प्रेजेंट्स कायदे मेला 2026 और ये अगस्त 22 को हो रहा है, बस राइट दिस वीकेंड. It's a celebration of heritage, culture and community. Enjoy live music, delicious food, shopping, cultural festivities and family fun for all ages. Live performances by Raga Boys. That is Raga Boys. Join us Saturday, August 22nd from 3 p.m. all the way to 11:45 p.m. at South Fork Ranch in Parker, Texas. It's a great location. Doors open at 2 p.m. And here is the best part. Entry and parking are absolutely free. Bring your family, bring your friends and come celebrate at Kaid Mela 2026. Media partners are Fun Asia 104.9 FM. एक गाने की और रिक्वेस्ट आई है, सो आई एम गोना गो अहेड एंड प्ले दैट. इसमें आवाज डिफरेंट है उनकी, हिमेश रेशमिया की नहीं है, समवन एल्स इज सिंगिंग. दिस वाज अ रिक्वेस्ट, सो हियर इट इज.

ऑलराइट, इस वक्त बस जाने की बात हो रही है लिसनर्स, और एक और गाना के साथ मैं आई विल एग्जिट द स्टूडियो. ये गाना मैंने अभी बताया था आपको, 150 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो गई है इमरान हाशमी की ये वाली फिल्म आवारापन 2. तो ये गाना एक और है, ये आवारापन विशेष फिल्म्स की प्रोडक्शन है. ये आवारापन मैं आपके लिए प्ले करने वाली हूँ, और साथ साथ आपको बता दूँ दैट सोनू निगम रेवोल्यूशन, गेट रेडी फॉर एन अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ म्यूजिक, द वन एंड ओनली सोनू निगम लाइव इन कॉन्सर्ट एक्सपीरियंस रेवोल्यूशन. व्हेन, मार्क योर कैलेंडर्स, Saturday, September 26th at 8:30 p.m. at the Credit Union of Texas Event Center in Allen. Your favorite songs, that iconic voice, all live. Tickets available at Ticketmaster. For more information, you can call this particular number jo main dene wali hu aapko. Number hai 855-360-SHOWS. That's 855-360-SHOWS. Revolution, Sonu Nigam Live. Exclusive media partner, Fun Asia Network. Or with that, ye next gana ja raha hai Waseem ji ko. Enjoy it, who's driving to McKinney. And it has been a pleasure being back. It's always fun to do a show right here for you listeners. So let me remind you, be safe, be brave, and keep it real, genuine, and happening with Fun Asia Radio, bringing the community together. This is your host, Parul Bhatia, signing off.

0: तारा। अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
1: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग। फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस। फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव।
2: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को। विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 4693331099.
3: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.
4: Hocho.
5: Hoko.
4: Hocho.
5: Hoko.
4: Hocho.
5: It's Hoko.
6: अरे बस भी करो यार।
5: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है।
6: नाम होको हो या होचो क्या फर्क पड़ता है? एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा।
0: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको अब फ्रिस्को में। वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस। टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज।
7: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
8: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
7: क्या मतलब?
8: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
7: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
8: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
7: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
9: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: तीन पे क्यों अटक गया?
2: क्योंकि साल्स हॉट चिकन भी तीन पे पहुंच गया.
0: प्लेनो रिचर्डसन एंड नाउ एट अ ब्रांड न्यू लोकेशन. साल्स हॉट चिकन कमिंग सून.
3: इफ यू और योर फैमिली मेंबर इज इन्वॉल्वड इन अ ट्रक एक्सीडेंट, हियर्स व्हाट यू मस्ट डू. फर्स्ट, इंश्योर एवरीवनस सेफ्टी. Next, gather as much information as possible. Make sure you take great photos, talk to any witnesses that may have seen the accident, and ensure that you document all of the information for the truck driver and company. Truck accidents often lead to serious injuries, so don't deal with it.